0: सपने फिल्म से हेमा सरदेसाई और मलेशिया वासुदेवन की आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना। अब सुनिए ये संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम चित्रलोक में अब समय है एक छोटे से अंतराल का।

इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी विविध भारती सुनने वालों का एक बार फिर से कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं विक्की डोनर फिल्म से ये गीत। इसे गाया है विशाल डडलानी और सुनिधि चौहान ने। स्वानंद किरकिरे ने इसके बोल लिखे हैं और संगीत दिया है डॉन एंड बैन ने।

विकी डॉनर इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना, विशाल टडलानी और सुनिधि चौहान की आवाजों में। क्या सुपर कूल है हम इस फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत सोनू निगम और मीट ब्रदर्स अनजान के स्वरों में। कुमार का लिखा गीत, मीट ब्रदर्स अनजान का संगीत।

0: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और आइए अब आपको सुनवाते हैं तेरी मेरी कहानी फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है वाजिद अली ने, प्रसून जोशी का लिखा गीत है, संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

राजी अली के आवाज में तेरी मेरी कहानी फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना और इसी गीत के साथ अब वक्त है कार्यक्रम चित्रलोक में एक छोटे से अंतराल का। आप कहीं नहीं जाइएगा, हम बस अभी लौटते हैं।

0: इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से. और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से. अंदिता दत्त ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है विशाल शेखर ने. शेखर रविजियानी और सलीम मर्चेंट साथ हिमती मोहन की आवाजें हैं.
1: Thank you.

0: सन ऑफ सरदार इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान की आवाज में। समीर अंजान के बोल थे, तर्ज बनाई थी हिमेश रेशमिया ने।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: तरन्नुम मलिक और मोहित चौहान की आवाजों में एक था टाइगर फिल्म से ये गीत। कौशल मुनि ने इसको लिखा है और संगीत दिया है सोहेल सेन ने।

एक था टाइगर, इस फिल्म से आपने अभी ये गीत सुना, तरन्नुम मलिक और मोहित चौहान की आवाजों में। और अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम जजलोक में एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी इस फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने। अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत है, धुन बनाई है जीत गांगुली ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं जब तक है जान फिल्म से श्रेया घोषाल और मोहित चौहान का गाया गीत। गुलजार ने इस गीत के बोल लिखे हैं और धुन बनाई है ए आर रहमान ने।

0: अल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कितनी

आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम चित्रलोक की आखिरी प्रस्तुति राउडी राठौर फिल्म से श्रेया घोषाल और जावेद अली का गाया गीत समीर के बोल साजिद वाजिद का संगीत।

राउडी राठौर फिल्म से श्रेया घोषाल और जावेद अली का गाया गीत आपने सुना। समीर के बोल थे साजिद वाजिद का संगीत और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, आपको बता दें कि 9:30 पर सुबह यानी अब से कुछ ही देर में और पुनः रात को 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। कार्यक्रम सुनना नहीं भूलिएगा आज के फनकार। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मेम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये दुनिया फिल्मी पर्दे पर एक हीरो देखना चाहती है। फिल्मी हीरो यानी तड़क भड़क से भरा बलिष्ठ शरीर, दिल लुभाने वाला अंदाज जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाएं। फिल्मी हीरो के सेट मानसिकता को तोड़कर बड़े पर्दे पर एक आम इंसान को खास महसूस करवाने का काम किया हमारे आज के फनकार ने, जिन्होंने ये दिखा दिया कि आपका अभिनय आपको किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकता है। रोल छोटा हो या बड़ा, अपनी छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त है। आज बात एक ऐसे फनकार की जिनके अभिनय का लोहा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माना गया है। आज के फनकार हैं मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी।

आज जिस नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हम जानते हैं उनके पीछे छुपी है सालों की कड़ी मेहनत और एक लंबा संघर्ष। 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना में एक किसान परिवार में 8 बच्चों में पहले बच्चे के रूप में आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उनकी

किशोरावस्था उत्तराखंड में बीती और हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से विज्ञान में रसायन शास्त्र के साथ स्नातक हुए। यहाँ से वडोदरा चले गए और एक केमिस्ट के रूप में काम करने लगे। एक नए काम की तलाश में वो आ गए दिल्ली और यहाँ से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया।

दिल्ली में एक प्ले देखते हुए उन्हें लगा कि वो भी अभिनय से जुड़ना चाहते हैं। उन्हें मन ही मन यकीन हो गया कि अब तक की जिंदगी में एक यही ऐसा काम है जो उन्हें दिल से खींचता है। बस इस दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए वो जा पहुंचे NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नवाज बताते हैं कि NSD का हर दिन उनके लिए खास था, वो कुछ ना कुछ नया सीख रहे थे। यहाँ जब वो तीसरे साल में थे तब मॉस्को से आए एक डायरेक्टर ने उन्हें एक ऐसी सीख दी जिसने उनके अभिनय का रुख ही मोड़ दिया। नवाज को समझ आया कि अभिनय किसी टेक्निक का काम नहीं बल्कि किसी किरदार को आत्मसात करना है।

एनएसडी के दिन जितने बेहतरीन रहे उतने ही मुश्किल भरे दिनों से सामना हुआ मुंबई आकर। नवाज रोजाना काम की तलाश में ऑडिशन पर ऑडिशन देने जाते। यहाँ उनकी काबिलियत से पहले उनके लुक और रंग पर ही उन्हें नकार दिया जाता। नवाज खुद बताते हैं कि उन्हें कभी भी अपने लुक अपनी पर्सनैलिटी पर भरोसा नहीं रहा। उनका आत्मविश्वास सिर्फ अपनी अभिनय क्षमता को लेकर ही था, लेकिन इस अभिनय क्षमता को लोगों तक लाने के लिए तकरीबन 10 साल की कड़ी मेहनत रही।

शहनवाज पर्दे पर ये गीत गाते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं था। मुंबई जहाँ सभी को मौका देती है, वहीं वो लोगों को पूरी शिद्दत से परखती भी है। 10 साल के लंबे संघर्ष में रहने खाने के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए नवाज ने एक्टिंग वर्कशॉप लेनी शुरू कर दी। वो खुद फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कई नए अभिनेताओं को फिल्मों में जाने के लिए तैयार भी कर रहे थे। उनके शिष्यों में अभिनेता रणवीर सिंह का नाम भी शामिल है, जो अपनी फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए नवाज के पास तैयार हो रहे थे।

आखिर वो दिन भी आया जब नवाज को काम मिलना शुरू हुआ। सबसे पहली बार वो फिल्मी पर्दे पर नजर आए आमिर खान के सामने। 1999 की ये फिल्म थी सरफरोश। मात्र 2 मिनट के सीन में नवाज ने मानो अपने अभिनय से जान फूंक दी। उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। इनमें से कुछ फिल्में हैं शूल, जंगल, मुन्ना भाई MBBS, फैमिली, आजा नचले, 1:40 की लास्ट लोकल। तकरीबन 8 सालों तक वो ऐसे कई किरदार निभाते रहे जिनके नाम तक नहीं होते थे। साल 2007 में आई फिल्म ब्लैक फ्राइडे, इस फिल्म में उनके किरदार को पहली बार नाम मिला। पहली बार मुख्य भूमिका में नजर आए फिल्म पतंग में। ये फिल्म फेस्टिवल्स में काफी सराही गई, लेकिन अब भी वो सफलता उनसे दूर थी जिनके वो हकदार थे।

नवाज अपने अभिनय से हर छोटे किरदारों में भी अपनी पहचान बना रहे थे, लेकिन अभी भी वो समय नहीं आया था जब लोग उन्हें उनके नाम से जाने। इस बीच साल 2011 में आई फिल्म देख इंडियन सर्कस, इस फिल्म ने कई फिल्म फेस्टिवल्स में पुरस्कार अपने नाम किए। अब नवाज का समय आ चुका था, उनकी अभिनीत फिल्में तो नाम कमा ही रही थीं और उनके किरदारों को भी पहचान मिल रही थी। इसी दौरान आई वो फिल्म जिसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सफलता पाने के लंबे इंतजार को खत्म किया। ये फिल्म थी गैंग्स ऑफ

नवाज को गैंग्स ऑफ वासेपुर वन ने जितनी पहचान दिलाई उससे ज्यादा तारीफ उन्हें मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर टू में। उनके किरदार फैजल खान ने घर घर में अपनी पहचान बना ली। ये वो समय था जब नवाज भीड़ से अलग नजर आने लगे थे और उन्हें देखने के लिए भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। साल 2012 में ही उन्हें उनका पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। स्पेशल ज्यूरी पुरस्कार श्रेणी में नवाज को उनकी फिल्म देख इंडियन सर्कस, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, कहानी और तलाश के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।

नवाज को भले ही देश में उनके काम के लिए सराहना मिलने में देर लगी, लेकिन इसके पहले से ही उन्हें अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स के जरिए विदेशों में कई पुरस्कार मिलने लगे थे। वो एक ऐसे अभिनेता के रूप में पहचाने जाने लगे थे जो अपने अभिनय, हाव भाव और संवाद अदायगी से किसी भी किरदार को वास्तविक बनाने का मादा रखता है। वो आज भी कई ऐसी फिल्में करते हैं जिन्हें फिल्म उत्सवों में सराहा जाता है।

वो समय आ चुका था जब न सिर्फ नवाज के किरदारों को पसंद किया जा रहा था बल्कि उनके डायलॉग्स भी लोगों की जुबान पर चढ़ रहे थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर में कहा गया उनका डायलॉग, बाप का दादा का सबका बदला लेगा फैजल। किक में बोला गया उनका डायलॉग, टक से मौत को छूकर वापस आ सकता हूँ, या जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, या कभी कभी लगता है अपनिच भगवान है। ये सारे संवाद नवाज के अंदाज से खास बन जाते हैं। हालांकि नवाज ये कहते हैं कि उनके जो भी डायलॉग्स फेमस हुए हैं उनमें उन्हें अपनी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई है, लेकिन लोगों को वो खासे पसंद आने लगे।

नवाज अपने अभिनय को सबसे ऊपर मानते हैं। उनका मानना है कि जब वो किसी किरदार को निभा रहे हैं तो उनके मन की सच्चाई और ईमानदारी ही उन्हें उस किरदार को जीवंत करने में मदद करती है। लंच बॉक्स फिल्म के एक छोटे से किरदार में भी वो अपनी सोच से रंग भरते हैं। वहीं मोतीचूर चकनाचूर में वो बेहद संजीदा नजर आते हैं। उनके किरदारों को देखा जाए तो वो सिर्फ संवाद ही नहीं बोलते बल्कि

आंखों के जरिए उस किरदार के मन के भावों को भी सामने ले आते हैं। यही बात उनके हर किरदार को उनसे जुदा करती है और आप पर्दे पर नवाज को नहीं बल्कि उस किरदार को ही पाते हैं।

नवाज अपने किरदार में किस कदर रम जाते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण उनका किरदार रमन है, जो नजर आया फिल्म रमन राघव 2.0 में। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साइको रमन नाम से रिलीज किया गया। नवाज एक सीरियल किलर की भूमिका में थे। फिल्म में एक सीन में 10 मिनट का मोनोलॉग था, जिसे अलग अलग तरह से शूट करने के कारण नवाज को उसी एक जगह पर खड़े रहना पड़ा और तकरीबन वो 300 मिनट तक वही डायलॉग बोलते रहे। फिल्म के शूट के दौरान वो बेहोश भी हो गए थे और अस्पताल के बेड में बेहोशी की हालत में भी अपने डायलॉग्स बोल रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें इस किरदार से बाहर निकलने की सलाह दी थी, लेकिन नवाज लोगों के दिलों में बस चुके थे।

0: नवाज अपने हर किरदार के लिए भरपूर तैयारी करते हैं। स्ट्रगल के दिनों में घर के पास के सब्जी वाले को लगता था कि नवाज देख नहीं सकते, जबकि एक दूसरे दुकानदार से वो हकलाकर बात करते, एक से तुतलाकर तो एक के सामने वो लंगड़ाकर चलते। ये दुनिया ही उनके लिए मानो रंगमंच हो। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में अपने किरदार के दर्द को बयान करने के लिए वो आंखों में ग्लिसरीन लगाए घूमते थे ताकि उनकी आंखें लाल ही रहें। बदलापुर में वो अपनी हंसी से ही आपको किरदार से नफरत करने पर मजबूर कर देते हैं।
1: खो कर, गुम हो कर, वक्त से चुराया।

नवाज के बेहतरीन किरदारों में से यहाँ कुछ किरदारों की बात करते हैं। दशरथ मांझी के किरदार में फिल्म मांझी द माउंटेन मैन में नवाज का बिल्कुल अलग रूप नजर आया। यहाँ वो पहाड़ से बातें करते हैं तो लगता है जैसे फिल्मी पर्दे पर थिएटर की दुनिया जी उठी हो। सआदत हसन मंटो के किरदार को भी उन्होंने खूब निभाया और जब ठाकरे में बाल ठाकरे के रूप में सामने आए तो खुद को ऐसे बदला कि फर्क करना मुश्किल सा लगा। हड्डी फिल्म में एक ट्रांसजेंडर के रूप में ढलने के लिए नवाज ने मानो खुद को पूरी तरह बदल दिया। वहीं ब्रिटिश क्राइम ड्रामा मैक माफिया में उनके किरदार ने सबका दिल जीता तो सेक्रेट गेम्स में उनके किरदार गणेश गायतोंडे ने अपना रुतबा कायम किया। ओटीटी पर रिलीज फिल्मों ने उनके प्रशंसकों में लगातार बढ़ोतरी की है। साल 2025 में आई फिल्म कोस्टा फर्नांडिस को भी लोगों ने काफी पसंद किया।

नवाज कहते हैं कि उन्हें फिल्मी दुनिया की चकाचौंध और ऐशो आराम से कहीं ज्यादा अपने अभिनय से प्यार है। वो सारी जिंदगी सिर्फ अभिनय करना चाहते हैं। देश विदेश में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए जिंदगी एक सच्चाई का नाम है और वो ये मानते हैं कि जब तक एक इंसान में सच्चाई है तभी तक वो बेहतरीन अभिनय कर सकता है, क्योंकि जब आप किसी किरदार को जीते हैं तभी आप लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं।

कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो भी हासिल किया वो अपनी मेहनत और लगन के बल पर ही पाया। वो उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहरों से कम संसाधनों के साथ आते हैं। नवाज ये सिखाते हैं कि अगर आप में हुनर है और लगन है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। नवाज के निभाए किरदारों में जितनी ईमानदारी है उतनी ही ईमानदारी और निश्चलता उनकी मुस्कान में भी झलकती है। हमें पूरी उम्मीद है कि उनके और कई बेहतरीन किरदार हमें देखने के लिए मिलते रहेंगे।

0: आज के फनकार। कार्यक्रम आज केंद्रित था मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे से

जी हाँ दोस्तों, आप सभी का और हमारा चहेता कार्यक्रम नमस्ते हिसार, और आपके साथ हमें भी बेसब्री से इंतजार रहता है इस कार्यक्रम में आप सभी से मुलाकात का, आपकी पसंद के खूबसूरत गीतों का और साथ ही साथ हिसार की बातों का।

आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम नमस्ते हिसार में। और हिसार में क्या चल रहा है ये बातें आप सभी से करेंगे। तो सबसे पहली बात है मरम्मत कार्य के चलते आदमपुर के कॉलेज रोड स्थित रेलवे फाटक नंबर 113 पर आवश्यक मरम्मत कार्य चल रहा है। तो मंगलवार 19 मई को फाटक 12 घंटे तक बंद रहेगी। तो उधर से अगर आप जा रहे हैं तो अपना रास्ता बदल लें और जहां से सही रास्ता है वहीं से जाएं। मरम्मत कार्य जरूरी है और इसी के बाद हमें सुकून मिलने वाला।

हिसार के डियर पार्क में वर्ष 2026 में एक सुखद सौगात दी है। नौ नन्हे शावकों की किलकारियों और अटखेलियों ने पूरे पार्क को और अधिक जीवंत कर दिया है। काले हिरण के 4, चीतल के 3 और सांभर प्रजाति के 2 शावकों के जन्म से यह प्रकृति स्थल एक बार फिर से आकर्षण का केंद्र बन गया और इन मासूम जीवों की चंचलता न केवल पर्यटकों के मन को मोह रही है बल्कि प्रकृति के प्रति एक नई संवेदना भी जगा रही है। एक खूबसूरत प्रकृति का दृश्य उजागर हो जाता है जब हम ऐसे अन्य जीवों को अपनी प्रकृति को बढ़ते देखते हैं। एक तरीके का हमारा प्रकृति का जो वंश है वही बढ़ रहा है। काफ़ी सारी प्रजातियां हम देखते हैं कि जीवों की खत्म हो रही है तो उन्हें बचाने के लिए हमें भी कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करने चाहिए और यहाँ काला हिरण जो है आकर्षण का केंद्र है और चर्चाओं में है। देश भर में काला हिरण अपनी सुंदरता के साथ चर्चाओं में भी विषय बना रहता है और इस संरक्षित जो प्रजाति है इसको यहाँ कुल 83 सदस्य हैं जिनमें 30 मादा और 49 नर और 4 शावक शामिल हैं। तो बहुत अच्छी पहल है। हमारे काफ़ी साथियों ने शायद डियर पार्क जाकर देखा भी नहीं होगा लेकिन देखते हैं तो बहुत दिल को सुकून मिलता है। ऐसी प्रजातियां बच्चों को दिखाएं क्योंकि आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। अब जंगल नहीं रहे, खेत नहीं रहे और ये चीज़ें शायद शहर के बच्चों को तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती, तो वहाँ जाके ज़रूर दिखाएं। और गर्मी का मौसम आते ही जब स्कूलों की घंटियाँ थमती हैं तो बच्चों के कदम प्रकृति की ओर बढ़ते हैं। परिवारों के साथ लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, देख रहे हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी जो प्रकृति है उसको सहेज रहे हैं और उसकी ग्रोथ भी हो रही है। और एक और खबर, NCR में टैक्सी और डिलीवरी के लिए जो चलेंगे वो सिर्फ EV और CNG वाहन ही चलेंगे और ज़रूरी भी है। पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं और इन्हें बचाना भी ज़रूरी है क्योंकि इस संकट के समय में हमें ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना है आगे और ज़रूरत हो तो व्हीकल का प्रयोग करें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है तो ना करें। घर से जो काम हो सकते हैं वो घर से करें और साइकिल और अन्य जो साधन है जिनमें ईंधन का उपयोग नहीं होता जिनमें, उनका उपयोग करें और पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और शायद हम कुछ हमारे युवा साथी इन चीज़ों को भूल ही गए हैं कि हम पैदल चले कितने समय हो गया है।

एक और खबर आ रही है कि स्मार्टफोन से अब धीरे धीरे लोग स्मार्ट वर्ल्ड से उबने लगे हैं। जादू जैसा लगता था ना स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट एसी, जो चीज़ें हम खुद से ही ऑपरेट करते हैं वो चीज़ें इतनी अपडेट हो गई थी कि जिस समय चाहें हम जैसे चाहें कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारा टीवी है तो वो फ़ोन से ऑन हो जाता है, और एसी चलाना है तो घर में जाने से पहले कहीं से भी हम ऑन कर सकते हैं, फ्रिज है तो फ्रिज में भी, ऐसे स्मार्ट फीचर्स बहुत सारे आ गए हैं। लेकिन धीरे धीरे सुनने में आया कि लोगों का रुझान इसकी तरफ घट रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा नुकसान भी होता है। हम काफ़ी अनवांटेड ऐप्स को ऐसा परमिशन दे देते हैं जिसकी वजह से हमारे बैंक अकाउंट्स पे या फिर हमारी सीक्रेसी पे दिक्कत होती है। तो स्मार्ट चीज़ों हैं टेक्नोलॉजी में तो उसका थोड़ा सा नुकसान भी है। तो मैनुअल चीज़ें अपनाएं, थोड़ा सा शरीर भी काम करेगा और साथ ही साथ हमारा फ़ायदा भी होने वाला। हमारे हरियाणा के सीएम श्री नायब सिंह सैनी जी ने भी वर्क फ्रॉम होम की अपील की है। तो दोस्तों, घर से भी काफ़ी सारे काम किए जा सकते हैं, कई कंपनीज हैं, काफ़ी जगह है, वर्क फ्रॉम होम चलता भी है। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनसे आप घर से ही काम कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो ऊर्जा का संकट बना हुआ है उसको संभालने में एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही आगे बढ़ा जाएगा। सुनिए ये खूबसूरत सा गाना।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।

0: फ्रॉम रेडियो सेट्स टू रील्स 90 सालों से कनेक्ट है इंडिया की फीलिंग से, हर दौर की आवाज, हर जनरेशन का भरोसा, सेलिब्रेटिंग 90 इयर्स ऑफ आकाशवाणी। आकाशवाणी हिसार, स्टिल आइकॉनिक, स्टिल कनेक्टिंग इंडिया।
1: दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने कार्यक्रम नमस्ते हिसार में, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना रेडियो दोस्त गुंजन निनूरिया, और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कार्यक्रम को हम आपसे पूछते हैं दो सामान्य ज्ञान के प्रश्न, और अगर आप सही जवाब देते हैं तो हम आपकी पसंद का खूबसूरत सा गाना आप तक पहुंचाते हैं आपके रेडियो सेट्स पर या आपके फोन पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 9729253272, 9729253272। जी हाँ दोस्तों, इसी नंबर पर आपको सही जवाब देना है जो सवाल हम पूछने वाले हैं उसका, और उसके बाद एक और प्रश्न आपसे पूछ

सिंगरा सुनवाएंगे आपकी पसंद का प्यारा सा गाना। हमारा पहला सवाल है, भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने साल 2016 में रियो पैरालंपिक में शॉटपुट प्रतियोगिता में कितने मीटर गोला फेंक कर रजत पदक जीता। एक बार फिर से सवाल सुनिए, भारत की पहली महिला पैरालंपिक विजेता दीपा मलिक ने 2016 में रियो पैरालंपिक में शॉटपुट प्रतियोगिता में कितने मीटर गोला फेंक कर रजत पदक जीता। फटाफट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जवाब भेज दीजिए और सुनिए अपनी पसंद का खूबसूरत सा गाना आपके नाम के साथ। तब तक सुनते हैं ये एक और प्यारा सा गीत।

0: किंतु पुराना बेहतरीन।
1: दिल चीज़ क्या है?
2: नया श्रेष्ठ है।
3: केसरिया तेरा।
0: किंतु पुराना श्रेष्ठता।
2: नया उत्कृष्ट है।
3: तेरी गलियां।
0: किंतु पुराना अनमोल।
2: नया अनूठा है।
0: किंतु पुराना अनुपम।
2: सुनिए 80 और 90 के दशक के बेहतरीन नगमे
0: कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड में
2: हर बुधवार शाम 5 बजे
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। हर सुबह एक मौका है
2: खुद को कल से बेहतर बनाने का।
0: कोई है जो आपको एहसास दिलाता है
2: कि आप में दम है कुछ कर दिखाने का।
0: कीजिए अपने दिन की बेहतरीन शुरुआत
2: आकाशवाणी हिसार के साथ।
4: राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
0: सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात
2: रोज सुबह 7:40 पर
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। वर्मा जी को चाहिए सुबह सुबह ताजा खबरें
2: और मिसेज वर्मा को सिर्फ संगीत।
1: मैं अकेली घूमूं अकेली।
0: दादा दादी को मिल जाए कोई ऐसा जो उनके साथ उनके समय की बातें करे।
5: अभी न जाऊं छोड़ कर।
2: और बच्चों के लिए जरूरी है ज्ञान।

0: ऐसा हो यदि सब कुछ मिले एक ही जगह एक ही समय पर।
1: सुनिए संपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम नमस्ते हिसार
0: रोज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सिर्फ आकाश

में साल 2016 में रियो पैरालंपिक में शॉटपुट प्रतियोगिता में कितने मीटर गोला फेंककर रजत पदक हासिल किया था? तो हमारे पास जवाब आ चुके हैं और हमारे जिन साथियों ने जवाब दिए हैं उनके नाम आपको बताते हैं।

इसका सही उत्तर था 4.61 मीटर। तो हमारे जिन साथियों ने जवाब दिए उनके नाम हैं ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी से रामधारी अवाना, अवनी प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी कीरत अवाना। और इन्हीं के साथ हैं उमेश सांगवान गांव पैंतावास कला जिला चरखी दादरी से। तो सुनते हैं रामधारी अवाना जी की फरमाइश पर चमत्कार फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत।

गीत से पहले आपको बता दें अगला सवाल, और तब तक आप अगले सवाल का जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए 9722532702 पर। तो हमारा सवाल है, जेबी वीटो के तहत राष्ट्रपति किस विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है? जेबी वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है?

बहुत ही प्यारा सा गीत रामधारी अवाना जी की फरमाइश पर हमने सुना। और अगला सवाल हमारा था, जेबी वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधायक को कितने समय तक रोक सकता है? तो इसका जवाब है अनंत काल। पहले सुनते हैं, हमारे जिन श्रोता ने सबसे पहले आंसर दिया है उनकी पसंद का खूबसूरत सा गीत, और फिर आप सभी को बताएंगे हमारे किन किन साथियों ने इस सवाल का सही जवाब दिया।

0: फ्रॉम रेडियो सेट्स टू रील्स 90 सालों से कनेक्ट है इंडिया की फीलिंग से, हर दौर की आवाज, हर जनरेशन का भरोसा, सेलिब्रेटिंग 90 इयर्स ऑफ आकाशवाणी। आकाशवाणी हिसार, स्टिल आइकॉनिक, स्टिल कनेक्टिंग इंडिया।
1: मोहब्बतें फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना हमने सुना उमेश सांगवान, गांव पैंतावास, कला, तहसील जिला चरखी दादरी से हमारे श्रोता थे जिन्होंने सही उत्तर सबसे पहले दिया था। और इन्हीं के साथ थे गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी से हमारे श्रोता रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी कीरत अवाना, और जगदीश राय गर्ग जी बस स्टैंड मानसा पंजाब से। दोस्तों, वह बेहद खुशी का एहसास होता है जब आपकी पसंद के खूबसूरत से गीत हमको सुनने को मिल जाते हैं। कई बार कोई गीत ऐसा होता है जो हमें बेहद पसंद होता है लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते, सोशल मीडिया पर 24 घंटे हमारे पास फोन होने के बावजूद उस गीत को हम नहीं सुन पाते, लेकिन आप लोग हमें वो गीत याद दिलाते हैं और सुनवाते हैं तो दिल को बहुत सुकून मिलता है और आपके ही पसंद के गीत हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आज प्रेरक व्यक्ति में हम बात करेंगे दीपा मलिक जी की, भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता, जिनके बारे में हमने आपसे सवाल भी पूछा था। वे केवल एक नाम नहीं बल्कि हिम्मत, संघर्ष और आत्मविश्वास की एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका हौसला होती है। 30 सितंबर 1970 को हरियाणा के भैंसवाल गांव में जन्मी दीपा मलिक एक सैन परिवार से संबंध रखती थी और बचपन से ही उनमें अनुशासन और देशभक्ति की भावना थी, लेकिन जिंदगी ने उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रख दी। कम उम्र में उन्हें स्पाइनल ट्यूमर की बीमारी हुई, कई वर्षों तक इलाज चला और 1999 में हुई सर्जरी के बाद उनका शरीर कमर के नीचे तक लकवाग्रस्त हो गया। उन्होंने हमेशा के लिए व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा, लेकिन दीपा मलिक ने हार नहीं मानी। हार मानना उन्होंने सीखा ही नहीं था, उन्होंने अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। जहां लोग जीवन से उम्मीदें छोड़ देते हैं, वहीं दीपा जी ने खेलों की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने तैराकी, शॉट पुट, जेवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो जैसे खेलों में खुद को साबित कर दिया। दीपा मलिक जी ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन किया और उन्होंने एशिया पैरा गेम्स में लगातार पदक जीते और उनके राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए। साल 2016 में ब्राजील की रियो ओलंपिक में उन्होंने इतिहास रच दिया। महिलाओं की शॉटपुट F53 यानी 53 स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर वे पैरालंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी और उनका ये कारनामा पूरे देश के लिए गर्व का क्षण था।

दोस्तों, दीपा मलिक केवल खिलाड़ी ही नहीं बल्कि मोटर स्पोर्ट्स में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। वे भारत की पहली दिव्यांग महिला हैं जिन्होंने हिमालयन कार रैली जैसी कठिन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और उन्होंने कई लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए। उनकी उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें महिलाओं को प्रेरित करने के लिए सम्मान मिला। उनकी कहानी हर उस इंसान को प्रेरणा देती है जो जीवन में कठिनाइयों से हार मानने लगता है। दीपा मलिक जी ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, कई बार जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब दिल चाहता है कि छोड़ दें सब कुछ। हताश होकर हम पीछे हटने लग जाते हैं इस जीवन को आगे चलाने के लिए। उस समय याद कीजिए ऐसे लोगों को जिन्होंने इस मुकाम को हासिल किया और अपनी जो कठिनाइयां हैं उनको बाधा बनने नहीं दिया अपने लक्ष्य के बीच में। तो कभी भी ऐसा अगर आप सोचें तो इस कहानी को जरूर एक बार याद कर लें।

0: क्या आप परेशान हैं?
1: मैं परेशान।
2: क्या आप खुश हैं?
3: आज मैं ऊपर।
0: क्या आप डांस करना चाहते हैं?
2: क्या आपका दिल टूटा हुआ है?
4: दिल के टुकड़े टुकड़े करके।
0: या आप प्यार में हैं?
5: पहला पहला प्यार है।
2: क्या आप अपने पुराने दिनों में लौटना चाहते हैं?
6: कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
0: तो मैसेज कीजिए 9729253272 पर,
2: क्योंकि हमारे पास है हर गाना आपके मूड और सिचुएशन के हिसाब से।
0: कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे, हर मंगलवार और शुक्रवार रात 10 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
7: दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा हमें ज़रूर लिख भेजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के, फ़ोन कॉल्स के माध्यम से भी हम आपसे बातें करते हैं, आपसे जुड़ सकते हैं। तो अब आपने रेडियो दोस्त गुंजन निडोरिया को कार्यक्रम नमस्ते हिसार समेटने की दीजिए इजाज़त। FM बैंड 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब से थोड़े ही पलों के इंतज़ार के बाद आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम रंग तरंग। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा करें बस चंद पल।

हम सुन रहे थे ये गीत दीवाना एल्बम से सोनू निगम की आवाज में फैज अनवर के बोलों के साथ साजिद वाजिद ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम रंग तरंग में, जो कि है पल के की आवाज में। महबूब के बोल हैं और के का ही संगीत है और लिया गया है पल एल्बम से।

0: हम सुन रहे थे सुनो एल्बम से लकी अली की आवाज में असलम के बोल और लकी अली के संगीत के साथ ये सुमधुर सा गीत कार्यक्रम रंग तरंग में। चलिए चलते हैं, सुनते हैं ये संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: सिर्फ आंसू है उनमें सिर्फ दर्द की रंज की बात है और फरियाद है मेरा अब कोई नहीं मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं।
1: हम सुन रहे थे ब्रीफ।

लेस शंकर महादेवन की आवाज में और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस नगमे को जावेद अख्तर ने इसे अपने बोल दिए हैं। आइए सुनते हैं अगला प्यारा सा नगमा जो नुमाइश एल्बम से है, पंकज उदास ने गाया और संगीतबद्ध किया है, जफर गोरखपुरी ने इसे बोल दिए हैं।

चांद मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिस

हम सुन रहे थे जान एल्बम से सोनू निगम की आवाज में फयाज अनवर के बोलों से सजे हुए इस गीत को, जिसे संगीतबद्ध किया है निखिल विनय ने।

हम सुन रहे थे पिया बसंती एल्बम से उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा की आवाजों में संदेश शांडिल्य ने इसे संगीतबद्ध किया था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अगला गीत, जो कि है आंखों में तेरा ही चेहरा। आर्यन इस एल्बम से लिया गया है, जय वालिया ने इसे गाया है, जय वालिया ने ही इसे लिखा है और ललित ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं यूफोरिया एल्बम से यह गीत जिसे गाया है पलाश सेन ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम रंग तरंग यहीं तक, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक है।
3: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: भारत और स्वीडन ने फैसला किया है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग साझा समृद्धि और सतत भविष्य का रास्ता तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया के सामने एक निर्णायक विकल्प है, या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाना या फिर अपनी साझेदारियों को मजबूत बनाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवम्बर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ये समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है।
4: दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गयी, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल होगा आपके बीच बस थोड़ी ही देर के बाद। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। यादों की महफिल में हम लेकर आते हैं किसी एक की याद, और आज हम लेकर आए हैं कवि प्रदीप के गीतों को। कुछ उन्होंने गाए हैं, कुछ उन्होंने किसी और गायन गायक की या गायिका की आवाज में हमारे बीच में प्रस्तुत किए हैं। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं कवि प्रदीप की आवाज में ये पहला नगमा।

वामन अवतार फिल्म से हम सुन रहे थे ये गीत प्रदीप की आवाज में, प्रदीप के ही बोल और अविनाश व्यास के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल में। ये गीत लिया गया है फिल्म मशाल से, मन्ना डे की आवाज में, प्रदीप के बोल, सचिन देववर्मन का है संगीत।

विराम के पश्चात पुनः स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं यादों की महफिल का अगला गीत, शंकर सीता अनुसुईया। इस फिल्म से प्रदीप के बोल हैं, प्रदीप की ही आवाज है और शिवराम का है।

0: हम सुन रहे थे गीत पैगाम फिल्म से मन्ना डे और साथियों की आवाज में प्रदीप के बोल सी रामचंद्र के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम यादों की महफिल में सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में
2: के जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
6: तुम्हारी याद सताते हैं
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं यादों की महफिल में प्रदीप के द्वारा लिखा गया और प्रदीप के द्वारा ही गाया गया नागमणि फिल्म से यह गीत, जिसे संगीतबद्ध किया अविनाश व्यास ने।
7: तीन

कभी धूप कभी छांव फिल्म से सुन रहे थे ये गीत हम, प्रदीप के बोल और प्रदीप की ही आवाज में, चित्रगुप्त के संगीत के साथ।

0: हरिश्चंद्र तारामती इस फिल्म से सुन रहे थे हम इस गीत को हेमंत कुमार की आवाज में, प्रदीप के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: देना साथ मेरा वो हम नवा,
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।

0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं एक और रचना जो कवि प्रदीप की कलम से निकली है और ये खूबसूरत सी रचना को आवाज दी है कवि प्रदीप ने ही, वसंत देसाई ने इसे संगीतबद्ध किया है और फिल्म है दो बहाने।

हम सुन रहे थे अमर रहे ये प्यार, आशा भोसले की आवाज में। हमने लिया ये गीत अमर रहे ये प्यार फिल्म से, प्रदीप के बोल हैं और सी रामचंद्र का है संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत नास्तिक फिल्म से, प्रदीप की आवाज, प्रदीप के ही बोल हैं, सी रामचंद्र का है संगीत।

स्कूल मास्टर फिल्म से सुन रहे थे ये गीत लता मंगेशकर तलत महमूद की आवाज में प्रदीप के बोल वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत जो कि है फिल्म जागृति से। मोहम्मद रफी की आवाज है, प्रदीप के बोल है, हेमंत कुमार का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। सुरीला सफर शुरू होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर में हम प्रति रोज आपको देते हैं एक बहुत प्यारी सी इबारत, और उस इबारत के साथ हम चुनते हैं कुछ नगमे। कभी कभी आपके और हमारे नगमे मिल जाते हैं और बन जाता है बड़ा प्यारा सा सुखद संजोग भी। तो चलिए हम चलते हैं आज की इबारत की ओर। इबारत कुछ ऐसी है कि चलो ना एक याद जीते हैं, अपनों की अपनों के साथ जीते हैं। कल ही तो उसका जन्म हुआ और सुनी हमने फूलों सी हंसी, फिर वही बालपन का सच्चापन और बढ़ती उम्र की नटखट नादानियां, फिर वही उम्र जब किताबें साथी बन गई और उम्र का वो साल जिसे बाली उम्र कहते हैं आ ही गया, और कब किसी के नयनों से भेंट हो गई, फिर प्रेम की जीत हार संघर्ष, साथ में बड़ा नाम करने की ख्वाहिश भी, और जीवन साथी संग विवाह भी, धीरे धीरे एक परिवार जहां बहुत प्रेम है, और फिर सुकून भरी दुनिया। शायद यही जीवन है आपका, हमारा, हम सबका। और इस प्यारी सी इबारत के साथ में हमारे श्रोताओं ने बहुत प्यारे प्यारे संदेश भेजे हैं, और उन संदेशों को पढ़कर बड़ा आनंद आ रहा था। जैसे हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे से लिखा है कि भारतीय संस्कृति, दर्शन और आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से मनुष्य का जीवन चक्र एक बेहद खूबसूरत और व्यवस्थित यात्रा है। चाहे हम विज्ञान की नजर से देखें या दर्शन की, मनुष्य का जीवन चक्र हमें सिखाता है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। हर अवस्था का अपना एक अनूठा महत्व, सौंदर्य और कर्तव्य होता है। यादें बचपन से बड़े होने तक का सफर, ये हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि यादें बचपन से बड़े होने तक का सफर, बच्चों की मासूम हंसी, सच्चाई, नादानियां, उम्र के साथ किताबें, बाली उम्र में नैन से नैन मिलना, प्रेम की जीत हार संघर्ष, नाम करने की ख्वाहिश, जीवन साथी, परिवार, सुकून भरी जिंदगी, सुकून भरी दुनिया, यही है जिंदगी। ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं, हमारे और श्रोता लिख रहे हैं कि जीवन का कालचक्र मुख्य रूप से मनुष्य के जन्म, विकास और समय के साथ निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। शैशवावस्था और बचपन 0 से 12 वर्ष तक विकास और सीखने का प्रारंभिक चरण, किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलावों का दौर, वयस्कता आत्मनिर्भरता, करियर और पारिवारिक जीवन की शुरुआत, इसके लिए उन्होंने 20 से 40।
1: FM बैंड 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम। अब से चंद क्षणों के इंतजार के बाद सुनिए प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा करें, बस चंद पल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। यह रिपोर्ट न्यायाधीश एवं जांच समिति के पीठासीन अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य द्वारा श्री बिरला को संसद भवन में सौंपी गई।
1: एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज साइकिल से सफर किया और सवेरे सुखना लेक पहुंचकर सुबह की सैर की। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की और स्वस्थ भारत स्वस्थ हरियाणा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद उन्होंने उचित कदम उठाए हैं और साइकिल का प्रयोग भी शुरू किया है।

0: तो मिड दृष्टि की समस्या आज पूरे वर्ल्ड के सामने खड़ी हुई है। हमें पहले ही सचेत रहने की आवश्यकता है। हम बाहर अगर जाएं तो हम ट्रेन से जाएं, बसेस का उपयोग करें और ज्यादा ईवी का उपयोग करें, गाड़ी का कम उपयोग करें, पेट्रोल डीजल की हम बचत करें, ताकि इस अभियान में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की उसको गति मिल सके और भारत को मजबूती मिल सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था और हमने हरियाणा के अंदर भी अलग से एक एसओपी तैयार किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान को लेकर के, और उसमें चाहे वर्चुअली बैठ के करने की बात हो उसके अंदर हमने कई प्रकार के निर्णय लिए हैं।
1: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर तमाम राज्यों के मंत्रियों और बड़े अधिकारियों ने भी अपना काफिला छोटा कर दिया है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री मेट्रो में सफर करते हुए नजर आए। बीजेपी नेताओं ने भी अपने काफिले को छोटा करते हुए सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल में सफर करना शुरू कर दिया है। उन्होंने विपक्ष से भी जनता के साथ मिलकर विकसित भारत के संकल्प में साथ देने की अपील की। गौरतलब है कि श्री मोदी ने पश्चिम मध्य एशिया में चलते हालात के मद्देनजर हाल ही में देश से ईंधन बचाने और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की थी। हरियाणा मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत वन टाइम वन वे स्विच सुविधा को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये मंजूरी दी गई। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर गत वर्ष 2 जुलाई को जारी अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की थी, जो 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हुई। भारत सरकार द्वारा गत 25 अगस्त के कार्यकाल ज्ञापन के माध्यम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में वन टाइम वन वे स्विच सुविधा प्रदान की। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल द्वारा हरियाणा अभिलेखागार विभाग ग्रुप बी सेवा नियम 1992 में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की गई है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा प्रबंधन नागरिक सुविधाएं एवं आधारभूत संरचना की कमी वाले क्षेत्र विशेष प्रावधान संशोधन अधिनियम 2025 के प्रावधानों को लागू करने हेतु संशोधनों को मंजूरी दी है। इस निर्णय का उद्देश्य राज्यभर में अनाधिकृत औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नियमितीकरण को सुगम बनाना और ऐसे क्षेत्रों में बुनियादी नागरिक सुविधाएं एवं आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना है। मंत्रिमंडल ने विकास एवं पंचायत विभाग के हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों को श्यामलात भूमि उपलब्ध कराने के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। संशोधन के बाद ग्राम पंचायतों को हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों और स्वयं सहायता समूहों की सहकारी समितियों को डेयरी स्थापित करने के लिए 500 वर्ग गज तक की श्यामलात देह भूमि पट्टे पर देने की अनुमति होगी। इसी के साथ ये प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
2: FM बैंड 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अभी आपने सुने प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से। आइए अब आपको लिए चलते हैं विविध भारती के मुंबई केंद्र।

एकमात्र दुनिया होती है। और लेकिन उम्र के साथ, दोस्तों के साथ, करियर, जीवन साथी का आना जीवन का एक स्वाभाविक खूबसूरत पड़ाव। अक्सर जीवन में ये बदलाव बच्चे किताबों की दुनिया से निकलकर व्यवहारिक जीवन की जिम्मेदारियों की ओर आगे बढ़ते हैं। नए रिश्ते और उनके जीवन में ताजगी और एक नया नजरिया लेकर आते हैं। ये एक ठहराव है, परिवार के रूप में होती है, जहां हंसी खुशी सुकून शांति दूरियों का संजोग बन जाता है और इसी के बीच में चलती बढ़ती जाती है

जिंदगी और इसी का नाम है जीना। बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है। तो जन्म से लेकर, हमारे कौशोता लिखते हैं कि जन्म से लेकर बुढ़ापे तक के जो अपने इंसान अपनों का साथ रहता है, अब उस सब बचपन फूलों सी हंसी संगी साथी सब कुछ एक धुंधली सी याद बनकर रह जाती है। बाली उम्र में किसी से नैना लड़ जाए तो जीवन साथी को पाकर एक प्रेम से भरी दुनिया बन जाती है। जीवन का संघर्षों का नाम है और जो इसका सामना कर सके वही आगे बढ़ गया, वही सच्चा इंसान है। अपने तो अपने होते हैं। और बहुत सारे गीतों के नाम आपने लिखे जो हम नहीं पढ़ने वाले। हमारे श्रोता एक और लिखते हैं, जीवन का कालचक्र का सुंदर वर्णात्मक झांकी प्रस्तुत की गई है। शैशव काल की मुस्कान किलकारियों से गुजरते हुए अल्हड़ बाल काल से नव यौवन का जब दस्तक देता है तो जीवन का सबसे संवेदनशील मोड़ होता है। ना अति परिपक्वता, ना ही बचपना, ना ही यह मोड़ आगामी जीवन के लिए सही बुनियाद होती है। संयुक्त परिवार के परिवेश में समुचित बौद्धिक विकास होता है। यह फिर युवा काल विवाह से गृहस्थ स्तंभ की ओर कदम पड़ते हैं। आज की एकल परिवार व्यवस्था में समुचित मानसिक बाधक है। मानव संकीर्ता तनाव और अपने आप में सिमट कर रह गया तब महसूस होता है कि जीवन की भीड़ में इकाई मात्र बनकर उम्र गुजार दिए। ऐसी कुछ व्याख्या बहुत अच्छे से करते हैं हमारे श्रोता। लिखते हैं कि आपने चंद शब्दों में ही इंसान के पूरे जीवन चक्र और भावनाओं को बहुत गहराई से और खूबसूरती से पिरो दिया है। वाकई जीवन की यात्रा खूबसूरत बहती हुई नदी के समान है, जहां शैशव की निष्कलंक हंसी से लेकर किशोरावस्था के सपनों की से भरी उड़ान तक हर पड़ाव तक एक अनमोल है। संघर्ष, प्रेम, समर्पण के रेशों से बुना परिवार और परिवार के साथ वो सुकून भरी दुनिया हमारी असली दौलत वाकई जीवन में इन्हीं अनमोल यादों और रिश्तों की एक खूबसूरत सफर है। जिंदगी के इस बेहतरीन सफर को शब्दों में पिरोने के लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, स्मृतियों के झरोकों से अतीत की ठंडी हवाएं चलती हैं, मन का कोना कोना किसी भीनी खुशबू से महक उठता है। यादें जीवन की वह अनमोल पूंजी है जिन्हें ना तो समय चुरा सकता है, ना ही वक्त की धूल धुंधला सकती है। यह इंसान के भीतर बसा एक खूबसूरत सा संसार है, जहां बीता हुआ कल हमेशा आज बनकर सांस लेता है। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे प्रश्न की तरफ और अगले गीत की तरफ। हमारा प्रश्न ये है कि एक बात बता दीजिए कि आप जो छोटे वाले थे ना, बहुत छोटे वाले, यानी मैं भी छोटी सी थी, उस समय आपने ऐसी कौन सी बदमाशी या ऐसी कौन सी शैतानी की थी जिस शैतानी के लिए या तो बहुत सारी डांट पड़ी थी या बहुत सारी पिटाई। जल्दी से बताइएगा, उस बचपन को याद कीजिए जिस बचपन में आपने बहुत शरारतें की हैं, बहुत मस्तियां की हैं, लेकिन अपने जीवन को खुल के जिया है। आइए सुनते हैं ये गीत।

मिली फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, योगेश के बोल और सचिन देव बर्मन की आवाज बड़ी सुंदर से संगीत के साथ में। और हमारे श्रोताओं ने, हमने प्रश्न पूछा नहीं, लेकिन क्या है ना, आपके पास इतना ज्ञान है जिसे सच में मैं कुछ कह ही नहीं सकती। हमारे विविध भारती के श्रोता बहुत ज्ञानी हैं और मैं उनके ज्ञान को प्रणाम करती हूँ। हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने लिखा, मिली ढूंढने वाला पूछता है सवाल और जवाब भी वही है, मिली। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और चलिए अब हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है, तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं बचपन को लेकर कि बचपन एक ऐसा समय होता है जब मन में कोई स्वार्थ, ईर्ष्या और भविष्य की चिंता नहीं होती। बच्चा हर पल में जीना चाहता है। इस उम्र में बच्चा जिज्ञासु होता है, नई चीजों को छूना, तोड़ना, फोड़ना और हर बात में सवाल पूछता है। उसका स्वभाव होता है बचपन में रोने और हंसने में कोई मिलावट नहीं होती। अगर बच्चा किसी बात पर रुठता है तो बहुत जल्दी मान भी जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये बचपन होता ही बड़ा खूबसूरत है। और हमने आपसे पूछा था कि आप भी अपनी शरारतें हमारे साथ साझा कीजिएगा, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन की बहुत बड़ी शरारत याद आती है जिसके लिए मम्मी की मार पड़ी थी। मैं और भैया बिना किसी को बिना बताए नदी में नहाने चले गए थे। हम दोनों ही छोटे थे और हमें ये लगता था कि इस नदी के साथ साथ हम एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाएंगे। अरे बाबा रे, ऐसी बड़ी गलती हमें करनी ही नहीं चाहिए। ये तो बड़ी गलती कर दी थी तो पिटाई तो शायद बनती है, क्योंकि आपके जीवन का भी तो सवाल बनता है ना। उसके बाद हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में बड़ा भाई जो मुझसे 2 साल बड़ा है को कसाई बोलने पर जो गुस्सा आता था, तब मैंने विज्ञान में वायु के उपादानों को याद करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड कसाई याद करते हुए कसाई शब्द को जोर से उसकी तरफ देखकर पढ़ने लगा। वो उस पहले समझा मैं याद कर रहा हूं, बाद में जब वो समझा तो खूब लड़ाई हुई। ये भोलापन, ये मासूमियत और ये लड़ाइयां बड़ी खूबसूरत होती है। वैसे हमारे श्रोता लिखते हैं, मैंने तो शरारत बहुत कम की है, पर एक बार मेरी माँ सब्जी लेने गई हुई थी, मैंने लाइट के जो पुराने काले बटनों के ऑन ऑफ करने वाले जो खटके होते हैं ना, हाँ, उसमें एक तार डाल दिया था और मुझे इतनी जोर से करंट लगा कि आज भी याद आती है। सच में बहुत जोर से करंट लगा होगा और बड़ी तकलीफ भी आपको हो गई होगी ऐसे काम करने में।

होनी चाहिए, भले वो बचपन हो या बड़े हो गए हो। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन की बात कुछ और थी, अपनी सोसाइटी के बच्चों की टोली का लीडर था, सोसाइटी में कोई छत नहीं थी जहां पे पतंग लेने ना गया हूं। सच में वो क्या दिन थे, क्रिकेट, गिल्ली डंडा, आइस पाइस, खोखो, धूम खेले हैं, क्या बात है, बचपन की यादें ताजा हुई। बहुत सही, धन्यवाद। हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और खूब मस्ती और खेल शैतानी करते थे, क्या बात है। हमारे श्रोता ने कहा कि हमारी पसंद का गीत है ये, मैंने कहा जो वो रोज सुन सकती हैं, और कई बार इस गीत में फूलों के साथ सच में उन्हें हंसते हुए देखा गया है, सच बात है। और चलिए हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, जया की मस्ती ये गीत माला, बहुत खूबसूरत से गीत आपको पसंद आया। हमारे श्रोता लिखते हैं, कभी ना भूलने वाले बचपन के दिन, आज भी भगवान से मानते हैं। बसंत पंचमी का दिन था और हमारे घर के पास मंदिर बन रहा था, वहीं पार्क में मैं और मेरी बहन खेल रहे थे, उसके सिर पर झूले की कील लग गई और बहुत सारा खून बहने लगा। मैं उसे लेकर मंदिर में गई, शिव जी के सामने गाने लगी, क्योंकि पिक्चर में देखा था कि गाना गाने से सब ठीक हो जाता है, चोट तो ठीक नहीं हुई, ज्यादा बिगड़ गई घर आने पर, बहुत पिटाई हुई, बहन के सिर पर सात टांके आए, बस वही दिन सबसे अच्छे थे। सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मैंने बहुत मस्तियां की, मैंने दुकान के किराएदार की साइकिल के डेढ़ पगिए पर बहुत सारे छेद करके उसको पंचर कर देता था और पास ही नवनिर्मित मकान में रात में पत्थर फेंकता था। गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए था। पर ठीक है, ये बचपन की शरारत है, बचपन की शैतानियां है, और ये हमारा बचपन हमारे साथ बना रहे, क्योंकि बचपन में मन कितना सच्चा और बच्चा होता है ना। बचपन में आपने शरारतें तो की है, कोई ऐसा काम किया जिसके लिए आपको शाबाशी मिली, आपकी पीठ ठोकी गई, वो बात भी हमारे साथ साझा कीजिए। और बताइएगा इस गीत में जो अभिनेत्री है वो कौन है, उनका नाम क्या है, बताइएगा।

जो अभिनेत्री हैं वो कौन है? तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि दोहरी भूमिका निभाते हुए नीतू सिंह इसमें हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। और हम आपसे पूछ रहे थे आपकी शरारतों के बारे में, और शरारतों के साथ हमने ये भी पूछा था कि ऐसा क्या किया कि जिसके लिए आपकी पीठ थपथपाई गई हो। तो जरूर से बताइएगा कहाँ कहाँ आपकी पीठ थपथपाई गई। बदमाशियां तो हमने कर ली, तो पीठ में पिटाई हुई, लेकिन कभी कभी वो पिटाई जो है वो बड़ी प्यार से सहलाते हुए भी आ जाती है, क्योंकि हम कुछ बढ़िया काम कराते हैं, तो वो भी साझा कीजिएगा। पर हमारे श्रोता जो हैं वो कम बदमाश नहीं रहे। पढ़ते पढ़ते मैं इस गीत के साथ बहुत जोर जोर से हंस रही थी, क्योंकि आपकी शैतानियों का पुलिंदा ही इतना बड़ा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने बचपन में एक बार शैतानी की थी। मामला ऐसा था कि गणित विषय में मुश्किल लगता था, तो एक बार मैंने होमवर्क नहीं किया, शिक्षक की डांडियां मार पड़ेगी इस डर से मैंने घर से स्कूल के टाइम पर निकला तो सही, लेकिन नजदीक ही पेड़ के पास बैठ गया। करीब एक घंटे बाद माँ किसी काम से निकली तो मुझे देख लिया, पास आकर बोली, तू स्कूल ही गया? मैं कुछ बोल नहीं पाया, हाथ घसीट कर घर ले आई। फिर सच्चाई पता चलने के बाद बहुत मार पड़ी, और उस दिन से बेवजह स्कूल कभी नहीं छोड़ी, लेकिन वो दिन याद करके आज भी हंसी आती है। अच्छा, हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन में क्या नहीं किया, गर्मी की छुट्टियों में दादी के घर जाते थे, घर में बकरियां थी जिन्हें हम नदी किनारे छोड़ जाते थे और वहीं नदी में नहाने लग जाते थे। मस्ती में कब टाइम निकल जाता था पता नहीं चलता था, और माँ हमें खोजते हुए आती थी, उनको देख हम लोग दौड़ लगाते थे। दीदी तो निकल जाती, मैं माँ के साथ आ जाता और जो कुटाई पड़ती थी, आहा क्या मजा आता था। तो ये बात तो बड़े मजेदार होती है, और कहते हैं कि माँ की मार भी बड़ी प्यारी होती है ना, बड़ी स्वादिष्ट होती है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन मानव जीवन का सबसे खूबसूरत दौरों में से एक होता है, यह खोज और अन्वेषण का समय है। इस अवस्था में दुनिया के बारे में खोज करते हैं, बच्चे के रूप में जीवन के आनंद की संभावनाओं को अंतहीन मन समझ पाते हैं, बड़े होने पर दायरा बढ़ जाता है। स्वस्थ खुशहाल बचपन का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। बचपन मासूमियत और आश्चर्य का समय होता है, खेलना, खोजबीन करना और एक बच्चा होने जैसी गतिविधियां खास होती हैं, तो क्योंकि सभी का बचपन बेफिक्री का हिस्सा है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं, स्याही लगा के जनाब हीरो बन गए, क्या बात है, बहुत सारी बात। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि हम जो हैं वो शाबाशी वाला काम भी हमने किया है। पहले जमाने में प्लास्टिक नहीं चलती थी और मुझे सिलाई का शौक था, तो मैंने मेरी माँ के पुराने कपड़े में एक थैला बना के दिखाया था, तो उसमें शाबाशी मिली थी और पैसे भी मिले थे। क्या बात है, आप तो तब से ही जो पुरानी चीजें उसका उपयोग करना जानते हैं, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोताओं ने बड़े प्यार से अपने बारे में लिखा है कि जो ये तकरीबन 7 साल के थे हमारे श्रोता, तो मम्मी जी के तकिए से 20 रुपए निकाले थे और पतंगी डोर खरीद कर खूब पतंग उड़ाए थे। जब चोरी का पता पिताजी को पड़ा था तो खूब पिटाई हुई थी। कड़ी दोपहर में उनके सारे कपड़े उतार कर धूप में छोड़ दिया गया था, बहुत रोए थे, और तभी उनकी दादी ने उन्हें चुप कराया था और पापा को डांट भी पड़ी थी, और ये दिन ये भूलते नहीं है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन अक्सर क्या होता है, मासूमियत भरी शरारत के लिए बहुत पार पड़ती थी, कभी शरारत की हो तब ना की हो तो भी पड़ जाती थी। हाँ, वो तो है कि जब जिसका दिल करे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, बचपन में मैंने टीचर को सर पर स्लेट मारी थी। अरे भाई, ऐसे काम नहीं करने चाहिए, ये गलत है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में आम के बाग थे, गर्मी के दिनों में बच्चे दमा चौकड़ी करते और पेड़ों पर चढ़ जाते। इकलौता बेटा होने के कारण माँ हमेशा पेड़ पर चढ़ने से मना करती थी, क्योंकि एक लड़के का पैर 1 साल पहले गिरने से टूट गया था। मना करने के बाद भी पेड़ पर चढ़ता था, पता नहीं होता था माँ को। लेकिन एक दिन माँ खोजते हुए बाग में पहुंच गई, बच्चों ने बताया कि देखो पेड़ पर चढ़ा है, मैं नीचे उतरा, माँ ने डंडे से खूब मारा, बाद में फिर पेड़ों पर चढ़ना बंद कर दिया। हमारी एक और श्रोता लिखती है कि बचपन में शरारतों का अंबार था, पड़ोस की गुलाटी अंकल के आते में सब्जियां लगी थी, इसमें टमाटर बहुत लगे थे, सारे टमाटर अधपके होकर दिखाई दे रहे थे, खाने से मतलब नहीं था। अंकल उनके तरफ पिट्टू खेलने या रबड़ की बॉल ले जाने पर बहुत गुस्सा करते थे, अब उनके डांट का गुस्सा या टमाटर का लालच हम भाई बहन बगल के टमाटर से सारे टमाटर तोड़ लाए, और कुछ टमाटर हमने खाए और कुछ जो बच गए उनको हाथे में डाल दिया, कच्चे टमाटर पेट में जाकर हड़ताल कर दिए, उन्हें उल्टियां हुई, जब उल्टी हुई तो टमाटर तोड़ने का राज खुला, भैया को ज्यादा लगा उल्टी होने से मैं बच गई, पर उनके हाथे में के बीच में हमारा आना जाना बंद हो गया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चीनी के डब्बे में हाथ मारना, आम के बगीचों से आम खाना, टीचर के बोर्ड की तरफ मुड़ते ही क्लास में कागज के हवाई जहाज उड़ाना, इन शैतानियों के बाद मिलने वाली डांट या सजा भी बहुत प्यारी होती थी, चाहे कितनी भी बड़ी शरारत क्यों ना हो, प्यारी सी मुस्कान और सॉरी सुनकर सब साफ हो जाता था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सोसाइटी की टोली के लीडर थे और ऐसी कोई छत पर नहीं गए थे जहां पर पतंग नहीं गई थी, बहुत बढ़िया बात। हमारे

श्रोताओं ने लिखी है, तो चलिए अपनी शरारतें और शाबाशियां बचपन की जरूर लिखते जाइए। ये एक गीत और उन सभी नटखटों के नाम जो बड़े होकर बहुत बड़े बहुत विशाल बन जाते हैं।

अमर प्रेम फिल्म से यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी के बोल आर डी वर्मन के संगीत के साथ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर में 2 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक की एक सासू माँ है। एक नए मेहमान के आने की तैयारी चल रही है। जीवन का हर रंग रोज देखने के लिए मिलता है। जन्म की मासूमियत, बचपन की शरारतें, जवानी के सपने, संघर्ष की तपिश, रिश्तों की गर्माहट और अंत में सुकून ठहराव। सबसे सुंदर बात यह लगती है कि जीवन किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों में खुशियां खोजने में है। किसी की फूलों जैसी हजी, किताबों से दोस्ती, परिवार का साथ, यही तो असली दौलत है। कल जो बच्चा था आज जिम्मेदारियों के साथ खड़ा है। इसलिए हर पड़ाव को जीना संजोना जरूरी है। जिंदगी तभी सुरमई बनती है जब उसमें अपने लोग, यादें और संघर्ष और प्यार सब साथ में चलते हैं। इतनी अच्छी बात लिखी है। बचपन कली जवानी, फूल और बुढ़ापा उसके साथ फल है। इसे बचपन की हंसी, जीवन का आगोश, बुढ़ापा समझदारी, इस रूप में देखा जाता है। ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं। वह अंत में लिखते हैं कि जीवन का निचोड़ का फल है बुढ़ापा, और यही अनुभवों का कड़वा फल भूखता है, दूसरों को ज्ञान देता है। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। चलिए अब हम चल रहे हैं। हमने आपसे बहुत सारी बातें करी थी और आपने भी अपनी बहुत सारी बातें लिखी हैं। हमारी एक श्रोता लिखती है कि स्कूल में लंच टाइम पर मैं और मेरे 2-3 साथी स्कूल के लिए पास ही खेत पर चले जाते थे, जहां पर इमली और आम के पेड़ थे। उन पर पत्थर मारते थे, फल गिरने पर उन्हें खा लेते थे। बहुत सी बार पत्थर वहां रहने वाले लोगों को लग जाते थे, तो इस सब में मार पड़ने के डर से हम चले जाते थे। हमारे श्रोता लिखते हैं कि शरारत बचपन में किसने नहीं की। बागों से आम, अमरूद, इमली ये सब तोड़कर खाना आम बात थी। हमने फिल्में बचपन से छुप छुप कर बहुत देखी है, क्रिकेट बहुत खेले हैं। अहो क्या बात है। और हमारे एक और श्रोता बड़े प्यार से बताते हैं ये जो फिल्म के गीत के बारे में। वो लिखते हैं कि फिल्म अमर प्रेम का गीत है, लता जी की आवाज है, आनंद बख्शी का गीत, आर डी बर्मन का संगीत, शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया गीत है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मेरे भैया देहरादून गए थे, मैं कुछ बड़ी थी तो मैं उनके पीछे पीछे टीवीएस चलाई, लेकिन मेरे 2 छोटे भाई बहन उन्हें भी ट्राई किया। गाड़ी रेस होती थी, ज्यादा तो नहीं लगा लेकिन थोड़ा गाड़ी को नुकसान हो गया, बाद में डांट पड़ी है। बिल्कुल सही बात है। सबने बाद में, भाई ने आने के बाद सबको गाड़ी सिखाने का प्रॉमिस कर दिया। बचपन की शाबाशी याद नहीं है, ऐसा हमारे श्रोता लिखते, पर शरारत जरूर याद है, और इतनी है कि गिनवाते गिनवाते प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अच्छा, बाड़े में रहते थे, वहां 20 किराएदार थे। उसमें बारूद की सिगड़ी, मतलब सिगड़ी पर भोजन बनाया जाता था। सिगड़ी छत पर रख दी जाती थी ताकि धुआं ना हो। हम बच्चे उस सिगड़ी में लाल मिर्च डाल दिया करते थे, जिससे पूरे बारे में मिर्ची की गंध भर, दुर्गंध भर जाती थी। वो पूरा बारा छींक छींक के परेशान हो जाता था। मेरी मम्मी मुझे बोलती थी, बाग में जाना तो कच्चे आम तोड़कर नहीं खाना, पर हम कहां मानते थे, डंडे गुलेल से आम मार के खा भी लेते थे, जो बचता था घर ले आते थे। तब मम्मी मारती नहीं थी, कोई बात नहीं। हमारी श्रोता जो है कह रहे हैं, रोटी बना रही हैं और कमेंट कर रही हैं, बस यही तो जीवन है, हम प्यार से हर रंग को जी लेते हैं। हमारे श्रोता बहुत खुश है कि उनके गीत को लिया गया। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि हम अपने बचपन में 10 वर्ष की उम्र में सुंदर कांड गाया था हारमोनियम बजाकर। हमें वो दिन याद आ रहा है, और ₹50 मिले थे पुरस्कार के रूप में, 11 दिन थे, और ₹50 बहुत बड़ी चीज होती थी, तो ऐसा हम मानते हैं। हमारी श्रोता लिखती है कि बचपन में हमारी सहेली के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, वो लिख नहीं पाती थी, हम अपना भी लिख लिया करते थे, उसका भी लिख देते थे, और दोपहर में भोजन के समय में उसे खाना भी खिलाती थी। इस टीचर ने बड़ी तारीफ करी थी। हमारी सहेली के माता पिता को भी बताया था। ऐसे ही हमारे श्रोता एक और लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया इबारत है, जिसमें निस्वार्थ लिए हुए बचपन, दूसरी ओर अर्थात लिए हुए यौवन, और सबका निचोड़ अनुभवी जीवन की प्रौणावस्था, इस उम्र तक आते आते यादों का गुलदस्ता बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, हमारे हमउम्र मामा जी ने मुझे चक्की में से सत्तू चोरी करवाई थी बचपन में। सुबह जब सबको पता चला तो मामा जी को तो डांट पड़ी, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो मेहमान बनकर गई थी। सही बात है। स्कूल के दिनों में गर्मियों के स्कूल में लड़कियों की अक्सर नकसीर फूट जाती थी। एक ही लड़की को हुआ, सारी लड़कियां डरकर भाग गई, पर मैं अपनी चचेरी बहन को देखा, ऐसे होते हम 2 सहेलियों ने मिलकर उसे जमीन पर लिटाया, उसकी नाक पोछी, ठंडा पानी पिलाया और प्राथमिक उपचार किया, और स्कूल की टीचर को भी बता दिया, और बड़ी दीदी ने बड़ी पीठ थपथपाई थी आपकी। हमारी श्रोता लिखते हैं, गाय माता के बछड़े को खोल देते थे सुबह सुबह, दूध खाली कर पी जाता था तो पिताजी बहुत मारते थे, और खोलते इसलिए थे क्योंकि माँ बेटे दोनों रो रहे होते थे।
हमारी कौशोता लिखती है कि एक बात और, हम अपनी सिर पर चुन्नी रख के आंखें बंद करके मस्ती में बैठ जाते, चुन्नी रख के बैठ जाते थे और सबसे सबके से कहते थे हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि प्रार्थना का तो अर्थ पता ही नहीं था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मेरा दोस्त और मैं रात को मेन मार्केट में रोड के दोनों तरफ खड़े हो जाते थे, हाँ, और एक रस्सी रखते थे, कोई निकलता था तो दोनों दोस्त रस्सी को ऊपर कर देते थे।

गिर जाते थे, इस चक्कर में कई बार मार भी पड़ी। ये तो गलत बात है। हमारे एक श्रोता सातवीं कक्षा में प्रथम आए थे और उन्हें शाबाशी मिली थी 1974 में। हम आपको आज भी शाबाशी देते हैं उस बात के लिए। बचपन में नवरात्रि में 9 दिन के सजाने का काम उनकी टोली करती थी, बहुत बढ़िया बात। हमारी शरारतें ऐसी थी, हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब मम्मी कहीं जाती थी तो कभी जींस टी शर्ट भाई की पहनकर और अपनी सहेली को साड़ी और लहंगा पहनाकर डांस करते थे, फिल्मों को देखकर, फिर कैप लगाकर क्रिकेट खेलना घर के अंदर बिना नुकसान किया। बहुत अच्छे बच्चे थे। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी। अब चलते हैं हम उस ओर जो एक अलग दौर है, वो दौर में आपने जो विषय पढ़े हैं उन विषयों में से आपका पसंदीदा विषय कौन था, जल्दी से बताइएगा। आपके पसंदीदा विषय को बताते हुए ये भी बता दीजिए ये गीत में आवाज किसकी है।

हम सुन रहे थे जख्म फिल्म का यह गीत आनंद बख्शी के बोल एवं करीम के संगीत के साथ। हमने आपसे पूछा था कि आवाज किसकी है, तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, अलका याग्निक की आवाज है। और हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि आपको कौन सा विषय पसंद है, तो हमारे श्रोताओं ने अपने अपने विषयों के बारे में बताया है कि वो संभाजी, एक और श्रोता लिखती है, स्कॉलरशिप की परीक्षा संभाजी नगर डिवीजन से दूसरे नंबर पर पास हुई, ये बहुत प्यारा किस्सा है, और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारे श्रोता को फिजिक्स मैथ्स रसायन पसंद थे और 9वीं 10वीं में उन्होंने यही विषय लिए थे। हमारे श्रोताओं का कहना है कि उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी और टीचर से वेरी गुड मिलता था। हमारे श्रोता लिखते हैं हिंदी रहा ये बिंदिया से प्रेम का सुमन याद नहीं, ये कुछ बात लिख रहे हैं और बहुत अच्छे से उस बात को बता रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि शब्द किताब के बहुवचन को एक वचन बना दिया, कुछ उन्होंने बताया है। और इसके साथ ही वह लिखते हैं कि बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि उन्हें हिंदी में बहुत अच्छी थी और आगे चलकर उन्होंने 25 देश विदेश में भ्रमण भी उन्होंने किया, ऐसा हमारे श्रोता कहते हैं। और हमारे श्रोता बताते हैं कि उन्हें डायग्राम बनाना बहुत पसंद है, इसलिए उनका सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट बायो, किसी का भूगोल बहुत पसंद है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और दूसरा पसंदीदा विषय उनको संस्कृत का विषय। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आप गाने कम सुनवा रहे हैं, तो क्या करें, आप इतने प्यारे संदेश भेज रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हम आपको देते हैं और साथ ही अगला गीत भी बड़े प्यार से आपको सौंप देते हैं। अगला प्रश्न ये है कि मुझे इसका उत्तर सच में नहीं पता, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूं कि 16 बरस को ही बाली उम्र क्यों कहते हैं, बताइएगा इसका उत्तर आपके हिसाब से क्या है इसका उत्तर, और ये बताने के साथ ये बता दीजिएगा कि इसके संगीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे एक दूजे के लिए फिल्म से यह गीत, लता मंगेशकर अनूप जलोटा ने इसे गाया, आनंद बख्शी के बोल हैं। और आपसे पूछा था कि इसमें संगीतकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया कि जो इसके संगीतकार हैं वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। बिल्कुल सही उत्तर। हमने आपसे पूछा था कि 16 बरस के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आपने मुझे तो ज्ञान ही मिल गया कि 16 बरस में दोनों ओर से आपका यौवन आ रहा होता है और बचपना छूट रहा होता है, किशोरावस्था छूट रही होती है और हार्मोनल बदलाव होते हैं, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। और सौंदर्य आकर्षण जो है, निखार भी बड़ा खूबसूरत होता है ऐसा लगता है, इसलिए कवि की कल्पना 16 बरस तक पहुंचते पहुंचते जो बदलाव है ना, तो यौवन का दस्तक है, इसलिए कवि ने इस बात की कल्पना की है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई और बहुत सुंदर संदेश भेजे हैं। उसके बाद प्रेम होता है, जीवन के संघर्ष होते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ साथी बनते हैं और साथी बनने के बाद परिवार बनाते हैं और उस परिवार के बाद जब सुख चैन से एक दूसरे के साथ बैठते हैं, तो शायद ये गीत हम सभी के लिए, हम सभी के पूरे परिवार के लिए बनता है। तो आइए सुनते हैं ये गीत, आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आप सबके साथ ये सफर बहुत अच्छा बीता, आपके जीवन में भी ऐसे ही प्यार बना रहे, आपका जीवन मंगलमय हो, ये प्रार्थना करते हैं आज के इस कार्यक्रम के साथ सुरीला सफर में। सुरीला सफर के साथ आप सबके लिए बहुत धन्यवाद, और चलिए विदा लेते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर से। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, आप सबका जीवन मंगलमय हो।

समाचार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनक लता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी नवीकरणीय ऊर्जा रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी नवीकरणीय ऊर्जा रक्षा सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्यूल फ्रॉसडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारी संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे

0: के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
1: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
0: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
2: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद हैं। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुँचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
4: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थलीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशन लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
5: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रसिशन इंफॉर्मेशन कंट्रोल।
6: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
5: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
0: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने दो बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी।

0: मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
1: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस

0: भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
1: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहाँ हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगरी में।

हम सुन रहे थे ये गीत ताजमहल फिल्म से, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में, साहिल लुधियानवी के बोल और रोशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत सेहरा फिल्म से, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल और रामलाल के संगीत के साथ।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम।

0: आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी तरसती
1: है। जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनूं,
1: बुझता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।
3: ओ जब याद आए

0: सुन रहे थे पारस मणि फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में असद भोपाली के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत से सजा हुआ।
1: आलस भरे सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो दिन बहार आई, बाहों में खिली गली,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताती है,
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। मिलती है धाराएं 3, विचार स्वर और संगीत,
5: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा,
1: बातें जो देती है हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून,
6: ये हार है जीत है,
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ,
7: तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा,
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी,
8: तुम आ गए हो पूरा गया,
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

मुझे जीने दो, इस फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और जयदेव के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत, मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म से मन्ना डे की आवाज होगी, शैलेंद्र की है बोल और सचिन देववर्मन का है संगीत। पूछो ना कैसे।

हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए चलते हैं सदाबहार नगमे के अंतिम गीत की ओर जो कि है हमरा ही फिल्म से। मुबारक बेगम मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जय किशन का है संगीत। आज्ञा दीजिए इस गीत के साथ, आप सबका कल्याण हो, नमस्कार।

0: सहेली
1: सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और सोनाली आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
2: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली बिल्कुल अच्छे हैं और देखो जो बाहर ये जो गर्मी से हमारी जो दो दो हाथ हम लोगों के हो रहे हैं उससे संभल के

0: बच के चल रहे हैं और आशा करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाले बल्कि सभी लोग अपना बहुत अच्छे से खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे।
1: हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि भाई मुंबई में बहुत गर्मी है तो सखियों अपना ध्यान रखिए।
0: अरे धन्यवाद, और हम सच में बहुत अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं।
1: और जब कोई ऐसे हमारे लिए कोई पूछता है तो कितना अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: और इसलिए तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता एक बार अगर सुन भी लेना कि आप सब कैसे हैं, तो कहीं तो ऐसा लगता है कि हम कोई तो है हमारा जो हमसे पूछ रहा है, हमें जान रहा है,
1: ख्याल रखने वाला है ना। विषय बता दे।
0: चलिए,
1: बातें हल्की फुल्की। इसमें एक विषय है कि परीक्षा परिणाम, यानी कभी पड़ी मार तो कभी मिले उपहार। तो दीपा, आपसे ये सवाल है कि आपको कभी उपहार मिले हैं या मार पड़ी है या नहीं हुआ है?
0: मार नहीं पड़ी। मार हाँ, एक बार क्लास में पड़ी थी, वो बाद में हम बताएंगे जब हम इस सेगमेंट को लेंगे। हाँ। वो क्यों पड़ी थी वो भी बताएंगे। लेकिन कभी ऐसे परीक्षा के परिणाम के लिए मार नहीं पड़ी। हाँ। लेकिन हमारे पिताजी की आंखें बस ऐसी हुआ करती थी, वो हमें नहीं डांटते थे, वो मम्मी के नाम को लेके मम्मी को बोलते थे क्या हो रहा है ये। बस इतना ही काफी था हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए।
1: यानी वो जमाना ऐसा था कि बच्चे सिर्फ मम्मी पापा के आंखों से डर जाते थे।
0: आंखों से डर जाते थे।
1: और वैसे मुहावरों की दुनिया में आंखों का तारा होना, तो जैसे बहुत सारे बच्चे अपनी मम्मी के आंखों के तारे होते हैं, और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि विविध भारती जो है वो हमारी आंखों का तारा है।
0: क्या बात है। और ऐसे ही तो हमारे सारे श्रोता इस कार्यक्रम के तारे हैं
1: सच में चगमगाते हुए। जी, और उद्यमी महिला इस सेगमेंट के अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे कल्पना सरोज के बारे में।
0: जी, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने परीक्षा में कुछ गलतियां की हो या कोई और भी अनुभव, सिर्फ परीक्षा की बात नहीं है, जीवन में कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी आदत नहीं है या हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बाद में हमें दिल में बहुत पछतावा देता है
1: और
0: हम
1: कचोटते रहता है,
0: कचोटते रहता है, और ऐसा लगता है हाय मैंने ऐसा क्यों किया, मैं तो ऐसी हूं नहीं या मैं तो ऐसा था नहीं, ऐसा मैंने क्यों कर लिया। ये अपराध बोध जो है ना, ये दिल को बहुत घर कर जाता है और कहीं ना कहीं वो हमें सताता रहता है। तो इससे बचना बहुत जरूरी है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके, कहीं वो अटक के न रह जाए। इसके बारे में हम बात करेंगे और हमारे श्रोताओं ने लिख के भी भेजा है, लेकिन आप हमें अब कोई घटना भी बताइए अगर आप चाहते हैं तो,
1: अगर कि बताना चाहते हैं
0: कि कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी ऐसा अनुभव जहां आपको लगता है कि मैंने ऐसा कर दिया और उसका मुझे बड़ा पछतावा है, तो कहीं चाहते हैं कि दिल खोल कर कहिए, और बात अगर आपको सही लगती है तो बताइए। तब तक ये गीत सुनिए।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: तो भाई हम तो अपने श्रोताओं से कहेंगे सृजन भारती के इस जो अंक में जो प्रोग्राम होने वाला है अगर आपकी कोई रिश्तेदार या आप कोई खुद भी हैं तो जरूर पहुंचे इस कार्यक्रम में। सभी का आमंत्रण है।
2: बिल्कुल स्वागत है सभी का। और आज हम जैसे उद्यमी महिला के बारे में जानकारी देते तो आज हमने चुना है कल्पना सरोज
1: जी।
2: तो कल्पना सरोज भारत की एक प्रसिद्ध उद्योगपति समाज सेवी और प्रेरणादायी महिला उद्यमी है। उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। उन्हें संघर्ष साहस और आत्मविश्वास की मिसाल भी माना जाता है।
1: कमानी ट्यूब नामक एक कंपनी है जो बंद होने की कगार पर थी सोनाली। उस समय उस कंपनी को फिर से सफल बनाने का पूरा श्रेय जो है वो कल्पना सरोज को जाता है। कल्पना सरोज का जन्म साल 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले में गांव है रोबरखेड़ा वहां हुआ था। उनके पिता पुलिस विभाग में काम करते थे और जैसे कि होता चला आ रहा है अक्सर कि बहुत कम उम्र में उनका विवाह हो गया था और वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां उन्हें आ रही थी और उन सब कठिनाइयों का वो डट कर मुकाबला कर रही थी।
2: और फिर जैसे होता है ना कि दीपा की बहुत सारी बाधाएं आई उसके बाद उन्होंने मन में ठान लिया कि कुछ तो जिंदगी में कर गुजरना है और वे मुंबई चली आई। और मुंबई आने के बाद कल्पना सरोज ने एक सिलाई कारखाने में काम करना शुरू कर दिया।

0: सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने मेहनत और लगन से अपना छोटा व्यवसाय आरंभ किया। पहले सिलाई का काम किया, फिर फर्नीचर और रियल एस्टेट के क्षेत्र में कदम रखा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक पहचान सफल उद्यमी महिला के रूप में बना ली।
1: और कल्पना सरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि है कमानी ट्यूब्स, ये कंपनी को पुनर्जीवित करना। कंपनी आर्थिक संकट से गुजर रही थी और लगभग बंद होने की स्थिति में ही थी। कल्पना सरोज ने कंपनी की जिम्मेदारी संभाली, कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच एक संतुलन बनाया और अपने प्रबंधन कौशल से कंपनी को फिर से सफलता के मार्ग पर लेकर आई। वो
0: यानी कितनी बड़ी बात है ना दीना, कि यानी किसी बंद पड़ने जा रही थी वो कंपनी और उसमें खुद जाकर और उसमें आगे बढ़ना, यानी कितना ज्यादा संघर्ष किया होगा उन्होंने।
1: सही बात है, बिल्कुल। और फिर साल 2013 में भारत सरकार ने उन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। वे कई मंचों पर प्रेरणादायक वक्ता के रूप में भी जानी जाती है
0: और इसके अलावा समाज के लिए भी उन्होंने योगदान दिया है। कल्पना सरोज केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं रही बल्कि समाज सेवा और युवाओं को प्रेरित करने का कार्य भी करती है, विशेष रूप से महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है। और दीपा, कल्पना सरोज का जीवन ही सिखाता है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, सफलता की राह में अगर बाधा है तो उससे हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास हो, मेहनत और आगे बढ़ने की इच्छा हो तो उनका जीवन संघर्ष सफलता मिली जाती है। और एक प्रेरणादायक कहानी है उनकी जो हर व्यक्ति को अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देती है। तो जब हम ये सेगमेंट लेते हैं नदीमा, तब हमें इतनी ज्यादा प्रेरणा मिलती है कि एक महिला अगर कुछ मन में ठान ले तो वे कर गुजरती ही है।
1: बिल्कुल, और उसके लिए कोई आपको आपकी शैक्षणिक जो योग्यता है उसकी भी जरूरत एक बार के लिए तो थोड़ी पीछे हो जाती है। फिर वो मन में जो आपका जुनून, जोश जो आपका रहता है ना, कहीं से एक आंतरिक ऊर्जा जब निकल के आती है तो वो शक्ति जो है, मात्र शक्ति, पता नहीं क्या है उसमें, क्या जज्बा है कि बस वो जब करने के लिए ठान लेती है तो कर ही गुजरती है।
0: और उसमें आत्मविश्वास अगर मिल जाए साथ में, फिर वो आगे बढ़ने से उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल सही कहा। और इस बात पर अभी तो हम लेते हैं एक अंतराल और भी बातें करेंगे
0: जी।

0: देखो सोनाली, हम सुन रहे हैं ये गाना धीरे धीरे मचल, और मन एकदम ऐसा ना उसमें खो सा गया था, तुम्हें नहीं लगता?
1: बिल्कुल खो सी गई थी, इतने सुंदर इसका संगीत है और लता जी की आवाज, हा हा हा क्या कहने, बहुत सुंदर गीत।
0: बिल्कुल, और देखो ना
1: ये गाने भी हमारे आंख के तारे हो जाते हैं।
0: बस मैं मन में सोच रही थी शब्द तुमने दे दिए, इसे कहते हैं प्यार, है ना दोस्तों, सही कहा या नहीं?
1: बिल्कुल सही कहा। कभी कभी ऐसा था ना, हमारे दोनों की मन की बात होती तो वो एकदम से मुंह से निकल ही जाती है,
0: और बिल्कुल वैसा ही संदेश फिर हमारी सखियां लिख भेजती है, तो ऐसा लगता है देखो मन जब मिल जाते हैं तो शब्द भी एक हो जाते हैं, है ना। तो भाई बात हो रही थी हम आंखों का तारा ये मुहावरे की, और बहुत सारे संदेश आए हमारे श्रोताओं और सखियों की तरफ से, तो पहला संदेश पढ़ते हैं। ये लिखा है कि बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा, बहुत प्यारा, अत्यधिक प्रिय या अति प्रिय होना इसका मतलब है। तो ज्यादातर अपनी संतान के प्रति ये कहा जाता है, चंदा है तू मेरा, सूरज है तू, ये गाना उनको लग रहा है कि ये गीत शायद बजेगा। देखते हैं भाई बजेगा या ना बजेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि गीत तो आएगा ही ना,
1: कोई ना कोई गीत तो आएगा ही।
0: हाँ,
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, आंखों का तारा होना हिंदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा, इसका अर्थ बहुत प्रिय होना या अत्यंत प्यारा होना, बहुत लाडला होना, और छोटा बच्चा अपने परिवार की आंखों का तारा होता है, और VBS के सारे प्रोग्राम हमारे आंखों के तारे हैं।
0: क्या बात है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल, और बस कुछ इसी तरह की बात हमारे एक और श्रोता ने लिख भेजी कि जहां तक आंखों का तारा होने की बात है, विविध भारती भी हमारी आंखों का तारा है, यानी हम सभी का बड़ा प्रिय प्यारा मनोरंजन चैनल है, और आज का मंच संभाल रही हमारी दोनों बेटियों भी हमारी आंखों के तारे हैं।
1: क्या बात है,
0: बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं को, सखियों को, जो इतना प्रेम आपकी तरफ से मिलता है। और सच में हम मुलाकात हमारी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कहीं कोई एक जुड़ाव तो है।
1: बिल्कुल, पिछले जन्म का होगा या इसी जन्म का जुड़ाव है।
0: हाँ,
1: है
0: ना?
1: एक नाजुक सी डोर है श्रोताओं के बीच और हमारे बीच, ये हमें बहुत सारा संबल देती है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, सखी सहेली प्रोग्राम हमारी आंख का तारा है, यानी बहुत बहुत प्यारा दुलारा है, बहुत ही मनपसंद चीजों कहते हैं, आग का तारा कहते हैं, और हर माँ की आग का तारा होती है उनकी संतान, देशभक्ति क्रांतिकारियों की आग का तारा उनका प्यारा हिंदुस्तान। क्या बात है? हमारा देश हम सभी की आंखों का तारा है।
0: और देखो होना भी चाहिए
1: जी।
0: और एक

0: कॉल संदेश आया है, आंखों का तारा होना इसका अर्थ है हम सभी जानते हैं कि बहुत प्यारा होना। ये मुहावरा अक्सर घर के किसी लाडले बच्चे या व्यक्ति के लिए उपयोग में लाते हैं। हम सबके जीवन में हमारी आंखों का तारा कोई ना कोई तो जरूर होता है, उसको हम ये बताएं कि तू हमारे आंखों का तारा है या हम तुझे कितना प्यार करते हैं। पहले आप मुहावरे के माध्यम से बताएं कि आप उसको प्यार जताकर बताते हैं, या ये जरूर कह सकते हैं कि ये मुहावरा हमारी निजी जिंदगी हमारे प्यार को दर्शाने के लिए बहुत काम आता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम कभी हम जैसे घर में छोटा बच्चा होता है ना, नाराज हो जाता है तो हम उसको लाड़ दुलार में नहीं कहते, ये तू तो मेरी आंखों का तारा है, क्यों नाराज हो रहा है ना।
1: ये माँ जो है ना, हर माँ के मुंह की बात है, उनके जुबान पे ये शब्द आता ही। एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा कि आंखों का तारा होना मुहावरे का तो बहुत प्यारा या अत्यंत प्रिय होना है। ये मुहावरा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी का सबसे पसंदीदा और लाडला होता है। इसका अर्थ बहुत अधिक स्नेह या प्यार का पात्र होना है। वाक्य प्रयोग, हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। छोटा बेटा होने के कारण सोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है, उन्होंने उदाहरण लिख के भेजा है। वैसे हर बच्चे जो होते हैं ना, अपनी माँ के आंख के तारे होते हैं। फिर वो छोटा बेटा हो, मंझला हो, बड़ा हो, बेटा हो या बेटी हो, सारे लोग अपने माँ के आंख के तारे ही होते हैं।
0: बात तो बिल्कुल सही की कही। और अब क्या लगता है आपको, हम देखते हैं कि हमारे पसंद का जो गीत हमने निकाला, हमारे श्रोताओं को वो भी पसंद आएगा, या उनके जो लिस्ट उन्होंने बना रखी होगी छोटी सी कि शायद इस मुहावरे के बाद ये गीत बजेगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी पसंद और उनकी पसंद मिलती रहती है ना।

0: सुना ली। मैं देख रही हूँ कि इस गीत को सुनते सुनते कुछ संदेश पढ़ के आप जैसे कुछ भावनात्मक हो गए हो।
1: जी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि भाई मेरी माँ ये गाना हमेशा गुनगुनाती थी और मैं 5 बहनों में इकलौता भाई हूँ, तो मैं अपनी मम्मी की आंख का तारा था।
0: बिल्कुल सही
1: कहा। तो जो बच्चे होते हैं ना, माँ की आंख के तारे होते हैं, फिर बेटी हो बेटा हो, पर जो हम बच्चे होते हैं ना, कभी कभी हम अपनी माँ को दुखी कर देते हैं कि क्यों इस तरह से हमारे पीछे क्यों पड़ी हो, या क्यों हमें हमेशा लेक्चर देते रहती हो,
0: या कुछ कोई खास चीज खाने के लिए मम्मी बोलती है ना, थोड़ा सा खा लो थोड़ा सा खा लो। अब हमारा मन नहीं होता और हम बोलते हैं कितना आप बोल रही है, नहीं खाना भाई। हम झुंझला के उनको कभी कई बार
1: गुस्सा हो जाता है,
0: हाँ, और कुछ कड़वे बोल भी बोल देते हैं। माँ दुखी हो जाती है, लेकिन उनकी आंखों का तारा बनने में हमारी कोई कमी नहीं होती, उनके लिए हम वैसे ही बने होते हैं।
1: फिर क्या होता है कि एक वक्त के बाद हमें ऐसा लगता है अरे मैंने फालतू में माँ का दिल दुखा दिया, और हम अपराध बोध से ग्रस्त भी हो जाते हैं। अरे माँ हमारी इतनी प्यारी है, वो कहती है कि देर रात तक ना जागो, पर हम जागते हैं, मत खाओ वो मत खाओ, ऐसा करो, ऐसे कपड़े पहनो, इस तरह के कपड़े पहनो, मम्मी डांटती है। और फिर कभी
0: और जब हाँ कुछ सालों के बाद जब हम उस पे चिंतन करते हैं तो हमें लगता है कि माँ कितना सही कहती थी, हम कितना चिढ़ गए उस वक्त। और फिर वो एक मन में ना कहते हैं ना, हम जैसे कि पछतावा होने लगता है,
1: और अगर माँ ना हो इस दुनिया में तब तो और भी बुरा लगता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और बात तो तुमने बहुत गंभीर शुरू कर दी है सोनाली, लेकिन वक्त हो गया एक अंतराल का, तो अंतराल लेके इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं।

0: सोनाली, आप क्या बात कर रही थी अपराध बोध के लिए?
1: ये अपराध बोध शब्द ही ऐसा है ना कि जिसको पढ़ते ही अपराध बोध आ जाता है दीपा, जब हम मन की बात कहते हुए बोल देते हैं ना कि मुझे गिल्ट खा रहा है या पछताव हो रहा है, ऐसी मानसिक स्थिति जो इंसान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखली करती जाती है। अतीत में हुई किसी गलती, गलत फैसले या किसी को अनजाने में पहुंचाए गए कष्ट के कारण ऐसी भावना पैदा होती है। हालांकि कुछ हद तक अपराध बोध हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रेरित भी करता है, लेकिन जब ये लंबे समय तक मन में घर कर जाए ना तो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह कर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा, अतीत को देखो बदला नहीं जा सकता सोनाली, लेकिन जो वर्तमान है आज है उसको संभाल कर भविष्य को जरूर संवारा जा सकता है। इसलिए खुद को माफ करना, अपराध बोध के जाल से बाहर निकलना बेहद जरूरी है।
1: और यदि हम किसी बात को लेकर ग्लानि या अपराध बोध से जूझ रहे हैं तो कुछ तरीकों को अपनाकर खुद को मुक्त कर सकते हैं। जैसे गलती को स्वीकार करना, अपराध बोध से बचने का पहला कदम है कि ये मानना कि हमसे गलती हो गई है। गलती को छुपाने या उससे भागने के बजाय उसे स्वीकार करने से मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। और परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए, खुद से पूछे कि जब वो गलती हुई तब क्या हम सचमुच किसी बुरे इरादे से काम कर रहे थे। कई बार हालात, अधूरी जानकारी या सामाजिक पारिवारिक दबाव के कारण गलतियां हो जाती है। खुद को हर बात में विलन ना बनाए, यानी खुद को अरे इतना मैं इतनी तो बुरी नहीं हूँ, पर मुझसे गलती हो गई है तो हो गई है।
0: बिल्कुल सही कहा, और माफी मांग सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। वो कैसे? अगर गलती से किसी दूसरे को ठेस पहुंची है तो बिना किसी अहंकार के उनसे सीधे माफी मांग लेनी चाहिए। यदि संभव हो तो उस नुकसान की भरपाई

0: ट्राई करने की भी कोशिश कर सकती है और ये करके देखिए आपके मन को बहुत गहरी शांति देगा। फिर आत्म क्षमा अपनाना चाहिए। हम ना दूसरों को तो कर देते हैं क्षमा, लेकिन कभी कभी अपने ही किसी किए के लिए बार बार बोलते ना, मैं उसके लिए खुद को माफ नहीं कर सकती, मैं अपनी ये वाली बात को बिल्कुल भूल नहीं सकती। इस तरह की बातें अक्सर आती हैं, हम अपने लिए सोचने लग जाते हैं और अक्सर हम दूसरों को बहुत आसानी से माफ तो कर देते हैं लेकिन खुद के प्रति इस तरह से हम कठोर हो जाते हैं। लेकिन इंसान गलतियों का ही पुतला है, फिर देखो है कि नहीं सही बात। और खुद को एक इंसान के रूप में देखें जिसने गलती की, न कि खुद को ही एक बुरा ही इंसान मान लेते हैं बिल्कुल कि हाय मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। इस तरह की बातें भी कभी कभी निकल आती है
1: और ऐसे में क्या होता है, निराशा की खाई में ही गिरे रहते हैं हमेशा। अगर ऐसी बातें हमारे दिमाग में आती हैं तो हम उदास रहते हैं, निराशा में रहते हैं और उससे क्या होता है, जाने अनजाने में हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ जाता है, बीमारियों का घर बन जाता है। तो अतीत की उस घटना को एक कड़वी याद के रूप में न देखकर एक सबक के रूप में अगर हम देखें ना, तो बहुत हद तक हम आगे भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे और हमारी गलतियां हमें फिर गिल्ट में नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास में आगे बढ़ने में भी मददगार होगी। जो बीत गया उसे पर अब हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जो आएगा वो हमें पता है नहीं। इन्हीं बातों की उलझन में हम अपना वर्तमान क्यों बिगाड़े और फिर देखिए ना, अन्य चिंता में वर्तमान के खूबसूरत पल हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलते चले जाएंगे। तो क्यों ना अपनी ऊर्जा को आज सुधारने संवारने बिताए, एक सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना जरूरी है।
0: बिल्कुल, हम अपने अतीत में की गई गलतियों से कई बड़े हैं सुनाली और कई बेहतर भी हैं। खुद को कोसना बंद करना बहुत जरूरी है क्योंकि हर नया दिन खुद को सुधारने का एक नया मौका लेकर आता है।
1: और हमारे श्रोताओं ने भी इस विषय में बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं। एक साथी लिखते हैं, अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता है, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता है। जीवन का उद्देश्य निर्दोष बनना नहीं बल्कि सीखते हुए बेहतर बनना है। गलती को स्वीकार कीजिए, उससे कुछ सीखिए लेकिन उसे अपना स्थायी पहचान मत बनाइए। इंसान गलती से छोटा नहीं होता, वो तब छोटा होता है जब सीखना छोड़ देता है।
0: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह का एक और देशी कहता है कि अपराध करने के बाद दिल दिमाग पर एक बोझ महसूस होना स्वाभाविक है। आपसे ये अपराध जानबूझकर के नहीं हुआ है तो खुद को कोसने के बजाय शांत चित्त पूर्वक आत्मचिंतन करें, भविष्य में इससे इसके प्रति जागरूक रहें। अतीत के गलियारों में घूमने के बजाय परिवार के साथ हंसी खुशी भरा माहौल बनाए रखें, वर्तमान आपका ऐसा ही होना चाहिए।
1: एक साथ ही लिखते हैं, जाने अनजाने हमसे गलतियां होती रहती है, मन से उसे मान लेना ही समझदारी है। नहीं तो जब तक मान न लूं हमेशा अपराध बोध से मैं ग्रस्त रहती हूं क्योंकि कोई ना कोई आपकी गलती पकड़ ही लेते हैं। मुझे लगता है कि बेहतर है मान लिया जाए। साथी एक और साथी ने लिखा है कि अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता। इसी तरह की बातें और भी हमारे साथियों ने लिखी है।
0: भाई देखो, दिल की बात कहीं किसी को कह देनी चाहिए, कोई दोस्त को, कोई ऐसा आपका भाई होते हैं ना, हमारे कजिन्स भी होते हैं जिनके हम बहुत करीब होते हैं, तो अगर आप अपने दिल की किताब कहीं खोल देंगे तो मन शायद कुछ इस तरह से हल्का हो सकता है।

0: सोनाली, मुझे बताओ, एक संदेश बहुत गहराई से पढ़ रही हो तुम।
1: जी, हमारे एक सखी ने लिखा है कि कभी कभी अनावश्यक रूप से अपराध बोध पालकर अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती है। कुछ लोगों को तो अगर जागने में देर हो जाए तो भी अपने आप को कोसने लगते हैं, भाई आप जरा देर तक सो लेंगे तो दुनिया थोड़ी रुक जाएगी। किसी से खाने में नमक ज्यादा पड़ गया तो परेशान हो जाएंगे। आप ही तो रोज स्वादिष्ट बनाती है, एक दिन गड़बड़ हो गया तो क्या हो जाएगा। जिंदगी को हल्के फुल्के ढंग से जिए, बोझ लेकर नहीं जिए। वहीं एक साथी ने लिखा कि भाई मैंने भी एक कुछ ऐसा काम कर दिया था कि मेरी दुकान के पीछे में एक जगह थी, वहां पर बिल्ली ने छोटे छोटे बच्चे दिए थे, तो परेशानी हो रही थी तो मैंने बच्चों को उठा के कहीं भिजवा दिया। बाद में दूसरे दिन उन्हें मंगवा लिए बच्चे, तो बहुत अपराध बोध से ग्रस्त हो गए थे, अब उन्हें अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है
0: बिल्कुल। और आपने देखिए, माँ को उसके बच्चों से मिला दिया है तो इससे ज्यादा खुशी, जितने खुश आप है ना, ये सुनकर और ये पढ़ के आपका संदेश, हमें भी बहुत खुशी मिल रही है। और भाई इसका परिणाम तो देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन परीक्षा के परिणाम में कभी कभी घर में मार भी पिट जाती है, कभी कभी उपहार भी मिल जाता है।
1: पर ऐसा होता है ना दीपा, कि उस वक्त भी अपराध बोध से हम ग्रस्त हो जाते हैं कि कभी परीक्षा में हमें कम नंबर मिल गए, तो खासकर लड़कियां क्योंकि सब लोग बोलते ना कि अरे हमारी बेटी तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आती है, हमेशा फर्स्ट आती है, और कभी तीसरा चौथा नंबर आ गया तो उस बेटी को बड़ा बुरा लगता है कि अरे मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मैंने अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं की। और फिर उन्हें मन ही मन वो खाते भी रहता है वो।
0: बिल्कुल, लेकिन इस तरह से होना नहीं चाहिए। हम अब तो बच्चों को बहुत समझाते हैं, भाई पहला और दूसरा नहीं, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, नंबर के पीछे ना भागो, ये हमें भी सिखाया जाता था। लेकिन हाँ, कभी कभी कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक माता पिता को एक एक्सपेक्टेशन होती है हमसे कि भाई ये इतने नंबर तो लेकर ही आएगी या लेकर ही आएगा, तब और नहीं ला पाते तो कहीं हमें मन में वो कसोसता है। लेकिन भाई अगली बार आप मेहनत करके हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन तब छोटे होते हैं ना तो ये सारी बातें नहीं समझ आती। लेकिन आज देखते हैं कि संदेश क्या कहते हैं। पहला संदेश है परीक्षा परिणाम। उपहार कभी नहीं मिला, बचपन में पापा की मार जरूर पड़ी है, लेकिन हर बार मम्मी

0: बचा लेती थी। तो देखो मम्मी तो यहाँ भी काम आई
1: का तारा होते ना बच्चे।
0: हाँ। इसीलिए
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, कभी मार तो कभी मिले उपहार। हमारे जमाने में तो परीक्षा के परिणाम के बारे में तो हम फिक्र ही नहीं करते थे, ना माता पिता करते थे। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के आगे पढ़ना नहीं था, पढ़ना ये हमारे रिजल्ट के आने के बाद पता चल जाता था, क्योंकि उन दिनों हमारे परिवार में पढ़ाई से ज्यादा काम धंधे पर ध्यान दिया जाता था। अगर फेल हो गए तो गृह उद्योग यानी कारखाना हमारा स्वागत करते तैयार रहता था। मुझसे बड़े सभी भाइयों का ऐसे ही स्वागत हुआ था। पूरे परिवार में मैं अकेला ही है जो ग्रेजुएशन तक पहुंच सका हूं। क्या बात है।
0: और एक हमारे साथी ने भेजा है संदेश कि मेरे दादाजी हम बच्चों को जिसका भी रिजल्ट 1 से 5 के बीच में रैंक में आता था उनको मतलब उस जमाने में 5 रुपए देते थे। वो 5 रुपए हम तीनों भाई बहनों को मिलता ही मिलता था। क्या बात है भाई। और उस जमाने में यानी कि 40-50 साल पहले की बात होगी, 5 रुपया बहुत मायने रखता था जी, बिल्कुल रखता था। और कुछ मिलना ही हमारे लिए ये मतलब मिल जाए बहुत बड़ी बात होती थी। मैं तो SSC में सेंटर का फर्स्ट था और मैथ्स में 100 में से 90 मार्क्स, क्या बात है। और मुझे 100 रुपए का इनाम भी मिला था।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, परीक्षा परिणाम की बात चली तो बता दे कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में पढ़ता था। मैं अपने जमाने में उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी पढ़े थे और हमारी किताबें समझते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो भी पास होने भर के मार्क लाता रहा। BA तक ये सिलसिला चला जब तक मैं मनभर हो चुका था। हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाने लगा। शादी भी हो चुकी थी और पत्नी घर में आ चुकी थी। हाँ, इधर 2 नाती अपने परीक्षा परिणामों को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% और एक ने 87% मार्क लाए, फिर भी वे संतुष्ट नहीं है। ये आजकल का जमाना है, यहाँ पर तो 99 भी मिल जाए तो कहते कि भी 1% कहाँ चला गया।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि ये वो शब्द है जो दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। भले ही हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन बोर्ड एग्जाम या फाइनल रिजल्ट के दिन वो गुड़गुड़ वाली, वो घबराहट वाली जो एक फीलिंग रहती है ना, वो सबको याद रह ही जाती है। भाई बिल्कुल सच बात है। एक समय सच में भावनाओं का ये वो समय है जब भावनाओं का एक रोलर कोस्टर होता है। कभी खुशी, कभी गम, कभी मार डांट, तो कभी उपहार। तो इन खट्टी मीठी यादों को ताजा करते हुए वो बताते हैं कि रिजल्ट वाले दिन का माहौल तो सुबह में ही घर में सन्नाटा हो जाता। मम्मी भगवान की पूजा कर रही होती है, पापा अखबार पढ़ने का नाटक करते हैं जबकि नजरें घड़ी पर होती है। परिणाम अच्छा हो अगर हुआ तो घर में दिवाली जैसा माहौल, मिठाई बांटी जाती है, रिश्तेदार फोन करते हैं, पड़ोसी हेलो बोलने आते हैं। परिणाम खराब तो घर में बिल्कुल ऐसा सन्नाटा जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है। TV बंद, आवाज धीमी, सब ऐसे व्यवहार करते जैसे किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कभी पड़ी मार तो जब नंबर कम आते थे तो लगता था कि अब तो बस धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। और पापा का यह डायलॉग हमेशा होता, बगल वाले शर्मा जी के बेटे को देखो, ये जुमला तो लगता है हर बच्चे का दुश्मन रहा होगा। भाई बिल्कुल सही कहा आपने। और मम्मी का डायलॉग रहता, सारा दिन मोबाइल में खेल में लगे रहोगे तो अब भुगतो उसका नतीजा। और एक हफ्ते के लिए टीवी खेलना बंद, टीवी बंद और एक्स्ट्रा ट्यूशन की धमकियां मिलती, इस तरह की बातें होती। और अगर उपहार के रूप में उन्हें ये होता था कि जब मेहनत रंग लाती थी तो डर लगता था कि हमसे बड़ा सिकंदर कोई नहीं। और डिमांड पूरी हो जाती थी, पापा से नई साइकिल या नया फोन या मनपसंद गेमिंग कंसोल की डिमांड पूरी हो जाती थी। तो भाई उन्होंने तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बिल्कुल आंखों के सामने ऐसा लग रहा है हमारा बचपन भी कहीं ना कहीं सामने लेकर आए हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों की आज यादें ताजा की होगी।
1: और तो गाना सुन ले,
0: चलिए।

0: भाई देखो कितने लोगों को पढ़ने में दिल भले ही नहीं लगता हो, लेकिन यहाँ पे जो संदेश आ रहे हैं उसको देख के तो ऐसा लगता है कि पढ़ने में बहुत मन लगता था।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है दीपा, हमारे जमाने सेवंथ बोर्ड होता था, एक स्कूल होने के चलते हम आसपास के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक आते थे, जिससे हम सभी उनके साथ बैठकर पढ़ते थे। पड़ोस में एक बच्चे को का नंबर कम आया, ट्यूशन पढ़ने वाले टीचर आए तो गार्जियन ने शिकायत किया। उस समय तो उनने सुन लिया, बड़े अकड़ के साथ हमें सुनने लगे कि मुझे कम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, नया नया कबीर का दोहा पढ़ना शुरू कर दिया। जो टीचर ट्यूशन पढ़ाने आते थे उन्होंने कान पकड़कर बोला, सिर्फ पढ़ने की भी खाने में भी, खाने में हो तो कम हो जाएगा तो बहुत हल्ला करते हो।
0: और एक और संदेश कहता है कि परीक्षा परिणाम का दिन बच्चों से ज्यादा शायद माता पिता के लिए डर और उत्सुकता लेकर आता है। इस बार मेरी बेटी ने दसवीं की परीक्षा दी थी, सच बताऊं तो उससे ज्यादा घबराहट मुझे हो रही थी उसके कितने मार्क्स आएंगे। जब उसका परिणाम आया तो उसने 90% अंक प्राप्त किए तो मन गर्व और खुशी से भर गया। अब उसकी एक प्यारी सी इच्छा है, उसे गिफ्ट में मोबाइल चाहिए। अभी हमने उसे दिलाया नहीं, लेकिन आजकल वो बड़े प्यार से दूसरे बच्चों के स्टेटस दिखा रही है हमें और कहती है, मम्मी देखो ये उसके पेरेंट्स ने उसे ये गिफ्ट दिया है। तो सच कहूं तो रिजल्ट के साथ जुड़ी ये सारी छोटी छोटी बातें जीवन की सबसे सुंदर यादें बनकर रह जाती है। तो भाई अगर आपने वादा किया है तो आपको अपनी बिटिया को गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा, और हमें भी आपको गिफ्ट देना होगा।

0: तुम कौन सा संदेश पढ़ने का कह रही थी?
1: हमारे एक साथी ने लिखा है कि परीक्षा परिणाम वैसे तो किसी के प्रतिभा को आकलन करने का मापदंड तो है नहीं, और जो परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन तो होता ही है। स्कूल जाएंगे, क्लास में पढ़ेंगे तो परीक्षा भी होगी, परिणाम आने पर घर पर उसके अनुकूल ट्रीटमेंट भी मिलेगा। पर मेरा अनुभव तो अच्छे वाले ट्रीटमेंट का ही है, तब उपहार वगैरह मिलने का जमाना तो था नहीं, पर क्लास में फर्स्ट सेकेंड आने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ से पुरस्कार जरूर दिया जाता था। मुझे तो फर्स्ट प्राइज ही मिल जाता था, जो भी मिलता था अनमोल होता था। क्या बात है, बहुत अच्छी बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि परीक्षा के परिणाम, उपहार या डांट मुझे तो याद नहीं, हमारे जमाने में ऐसा कुछ होता था। नंबर कम आया तो गार्जियन समझाते थे, लेकिन अच्छे नंबर आने पर घर में कभी मिठाई मिल जाती थी, कभी 58-54 मिल जाते थे। आजकल के गार्जियन बच्चों के लिए परीक्षा फल के परिणाम के लिए कुछ ज्यादा संशय में रहते हैं। आजकल कंपटीशन कुछ ज्यादा टफ है, नए नए रोजी रोटी और पढ़ने के आयाम भी खुले हैं। अगर कुछ कम है तो कुछ दूसरे रास्ता भी ढूंढ लेंगे। उन्हें डराया जाता है कि अगर नंबर कम आएंगे तो अगली बार फिर उसी क्लास में दो बार पढ़ना पड़ेगा, जो कि बड़ा ही अपमानजनक शब्द होता था। हम तो इतना कोशिश कर देते कि अगले साल नए क्लास में ही जाए।
0: सही बात है। और एक और संदेश है, कहता है परिणाम परीक्षा के बाद चली तो बता दे कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में भी पढ़ता था। वे अपने जमाने में उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी पढ़ाते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो पास भर होने का मार्क लाता रहा। बीए तक ये सिलसिला चला और बाद में तो ये है कि हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाना, शादी भी हो चुकी थी, पत्नी घर आ चुकी थी। हाँ, इधर हमारे दो नाती और अपने परीक्षा परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% लाए हैं और एक ने 87% मार्क्स लाए, फिर भी वे लोग देखे संतुष्ट नहीं है। और अब हम किस बात से संतुष्ट होंगे?
1: एक गाना सुन के
0: चलो।

0: यार शब खैर, ओ मेरे यार शब खैर, मेरे यार शब खैर।
1: आज के हमारे श्रोताओं के जो जितने भी संदेश है खूब हंसाया हमें,
2: इतने हम खिलखिला के हंसे तो कुछ बार तो मेरी आंखें छलक गई हंसते।
1: हाँ बिल्कुल, मैं देख रही थी श्रोताओं, लेकिन वक्त देखिए शब्बा खैर कहने का आ गया है, तो आप सभी दीजिए इजाजत। आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
2: सोनाली पाठक का
1: नमस्कार।
2: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: दोस्तों, सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: दोस्तों, अगर हम वक्त का दामन थामकर अतीत में लौटें, तो फिल्म संगीत की वादियों में गूंजने वाली एक जानी पहचानी सी मीठी और मधुर आवाज बरबस ही हमारा ध्यान खींच लेती है। कभी सेल्युलॉइड के पर्दे के उस पार से, कभी स्टेज, कभी रेडियो और कभी टीवी के जरिए हवाओं पर सवार होकर ये आवाज आपको आवाज देने पहुंचती रही है। जी हाँ दोस्तों, हम जिक्र कर रहे हैं गायिका कमल बारोट का, जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम की मेहमान है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विविध भारती के स्टूडियो में। कमल बारोट जी, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: सुनने वालों को कमल बारोट का प्यार भरा नमस्कार।
1: वाह, आपकी आवाज में वाकई इतना प्यार घुला है, इतनी मिठास घुली है।
2: जरा नवाजी है, आपका प्यार है।
1: लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता और मैं सच बोल रहा हूँ, ये दिल की आवाज है कि वो प्यार जो है पहुंच के हमारे सुनने वालों तक। अब कमल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी संगीत

0: यात्रा जो है वो कब कैसे और कहां से शुरू हुई?
1: देखिए, मेरा जन्म तो हुआ ईस्ट अफ्रीका में, टेंजानिया में, और बचपन से ही पिताजी को संगीत का, घर में संगीत का माहौल था, ऐसे समझ लीजिए। मेरी माताजी भी गाती थी, पिताजी दिलरुबा बजाते थे और घर में महफिल सजती थी। हालांकि क्लासिकल महफिल होती थी जहाँ से मैं भाग जाती थी, क्योंकि मुझे उस वक्त क्लासिकल म्यूजिक से इतना, बहुत छोटी थी मैं, एक लगाव नहीं था। तो वो कहते हैं ना, वो माहौल तो बचपन से ही मिला था। और जब मैं कॉलेज के लिए हिंदुस्तान आई तो सोफिया कॉलेज में सब लड़कियों को पकड़ के मैं कहती थी मेरा गाना सुनो, जबरदस्ती, क्योंकि सीखा नहीं था कुछ, सारे गमा का कुछ पता ही नहीं था, तो ऐसे गाती थी। और उसमें से मैं सैगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के लिए चली गई, लड़कियों ने मेरा फॉर्म भर के, और वो मैं कॉन्टेस्ट जीती, और वहां से एक किस्म से ये यात्रा शुरू हुई।
0: अच्छा, तो यानी ये हम माने कि जैसे किसी को मंत्र दीक्षा दी जाती ना कान में हौले से,
1: जी, जी।
0: वैसे ही संगीत की पहली जो दीक्षा थी मंत्रों की, वो तो आपको घर में मिली?
1: घर में ही मिली, बिल्कुल सही।
0: लेकिन बाद में उसका जो सफर है थोड़ा सा और आगे जाकर के शुरू हुआ।
1: जी,
0: अच्छा, लेकिन कहते हैं कि यदि संगीत के क्षेत्र में आपको गुरु मिल जाए तो आपकी ये जो यात्रा है या जो भी विद्या आप सीखना चाहते हैं उसमें और अच्छाइयां आ जाती हैं, तो संगीत में आपके भी कोई गुरु रहे?
1: जी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब थोड़ा सा रेडियो पे मेरा गाना बजा और कहते ना पता चला कि कॉन्टेस्ट जीती है, तो बहुत जगह से लोगों ने बुलाना शुरू किया, और कहते ना पब्लिक आई में किसम से आना। तो कल्याण जयानंद जी हमारे फैमिली फ्रेंड थे, और उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, कल्याण जयानंद जी नाइट, और इतना बड़ा ये प्रोग्राम हुआ था कि रंग भवन में ये प्रोग्राम हुआ था, तो मेट्रो तक, कहते ना गाड़ियों की, लोगों की उस जमाने में क्यू थी। उस प्रोग्राम में मुझे मुकेश जी के साथ गाने का मौका मिल गया।
0: अच्छा,
1: और लता जी भी वहां थी और उन्होंने ये कार्यक्रम सुना, और बाद में उन्होंने कहा कि सेवा सदन करके उनकी जो स्कूल थी उनके लिए उन्होंने मुझे ये प्रोग्राम में इन्वाइट किया। एंड आई वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ लता मंगेशकर। मैं दीदी को इतना चाहती थी कि जब भी मैं आती थी तो उनको मिलने जाती थी। और एक बार ऐसे ही संडे में उनके घर चली गई, तो वो तो जा रही थी कोल्हापुर, और कल्याण जी भी आ गए डेट लेने के लिए, और तो उन्होंने कहा कमल जी को तो सुना है मैंने, इससे गवा लो, ये ड्यूएट गाना है, आप यकीन माने। वहां से मैं कल्याण जी भाई के म्यूजिक हॉल पे गई, और वहां आनंद जी भाई ने मस्ती मजाक में मुझे एक गाना सिखा दिया। दूसरे दिन पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग भी हो गई, रिकॉर्ड भी हो गया, फिल्म थी ओ तेरा क्या कहना, और गाने के बोल थे दिल लेके जाते हो कहां।
0: वाह वाह, भाई ऐसा
1: कहां
0: है,
1: कहां से कहां ये बात, देखिए।
0: आपने जो गाना गाया है दिल लेके जाते हो कहां, लेकिन ये एक चीज है कि जब जब इस गाने को हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गाना वाकई दिल लेके कहीं जा रहा है, तो क्यों ना हम ये गाना।
1: ये तो आप सब लोगों का प्यार है, लेकिन मुझे भी उस वक्त पता नहीं था कि ये गाना इतना पॉपुलर होगा, और यहाँ से एक कसम से फिल्म यात्रा शुरू हुई।
0: ठीक है, हम आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो गाना है आपका जो बहुत ही पॉपुलर हुआ और आज भी सदाबहार है, इसके जरिए हम क्यों ना एक बार फिर से अपने सुनने वालों के दिलों को छुएं और उन पर दस्तक दें।

0: तो कमल बारोट जी, इस तरह से आपके पार्श्व गायन की शुरुआत हुई
1: जी।
0: लेकिन चूंकि वो पहला गाना था आपका और बड़े संयोग से और अचानक ही आपको वो गाना मिल गया था, तो पहला गाना और पहली सफलता हर आदमी की जिंदगी में बहुत अहम होती है। कैसा आप महसूस कर रहे थे और आपको आपके जो सहयोगी कलाकार थे, संगीतकार थे, उन सबका सहयोग कैसा मिला?
1: देखिए, उस जमाने की बात मैं आपको बताऊं कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ये जो सिंगर्स थे, ये म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स, ऐसा लगता था जैसे एक बड़ी हैप्पी फैमिली है। मैं आप बताऊं, मेरा दूसरा गाना लता जी के साथ ही हुआ और म्यूजिक डायरेक्टर वही थे, कल्याण जी आनंद जी। तो जब मैं रिकॉर्डिंग के दिन में गई वहां, तो जाहिर है कि मैं बहुत ही नर्वस थी। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी गायिका के साथ उसी
0: लेवल
1: पे बैठ के गाना, तो वो देख समझ गई। वैसे सहेली दीदी तो थी, सहेली भी थी, तो कहने लगी, देखो कमल, जब मैं जब भी आज इतने सालों के बाद माइक्रोफोन फेस करती हूँ, तो मुझे लगता है जैसे मैं, मेरा ये आज इम्तिहान का दिन है और एवरी टाइम मैं गाना गाती हूँ तो वो एक इम्तिहान ही लगता है। तो सबके लिए एक ही बात, उन्होंने मेरा माइंड इतना एट ईज कर दिया कि वो गाना भी ऐसे हो गया, अकेले मुझे छोड़ना जाना, बराबर की लाइनें थी और म्यूजिक भी, म्यूजिक के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा, पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा।

0: जहां तक हौसला अफजाई की बात है, जैसे अभी आपने बताया कि लता जी ने आपका हौसला बढ़ाया, आपको ढांढस बनाया, इसमें घबराने की कोई बात नहीं
1: जी, जी।
0: तो ऐसे और भी कलाकार होंगे, गायक गायिकाएं
1: जी। अब आप रफी साहब को ले लो, कितने बड़े महान कलाकार थे, और उनके साथ जब गाते थे तो वो भी वही अंदाज से पेश आते थे और माइंड इतना ईज कर लेते थे और माहौल ऐसा बना के रखते थे कि जैसे गाना रिकॉर्ड हो जाता। मैं अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने तकरीबन सभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ गाना गाया है और मेरे साथ बहुत अच्छी तरह ये पेश आए हैं।
0: कमल जी, आप जिस जमाने का जिक्र कर रही हैं
1: जी,
0: कुछ देर के लिए हम भी उसी जमाने की तरफ जाना चाहते हैं। आज सब कुछ बदल चुका है। आप जिस जमाने में पार्श्व गायन के क्षेत्र में सक्रिय थी, उस दौर को आप किस रूप में याद करती हैं?
1: एक ऐसा दौर था कि जो गाने बनाने वाले जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो भी जैसे कोई रिसर्च करते हैं ना, वो भी डेडिकेटेड म्यूजिक डायरेक्टर्स थे और जो गाने वाले थे वो भी। अभी मेरा एक गाना हुआ था, फिल्म बरसात की रात का गाना था, म्यूजिक डायरेक्टर रोशन थे। आप यकीन मानिए, इतने बड़े वो म्यूजिक डायरेक्टर मुझे रिहर्सल कराने आते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, वो एक दिन नहीं आए, वो मेरे ख्याल में 10-12 दिन आए, क्योंकि कह रहे थे ये राग पर आधारित है गाना और कमल को कुछ छोटी सी ताने भी कहलवानी है, क्योंकि मेरा कोई क्लासिकल म्यूजिक का कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो इतनी दिलचस्पी, आप बताइए आज कैसे कौन ले सकता है। समय की का कितना अभाव है कि आज तो गाने मैंने सुना ऐसे बनते हैं कि बहुत

0: फूड की तरह,
1: इंस्टेंट फूड की तरह बनते हैं। तो वो गानों में बात भी फिर ऐसी आती थी क्योंकि माहौल ही ऐसा था
0: जी, इतना पेशेंस थे लोग और उसमें और बारीक से बारीक काम जितना तराश सके।
1: इंग्लिश में कहते हैं ना, पेस भी थोड़ा स्लो था, जिंदगी का पेस मजा था एक ना, जिंदगी का कहते हैं ना, हर चीज में डिस्कशन वो लेवल पे, रिहर्सल हम लोग पहले रिहर्सल करते थे, फिर रिहर्सल म्यूजिक हॉल में रिहर्सल हुआ करती थी, फिर स्टूडियो में जाते थे, फिर वहाँ म्यूजिशियन के साथ पूरा गाना खड़ा रह के गाना।
0: रिहर्सल फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है।
1: जी जी।
0: तो उस जमाने में आप लोग कितने घंटे रिहर्सल किया करते थे, कितने दिन तक? हालांकि आपने थोड़ा सा इसका संकेत दिया है, एक गाने के बारे में बताया है
1: जी। कोई गाने ऐसे होते थे जैसे अभी मैंने बताया वैसे, तो उसमें मैंने सुना है लता दीदी भी रिहर्सल के लिए जाया करती थी, जैसे हमारे एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे सज्जाद करके, वो बहुत कड़क माने जाते थे और उनको बड़े बड़े सिंगरों को, मंझे हुए आर्टिस्ट को भी जब रिहर्सल की जरूरत पड़ती थी, तो मैं तो एकदम नई थी, तो मैं तो चाहती थी कि मुझे रिहर्सल कराए, और रिहर्सल होता था, बाकायदा होता था।
0: तो चलिए इसी बात पर एक, अब हम रिहर्सल रूम से बाहर आते हैं और एक आपकी पसंद का और गाना सुनते हैं। आप बताइए कौन सा गाना सुनवा रहे हैं
1: अभी आप? सुनिए फिल्म घराना का गाना सुनिए, दादियों मां।

0: दादी अम्मा दादी अम्मा मान जाओ। भाई कमल जी, आपने इस बहाने इस गीत के जरिए दादी अम्मा को मनाने का एक सूत्र जो है वो बहुत सारे लोगों के हाथ में पकड़ा दिया कि अगर दादी माँ रूठी है तो ये
1: कैसे मनाया जाए उनको, है कि नहीं?
0: इस गाने से जुड़ा कोई रोचक वाक्य हो तो बताइए।
1: क्या हुआ जब ये गाना रिकॉर्ड

0: हुआ तो आपको जैसे मैंने बताया, आशा मेरी बहुत अच्छी सहेली है, रिहर्सल के लिए साथ में गई थी, तो मैंने ऐसे मजेदार एक वाकया सुनाती हूँ। मैंने कहा देख मुझे मंडी जाना है, अपना अहमदाबाद में एक कॉलेज का फंक्शन है, तो कहती थे सब कौन चल रहा है, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो मैंने कहा मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे साथ शायद कोई फैमिली मेंबर चलेगा, मैं चलूं? मैं कहा तू कैसे चल सकती है, तू तो इतनी मशहूर सिंगर है, तुझे सब पहचानेंगे। कह लगे नहीं चलते, मजा आएगा, मैं कोकिला बहन बन के आऊंगी। यकीन मानो मेरे साथ आई, जब इतनी बड़ी कॉलेज में फंक्शन है, मैं गा रही हूँ, मेरी किताबें लेके बैठी है। अब बोली आज कैसे, ये माहौल कैसा था, है कि नहीं मजेदार, और किसी ने पहचाना भी नहीं, वो ऐसे चुपचाप बैठी रही, मुझे हंसी भी आए और बोलती रहती चुप बोलो मत। तो उतने में गुजरात के बड़े मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अविनाश व्यास आए और उन्होंने देखे, बोले आशा तुम यहाँ? फॉरन प्रिंसिपल कॉलेज स्टूडेंट सबको पता लग गया आशा भोसले बैठी है, बड़ा मजा आया। लेकिन ये आजकल मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है।
1: और आपकी ये दोस्ती
0: अभी भी कायम है?
1: अच्छा।
0: जी हाँ।
1: तो अब जब आप आती हैं तो मिलती हैं अपने पुराने दोस्तों से, जो मतलब जो भी आती
0: बिल्कुल बिल्कुल वही हमारे वही ग्रुप है बस जिसके साथ ये यात्रा शुरू की थी, बिल्कुल अभी तक वही फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छे लोग हैं। मुश्किल से जिंदगी में अच्छी कहते हैं ना मित्रता मिलती है।
1: कमल जी मैं समझता हूँ कि मातृभाषा तो आपकी गुजराती
0: है। जी
1: लेकिन अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो हिंदी गानों की बात हो रही है, तो हिंदी से हटकर भी आपने दूसरी भाषाओं की फिल्मों के लिए गीत गाए?
0: जी मैंने गुजराती फिल्म के लिए गाना गाया, फिर अपना भोजपुरी पंजाबी, और गुजराती फिल्म के लिए तो मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 साल के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर्स का अवार्ड मिला।
1: अच्छा
0: जी हाँ। फिल्म बनी थी लीलूरी धरती, फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म इन गुजराती, जिसका म्यूजिक पुरुषोत्तम उपाध्याय ने दिया था, और उसका एक गाना था मारू नाम पाड़ियो छे संतूर लीली। अब ये गाना जब बजता था तो कहते हैं लोग कॉइन फेंकते थे, इससे इतना मशहूर हुआ था ये गाना।
1: लेकिन एक चीज है
0: जी,
1: आपने तो हमारी प्यास जगा दी और अधूरी आपने सिर्फ एक लाइन गुनगुनाई है। अच्छा वैसे बहुत अच्छा लगा,
0: अच्छा लगा
1: और बहुत देखिए ऐसा है कि मीठी और मधुर आवाज वो कहीं भी गूंजे वो गानों में
0: बहुत शुक्रिया
1: हमेशा भूलेगी। कमल जी ऐसा कहते हैं कि गीतकार के शब्द, संगीतकार की अच्छी धुन, गायक गायिका की आवाज जो है एक गीत को अच्छा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, आप इस बारे में क्या कहेंगी?
0: नहीं बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि क्या होता है कि जब सिचुएशन के मुताबिक कवि लिखता है तो म्यूजिक डायरेक्टर उसको सोच समझ के कि भाई ये शब्द कैसे हैं, अगर उसमें पैथोस हैं तो ऐसे रागों का इस्तेमाल होता है जो उन चीजों को उभार के ला सके, और जब फिर वो गाना बन जाता है तो वो कलाकार के सामने रखा जाता है, फीमेल प्लेबैक सिंगर के सामने या मेल प्लेबैक सिंगर के सामने, और वो फिर समझ के इसको अपनी एक ऐसी अनोखी अदा से गाता है कि वो जिस अंदाज से गाना लिखा गया है उसका मकसद पूरा होता है, और ये आना चाहिए तभी आके गाने की सफलता हो सकती है।
1: तो जब आपने गायन के क्षेत्र में कदम रखा, रियाज कितने घंटे किया करते थे?
0: शुरू में क्या हुआ था कि मेरा कोई रियाज नहीं था, मेरी एक रो आवाज थी, और शायद वो क्वालिटी की क्लियर कट आवाज है, एकदम सीधी सादी आवाज है, उसमें कोई वो बात नहीं थी। तो मुझे कहा गया कि आप अभी उसमें कुछ गुरु से शिक्षा लो, तो मेरे पहले गुरु थे अब्दुल रहमान खान साहब, उनसे थोड़े दिन सीखने के बाद पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले आए, उन्होंने कण मुरक का एक अभ्यास कराया कि जो आवाज कैसे मुलायम होती है, उसमें लोच कैसे आती है, ये सारी बातें बताई। उसके बाद आए ताज अहमद खान साहब, जो कि गजलों के बड़े माहिर थे, और कल्याण जीवे का कहना ऐसा था वो मेरे रियाज में बहुत दिलचस्पी लेते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था फिल्म लाइन में, तो वो कहते थे कि हमें क्लासिकल सिंगर पूरा नहीं बनना है तो इस टाइप की सिंगिंग के लिए एक खास रियाज चाहिए, तो कभी कभी मेरे रियाज में आके वो बैठते थे। तो ताज अहमद खान साहब ने मुझे वो बात सिखाई, और इन ये सब, और उसके बाद एक गुरु आए थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की मेरे पे, खान साहब गुलाम मुस्तफा खान साहब, तो इन सबके आशीर्वाद से जो कुछ पाया हमने वो आपके सामने हाजिर है। मेरा एक गाना ऐसे आया था कि मैं शाम को गेस्ट्स को एंटरटेन कर रही थी और एम दत्ता साहब का मैसेंजर आ गया कि भाई आप रात को 7 बजे गाना होने वाला है फिल्म बादशाह का, गाना भी बहुत अच्छा था, आशा जी गाने वाली थी।
1: अच्छा।
0: वो भी जानती है, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो गाना तो उनको दूसरे दिन पिक्चराइज करना था।

0: तो क्या है कि ऐसा है कि जैसे एग्जाम के लिए आप हर वक्त तैयार रहो, हाँ, वो मूड भी बना लो, वो आवाज भी अच्छी रखो, वो म्यूजिक डायरेक्टर के गाइडलाइन में आप गाओ, और ये सब बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता था। वो गाना हुआ, आज हमको हंसाए ना कोई, आज रोने को जी चाहता है। और ये गाना मैं यहाँ इसका स्पेशल जिक्र करूंगी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी, तो आपका ये रेडियो स्टेशन जब कुछ मॉर्निंग पीरियड के बाद गाने बजाता है ना, तो इस गाने से उन्होंने शुरुआत की थी।
1: अब मैं एक सवाल, हालांकि पहले सोचा कि पूछूं ना पूछूं आपसे,
0: पूछिए।
1: लेकिन लग रहा कि पूछ ही लेना चाहिए। वो ये कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के बाद, एक गाने के लिए आपको, मतलब कलाकार को कितने पैसे मिल जाया करते थे?
0: मुझे 300 रुपये मिलते थे उस जमाने में, जब लता जी को 500 या 600 मिलते थे, तो हमको आधे मिलते थे और बड़ी खुशी से हम ले लेते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है, अभी ये आपको ताज्जुब होगा, कि गाना हो गया, एक मेरा और आशा का ड्यूट था, मैंने ड्यूट्स ज्यादा गाए हैं, तो मैं हम लोग बाहर आ गए, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए, तो बेचारे वो प्रोड्यूसर भागे भागे आए, दोनों के हाथ में एक एक लिफाफा दे दिया और कहा कि कुछ नहीं है आपका, बस कहते ना पेट्रोल मनी है ना, हम उससे हमें कोई खेद होता था ना खुशी इतनी कि भाई हमको क्यों कम पैसे दिए गए। आई थिंक पैसों का इतना उस जमाने में नहीं, अहमियत इतनी नहीं थी, बनिस्पत के गाना अच्छा मिले।
1: ये एक जो सेटिस्फेक्शन, जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की जिसकी हम
0: जी
1: बात करें, मैं
0: जी
1: समझता हूँ कि हर कलाकार में, आप ही क्या, सभी के मन में इस
0: सबके
1: किस्म
0: मन
1: की
0: सबके
1: चीज
0: दिल
1: हुआ
0: में ये बात
1: करती
0: होती है।
1: थी। तो आपने अंदाजन कितने गीत गाए होंगे? अच्छा,
0: मैंने तकरीबन 300 फिल्मों में गाने गए हैं जी।
1: और मेजर ब्रेक जिस फिल्म के हिसाब से आपको मिला, वो कौन सी थी?
0: सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मेरा पारस मणि का हंसता हुआ नूरानी चेहरा बड़ा, कहते हैं ना, टॉप पे रहा काफी दिनों तक, और यही नहीं, जहां भी मैं गई मुझे इस गाने से लोगों ने बड़ा पहचाना। जैसे लंदन गई मैं, हॉलैंड गई, स्टैफ्रिका गई मैं, जिम्बाब्वे गई, तो कहते हैं आपका ये गाना तो रेडियो स्टेशन से हमेशा बजता है
1: और चूंकि आपने कहा है कि आपने डुएट बहुत ज्यादा गाए हैं, ये
0: जी।
1: गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ है और रेडियो से भी बजता रहा है, तो आज
0: जी
1: एक बार फिर से क्यों ना रेडियो से
0: जरूर
1: बज
0: सुनाइए।

0: साथ आपने कितनी फिल्में अंदाजन की होंगी?
1: उनके साथ भी मैंने काफी गाने गाए हैं और पारसमणि का गाना है उसके बारे में ये कहूँ कि ये फिल्म भी म्यूजिक की वजह से इतनी सुपर हिट रही कि लक्ष्मी भाई ने अपने बंगलों का नाम भी पारसमणि रखा है।
0: तो देखिए उस जमाने का तो ये था कि टीवी उतना पॉपुलर हुआ नहीं था, लोग फिल्मों से जब फिल्में देखते थे तब गाने देख लिया करते थे और सुन लिया
1: बाद में रेडियो पे सुनते
0: थे, बाद में रेडियो पे सुनने लगते थे। तो वो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या कहेंगे फिल्म म्यूजिक को पॉपुलर करने में, लोकप्रिय बनाने में रेडियो का कितना हाथ रहा?
1: बहुत बड़ा हाथ, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा हाथ। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इतनी खुशकिस्मत थी कि रेडियो के जरिए मुझे लोगों ने मुझे एक इंस्टेंट पहचान मिल गई। कैसे? जब मैंने ये आपको शुरू में जिक्र किया कि मैं सैगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के द्वारा आई तो एक प्रोग्राम हुआ करता था फुलवारी करके, अपने पड़ोसी देश का रेडियो था वो, और उस प्रोग्राम में मुझे सुधा मल्होत्रा को और महेंद्र कपूर को बाल गोविंद श्रीवास्तव जी वो किया करते थे प्रोग्राम, और उसमें हमें बुला के इन्होंने काफी गवाया और हमारा नाम कहते हैं ना रेडियो के जरिए बहुत ही मशहूर हो गया। फिल्मों का तो प्रवेश बाद में हुआ बट पहले रेडियो ने हमें ये पॉपुलैरिटी दी। हाँ, तो रेडियो तो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है।
0: आप वाकई गायिका बनना चाहती थी या कुछ और?
1: एक्सीडेंटली हो गई। नहीं, गाने का शौक था लेकिन मैंने पहले जैसे बताया कि अगर मैं गायिका बनना चाहती तो मैं पूरी तैयारी करके आती, लेकिन मैंने ना तो मेरे पास कोई क्लासिकल तालीम थी, कुछ ऐसा नहीं था। और जब छोटे होते हैं तो इंसान के ड्रीम्स होते हैं, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर्स बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मेरी जिंदगी में शायद गायिका बनना था और हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत प्यार दिया, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं बन गई और बहुत ढेर सारा प्यार मिला।
0: पछतावा तो नहीं?
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: और अगर दोबारा आपको जन्म लेने का मौका मिल जाए क्या बनना चाहेंगे आप?
1: अब तो मैं पूरी तरह से कहूंगी कि मैं पार्श्व गायिका या गायिका बनूंगी।
0: अच्छा, आज जबकि सक्रिय पार्श्व गायन से, प्लेबैक सिंगिंग से आप करीब करीब संन्यास ले चुके हैं
1: जी,
0: तो मैं ये जानना चाहूंगा कि संगीत से अब किस रूप में आप जुड़ी हैं, क्या कर रही हैं इन दिनों?
1: जी, मैं बैठ तो नहीं सकती, जरूर मुझे स्टेज से बड़ा लगाव है। मेरी जिंदगी की शुरुआत स्टेज से हुई, फिर अपना रेडियो आया, फिर फिल्में आई। मेरी एक कंपनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और उसके तहत मैंने मराठी सीरियल्स बनाई हैं। पहले मैंने लाइफ मेंबर बनाई, चिरंजीव बनाई, और उसके बाद हद पार, और उसमें सब में मैंने थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट्स लिए हैं और सबको, तीसरी वाली को तो यहाँ की गवर्नमेंट ने बेस्ट श्रेष्ठ सीरियल का अवार्ड दिया है, और आजकल मैं बना रही हूँ नई जावाई शोध।
0: तो कैसा काम चल रहा है ये?
1: अच्छा चल रहा है, अभी मैंने पायलट सबमिट किया है और अच्छी कहानी है।
0: लेकिन ये संगीत का मामला एकदम अलग है और ये एकदम अलग, इस फील्ड में मजा रहा
1: है? हाँ, आपको बताऊँ, मेरा जो भाई है ना वो डायरेक्टर है, चंद्रा बारो, जिन्होंने डॉन बनाई थी, और वो आजकल जब भी मैं बाहर से आती हूँ तो कहता है कि दीदी आप अपने पुराने गानों का आजकल कुछ रीमिक्स ऐसा कुछ करते हैं, अभी तक मैंने उस पर बड़ा ध्यान नहीं दिया है। कि एक गाना मेरा HMV का बहुत ही मशहूर हुआ था, हम तुम्हें तो कभी ना भूलेंगे, और इसकी भी एक मजेदार कहानी है। जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो किशोर देसाई ने इसको स्वरबद्ध किया है, हसरत जयपुरी ने लिखा है, और इस गाने में आजकल जो मशहूर जो संतूर बजाते हैं ना, शिव कुमार शर्मा, वो नए नए आए थे कश्मीर से ये इंस्ट्रूमेंट लेके, तो इन्होंने संतूर बजाया है, राम नारायण जी ने सरंगी बजाई है, और मेरी रिकॉर्डिंग के टाइम पे श्री रामचंद्र जी भी आए थे, और ये गाना अभी लोगों ने बहुत पसंद किया। सुनिए।

0: शोन वारुण जी, पूरी दुनिया में फिल्में बनती हैं
1: जी।
0: आप तो पूरी दुनिया घूम चुकी
1: जी।
0: और फिल्मों में की संगीत एक बहुत ही अहम पक्ष होता है, लेकिन हमारी भारतीय फिल्में जो हैं वो जरा अलग हट करके हैं, उनकी क्या खासियत है?
1: देखिए, हमारा जो देश है ना, मैं ऐसे देखती हूँ कि बहुत रिच है कल्चर में, हेरिटेज में। फोकलोर हमारा ले लो, हमारी संस्कृति ले लो, हमारी भाषाएं ले लो अलग अलग प्रांत की। और अब आप अगर संगीत देखो डिफरेंट डिफरेंट जगह का, गुजरात का ले लो, साउथ का ले लो आप, नॉर्थ, इवन कश्मीरी म्यूजिक में एक बात है हर जगह की। तो मैं समझती हूँ हमारा संगीत बहुत रिच है, और इसी वजह से मैं जहाँ भी जाती हूँ हमारा संगीत सब जगह सुना जाता है। कुछ तो कोशिश है उसमें। मेरा एक ऐसा एक इंसिडेंट आया लाइफ में कि मैं 60s में, मैंने जैसे कहते हैं ना गोपी कृष्णा और सितारा दीदी को प्रेजेंट किया अफ्रीका में, 70s में मैं पाकिस्तान जाके मेहदी साहब को यहाँ ले आई। और उस जमाने में इतना हंगामा बॉम्बे में हुआ, तो जो भी अभी जानते हैं कि एक ऐसा दौर आया था कि सब गजल सुनते थे और मेहदी साहब के दीवाने थे। पहला शो हमने लता जी के हाथ से ओपन कराया था, दूसरा शो हमने राज कपूर साहब और अनुषा साहब के हाथ से कराया था। और मैं ये कोई कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान में ऐसा गजलों का एक दौर शुरू हुआ कि बहुत सारे नाम उभर आए और अभी तक वो दौर चला।
0: कम से कम एक अच्छी शुरुआत जो भी करता है और उसका कोई अनुसरण करता है तो ये तो
1: अच्छी बात है ना। और मुझे, मैं इतनी खुशकिस्मत रही कि इस दौरान जब मैं लाहौर गई तो वहां के ये मायने मेरे चार गाने किए, और मुझे मशहूर शायर का कलाम गाने का मौका मिला, जैसे फैज अहमद फैज, नदीम कासमी, अली रजा और अहमद फराज। यहाँ मैं चाहूंगी कि ये मेरे पति देव का भी बड़ा पसंदीदा गाना है, आप जरूर सुनवाइए। फैज अहमद फैज की ये रचना और बोल है, आज यूं मुंज दर मुंज गम थम गया।

0: करुण बारोड़ जी, आपने बहुत सारे गीतकारों की रचनाएं गाई हैं, लेकिन किस गीतकार से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुई?
1: इंदिवर जी से। इंदिवर जी बहुत ही अच्छा लिखते थे और फिल्मों के लिए तो लिखते ही थे, लेकिन जब हम ऐसे प्राइवेट महफिल में बैठते थे या कहीं कहीं डिनर में मिलते थे तो हम इंदिवर जी को कहते थे, आप फिल्मी कविताएं सब छोड़ो, ये गाने छोड़ो, आप अपनी जो खास चीजें आपने लिखी जो छुपा के रखी है वो कविराज निकालिए और हमें सुनाइए। और वो आप तजुब करेंगे, ऐसी ऐसी रचनाएं हमें सुनाते थे कि हमारी तो शाम बन जाती थी। बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत पढ़ते थे, उनके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें इतनी सारी किताबें रखी हैं, तो फिल्मी गीत तो बहुत सहजता से अच्छे बोल लाके वो जो कहना सिचुएशन कहना चाहती थी वो कह पाते थे, लेकिन उनके प्राइवेट कलेक्शन में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं।
0: मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या खाली वक्त में, भाई संगीत का तो आनंद आदमी को भी ले सकता है, खाली वक्त में जब आपको मौका मिलता है तब आप किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं?
1: मुझे थोड़ा क्लासिकल बेस वाला संगीत हमेशा पसंद है और इसीलिए मैं गजलों को ज्यादा सुनती हूँ। अच्छा, गीतनुमा गजलें लाइट सुनने के लिए ठीक रहती हैं, लेकिन जिसको गजल कहा जाए उसमें जब तक कुछ मुश्किल थोड़ी बातें ऐसी ना हो, बोलों की भी सुंदरता हो, रागों का भी उसमें जो ढलना प्रॉपर हो, तो वो मैं घंटों सुन सकती हूँ, वो मुझे बहुत आनंद देता है।
0: ये बात तो सही है कि अच्छा संगीत इंसान घंटों सुन सकता है और तृप्ति नहीं होती, और इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पसंद का एक और बढ़िया सा गीत आप हमारे सुनने वालों की नजर करें।
1: आनंद जी भाई ने मेरे लिए चार खास गाने कंपोज किए थे, इंदिवर जी ने लिखे थे, और उसमें से एक गाना सुनाना चाहूंगी, प्यार भरा दिल तोड़ गए।

0: कमल बारूड जी, आपने बहुत सारे संगीतकारों के निर्देशन में गीत गाए हैं, तो कोई रोचक संस्मरण आपको याद आता है?
1: कभी कभी हम 3-4 गाने भी दिन में रिकॉर्ड करते थे। मेरी भी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मैं भी इतनी, मतलब लोग कहते हैं हमने 7 गाने गाए, 10 गाने गाए, लेकिन मैंने एक बार 4 गाने गाए थे, तो 2 गाने एक तरफ था, फिर जब शाम को आके 2 गाने यहाँ किए, और एक गाना ऐसा था जिसमें हम लता जी, रफी साहब थे, मुकेश जी थे और मैं, फिल्म थी मैं शादी करने चला, अपने म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, तो गाने का माहौल इतना सुंदर हुआ था और इतने एक ही साथ सब सिंगर्स के साथ, मैं कभी भूल नहीं सकती वो। और मुकेश जी का तो ऐसा था, मुझे बहुत छेड़ते थे और मुझे कहते थे कि, अभी पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते थे कि हमारी इंडस्ट्री में कम खूबसूरत सिंगर्स हैं, उसमें से मेरा चेहरा लाल हो जाता था और हमेशा छेड़ते रहे। बहुत अच्छे इंसान थे, जितने अच्छे गायक थे उतने अच्छे वो इंसान थे।
0: शुरू में आपने जिक्र किया स्टेज का
1: जी,
0: कि आपने बहुत सारे आर्टिस्ट, हालांकि बहुत नामी गिरामी आर्टिस्ट हैं, लेकिन स्टेज पर उनको इंट्रोड्यूस करने की परंपरा भी आपने शुरू की
1: जी।
0: तो ये सिलसिला अंदाजन कितने सालों से चल रहा है और क्या अभी भी आप?
1: 35 साल से चल रहा है भैया। मैं मॉरिशस गई थी तब, मैं कहते ना कि बहुत ही छोटी थी, लेकिन उस जमाने में हमने 60 शोज किए, और आज लोग जो मॉरिशस जाते हैं विजिट करते हैं उनको पता है कि इतना छोटा आईलैंड है, 40 माइल्स लॉन्ग आईलैंड, और उस जमाने में छोटे छोटे छोटी छोटी जगहों में जाके हमने शो किया था। लेकिन एक था कि नहीं इंडियन क्लासिकल सब डांस और पाए का शो, ये नहीं कि ऐसे कुछ एंटरटेन करने के लिए शो बना दिया, बाकायदा 6 महीने शो की तैयारियां होती थी।
0: अच्छा।
1: आजकल का शो उस जमाने का शो में ये फर्क है। आज क्या होता है कि आर्टिस्ट खुद स्टेज पे आके डांस करते हैं, उस जमाने में हीरोइन नहीं आती थी, तो हमें वो आर्टिस्ट स्टेज के पसंद करके रिहर्सल करा के फिर उसी पॉपुलर गाने की रिहर्सल उन पे करा के वो गाने हम वहाँ पेश करते थे।
0: तो हम ये कह लें कि आप हमारे सांस्कृतिक दूत का काम बरसों से कर रही हैं। तो
1: बड़ी अच्छी बात कही आपने,
0: इंडियन म्यूजिक को, इंडियन आर्ट को,
1: फिल्म कर रही है।
0: तो अंदाजन कितने मुल्क आप घूम चुके होंगे, कौन कौन से मेजर जो कंट्रीज हैं?
1: जी मैं इंग्लैंड बहुत सारे शो हमने किए हैं, फिर हम हॉलैंड गए हैं, फिर हम जिम्बाब्वे गए हैं, ईस्ट अफ्रीका में हमने शो किए हैं, मॉरिशस में किए हैं, हिंदुस्तान में सब जगह किए हैं। तो ये तो चालू है, अभी भी बात चल रही है, शायद हम ईस्ट अफ्रीका जाएं कोई अच्छे कलाकार के साथ।
0: तो कैसा रिस्पांस रहता है लोगों का?
1: बहुत अच्छा रहता है, और वो जो स्टेज का जो एक ओवेशन है ना, मैंने आपको बताया कि मैं आशा जी को 78 में आरडी बर्मन और आशा जी को लेके गई थी, और उस जमाने में पहली बार हमने ये प्रयोग किया था मेरे पति देव ने कि हम लाइटिंग के साथ, उस वक्त नया नया था ये सब, आजकल तो कहां बात लेजर और सब पहुंच गई है। हम इतना अच्छा शो बनाया था कि उस वक्त वहां पे हिंदुस्तान के जो फिल्मी इंडस्ट्री के नामी लोग हैं वो शूटिंग के लिए वहां आए हुए थे, और सब शो में आए आशा जी का। और यश चोपड़ा ने मेरे पति देव को कहा था कि आपने तो पोएट्री खड़ी कर दी स्टेज पे, आई थिंक इट वॉज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक नशा है स्टेज का, एक नशा है अच्छी चीज पेश करने का, और आरडी भी कह रहे थे कि इट्स हैपनिंग ऑन द स्टेज, यू नो।
0: कमल जी, अभी आपने अपने पति का जिक्र किया, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जीवन साथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है जिंदगी में, और खासतौर से जब वो कलाकार हो तो वो ऐसे ही जीवन साथी चाहता है कि जो उसकी कला को समझे और उसको कदम कदम पर उस तरह का सपोर्ट करे कि वो जिस फील्ड में उसमें और आगे जा सके।
1: मैं बहुत लकी रही हूँ, उन्होंने हमेशा मेरी जो विश है उनको सराहा है, और इसीलिए मैं ज्यादातर 6 महीने यहाँ 6 महीने वहां रहती हूँ। इसका यही कारण है कि वो कहते हैं कि तुम एक कलाकार हो और तुम ज्यादा दिन बाहर नहीं रह सकते हो। उन्होंने 15 साल तो मेरे साथ रहे कि हमने सारी कहते ना हमारी एक्टिविटीज रखी, और अभी भी वो कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी खुशी वहाँ मेरी खुशी।
0: और ये मुझे बताइए कि संगीत तो आपका पहला शौक हो गया
1: जी,
0: उसके बाद में दूसरे शौक और कौन कौन से हैं?
1: बहुत सारे हैं, मैं पढ़ती बहुत हूँ। अच्छा। और बचपन में तो मुझे तैरने का बड़ा शौक था, और कुकिंग का इतना शौक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ मैं तो समझे ना आप। तो और कुछ बनाने का, कुछ कहते हैं ना क्रिएशन का शौक है, बस स्टेज पे करूं मैं या स्मॉल स्क्रीन पे करूं या खुद गाऊं, अगर आवाज साथ नहीं देती है तो मैं फिर ऐसी प्रवृत्ति में रहती हूं कि जहां मेरे मन को एक कहते हैं ना खाना मिले।
0: तो ये बताइए मुझे, आपने अपनी बातचीत में जिक्र किया बार बार ईस्ट अफ्रीका का,
1: जी
0: तो वहाँ कौन सी जगह जहाँ आपका बचपन बीता है? क्या पैदाइश आपकी वहीं की है?
1: जी मैं दारेसलाम की रहने वाली हूँ, और आपको बताऊँ कि दारेसलाम इतनी खूबसूरत जगह है कि लोग टहिटी बहामास छुट्टियों में जाते हैं ना, तो हमारी वहाँ का जो हमारा समुद्र है, नीला पानी, सफेद रेत, पाम ट्रीज, एक किस्म से स्वर्ग है वो, इतनी खूबसूरत जगह है।
0: कमल जी फिल्मों में तो आपने गाया ही है, लेकिन पार्श्व गायन से हट करके गैर फिल्मी रचनाएं भी गाई होंगी, उनके बारे में बताइए।
1: बहुत सारे गाने गाए हैं मैंने, पहले तो यहाँ मैं जिक्र करूंगी कि मेरा पहला एलपी म्यूजिक इंडिया ने किया था, वो पुरुषोत्तम उपाध्याय ने बनाया था, और वो एलपी का नाम था झनकार, उसमें 8 रचनाएं थी। और दूसरा मैंने थोड़े कुछ 8 साल पहले एक एल्बम निकाला था आदाब, जो शेखर सेन ने म्यूजिक दिया था, उसकी एक रचना आप सुनाइए, और बोल है निगाहें नीची किए।

0: वाहवाही का, शाबाशी का, इन सब के अपने अपने महत्व हैं। तो आपको पुरस्कार भी मिले होंगे और उपलब्धियां भी रही होंगी जिंदगी में।
1: ढेर सारे मिले हैं, बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरे ख्याल में गलत व्यक्ति को इन्होंने दे दिया है, लेकिन मिला जरूर है मुझे। अच्छा। मैं 5 साल की थी तब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। जब मैं दारुस्सलाम में थी तो मुझे गोल्ड मेडल मिला था, फिर मैं जब यहाँ आई तो मुझे साइकिल कॉन्टेस्ट में मुझे बड़ी शील्ड मिली और वो भी एक किस्म का प्राइज था। फिर सुरसिंगार संसद की तरफ से फिल्म तानसेन बनी थी, जिसमें मैंने महेंद्र कपूर के साथ एक क्लासिकल ड्यूएट गाया था, उसके लिए मुझे एक ट्रॉफी मिली थी। और लीलोड़ी धरती के लिए मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला।
0: अब चूंकि ये प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव आ चुका है
1: जी,
0: आप क्या कहना चाहेंगी, कोई बात मन में रह गई हो जो आप हमारे सुनने वालों से कहना चाहती हैं?
1: जी, मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि अवार्ड्स तो लाइफ में मिलते रहते हैं और शायद और भी मिलेंगे आगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगी कि भाइयों और बहनों, आप मेरे गानों को सुनिए, जैसा पहले आप मुझे प्यार देते थे वैसा ही प्यार अब भी दीजिए, तो शायद कुछ और गाने का मेरा दिल करेगा और आपके सामने मैं वो पेश कर सकूं।
0: क्या बात है, इस वक्त तो आपके किसी गीत में खोने को जी चाहता है।
1: बॉम्बे में जब भी मानसून का मौसम होता था, काले काले बादल मुंबई शहर पे आ जाता था, तो आपका रेडियो स्टेशन ये गाना जरूर बजाता था और वो गाना है गरजत बरसत सावन आयो।

0: कमल बरोड़ जी, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए, सेल्यूलॉइड के सितारे के लिए वक्त दिया और इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत और दिलचस्प बातचीत आपसे हुई, इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और यही शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं आपके प्रति कि जो सक्रियता आपने कला के क्षेत्र में अभी भी बनाए रखी है वो इसी तरह से बनी रहे और इसी तरह से आपको सफलताएं मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपने मुझे आज स्टूडियो में बुलाया, इतना सारा मान दिया, सम्मान दिया, लोगों के सामने फिर से बोलने का मौका दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।

सेलुलॉयड के सितारे कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से कमल शर्मा की बातचीत। तकनीकी सहयोग था माणिक राव गायकवाड़ का और विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती आकाशवाणी मुंबई के कार्यक्रमों को। ये आकाशवाणी हिसार है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ईमेल्स पर आधारित ई फरमाइश का आज का ये अंक।

चले आए रे हम तो सबसे बचा के अखियां, अब चाहे दुनिया बना ले कितनी ही बतियां, गर्मियों की तेज धूप में छाया सी राहत हो तुम, मेरे लिए चाय की कप की चाहत हो तुम, गुजरते हैं यूं तो लम्हे तमाम लेकिन सुकून भरे लम्हों की हसरत हो तुम। तमाम संगीत प्रेमियों का स्वागत आकाशवाणी हिसार पर। आज के इस ई फरमाइश के अंक को लेकर उपस्थित हूं इस सफर का हम सफर, मैं शिवानंद वाशिष्ठ। तमाम श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपकी भेजी हुई ईमेल्स, आपकी भेजी हुई प्रतिक्रियाएं इस कार्यक्रम में प्राण फूंकने का काम करती हैं और हम लेकर आते हैं आप तमाम श्रोताओं की दिली ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम प्रत्येक मंगलवार ई फरमाइश आकाशवाणी के हिसार केंद्र से। और आज के इस अंक में लीजिए, हमारे तमाम चाहने वालों की ईमेल्स हम तक पहुंच रही हैं और नए श्रोता जो कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमें भेज सकते हैं radiohisar@gmail.com पर अपनी फरमाइश, radiohisar@gmail.com पर आप भेजिए अपनी फरमाइश और हम प्रयास करेंगे आपकी इस ख्वाहिश को आकाशवाणी हिसार के इस ई फरमाइश कार्यक्रम में शामिल करने की। और लीजिए, अब इंतजार की घड़ियों को करते हैं कम और मिलकर सुनते हैं ई फरमाइश का आज का ये अंक, आप और हम। तो भोपालगढ़ राजस्थान से हमारे पहले फरमाइशी नगमे के साथ जुड़ेंगे हमारे ये श्रोता धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान, पूजा परिहार और तमाम परिवार के सदस्य।

इन्हीं श्रोताओं के साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हमारे ये श्रोता टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, ये तमाम श्रोता रहेंगे सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा यूपी से हमारे श्रोता रहेंगे आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। और लीजिए अगली ईमेल हम शामिल करते हैं। हमारे श्रोता रहेंगे गांव चौधरीवास जिला हिसार से, मांगीराम सतोड़, रितु सिंह, हिमानी, शुभम और यश कुमार। इन तमाम श्रोताओं के साथ श्रोता जुड़ेंगे ग्राम पंचायत बटेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से, बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, मुरली खूबचंद वर्मा जी। इन तमाम श्रोताओं के साथ गांव खोरखा वाली जिला श्री गंगानगर राजस्थान से श्रोता रहेंगे विनोद बारासा, विशाल विकास, रोशनी और शगुन बारासा। इन तमाम श्रोताओं के साथ पद्मा टोकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से श्रोता जुड़ते हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति शाह, सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। इन तमाम श्रोताओं के साथ जुड़ेंगे नूर महल महसूल सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज, तलहत नाज जहानाज, फरहत जहानाज, रिफहत जहानाज, नुतहत जहानाज, साजिया शाहिन नाज और नाजिया नूरी नाज। इन तमाम श्रोताओं के साथ दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसवणी वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, मोखीलाल वर्मा। और इन श्रोताओं के साथ अगली मेल शामिल कर लेते हैं हमारे इन श्रोताओं की। नरेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवनकर, निर्मला और विशाल नवनकर, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष मुरहेकर। इन तमाम श्रोताओं के साथ जुड़ेंगे गांव कलाना तहसील भद्रा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, योद्धव और कुंदन जाखड़। नए श्रोता भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बहरहाल उन तमाम श्रोताओं का स्वागत। और छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि, राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। इन तमाम श्रोताओं के साथ हमारे श्रोता जुड़ेंगे। और श्रोताओं गुजारिश आप तमाम संगीत प्रेमियों से, आकाशवाणी हिसार के तमाम शुभ चिंतकों से कि कृपया एक ही मेल भेजें ताकि अन्य श्रोताओं को भी मौका मिल सके। सिद्धार्थ नगर दरियापुर बावली से ये गजानन ये ले, नवदीप ये ले, विश्वदीप और नीलेश ये ले। इन तमाम श्रोताओं के साथ जुड़ते हैं सावतपुर छत्तीसगढ़ से ऋषि सेन और रितेश सेन। तो इन तमाम श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं उस गीत को श्रोताओं जिसने जीवन के फलसफे को बयां किया। अब अगर मैं ये कहूँ श्रोताओं कि जिंदगी एक सर्कस की तरह है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है और कभी चलते चलते बहुत कुछ सिखा भी जाती है। तो इन्हीं भावनाओं को बड़े ही अनोखे अंदाज में प्रस्तुत किया है हिंदी सिनेमा के उस यादगार गीत में जिसे अब सुनेंगे और सुनकर उस यादगार गीतों की धुनों में आप खो जाएंगे। फिल्म 1970 में रिलीज हुई, फिल्म का नाम रहेगा मेरा नाम जोकर। और भारतीय सिनेमा के महान शोमैन राज कपूर साहब ने इस गीत में अपनी कलात्मकता, अपनी भावनात्मकता को बखूबी पर्दे पर उतारा। गीत का संगीत तैयार किया मशहूर संगीतकार शंकर जयकिशन साहब ने और हसरत जयपुरी साहब ने जिंदगी के दर्शन को बेहद सरल शब्दों में और असरदार शब्दों में पिरो दिया। वहीं अपनी दमदार और जोशीली आवाज से सजाया इस गीत को मन्ना डे साहब ने। उनकी गायकी में जो ऊर्जा, जो गहराई है, वो श्रोताओं उन्हें सबसे अलग बनाती है। तो आइए सुनते हैं सिमी ग्रेवाल, धर्मेंद्र, ऋषि कपूर, मनोज कुमार और राजकुमार और राजेंद्र कुमार जैसे सितारों की मौजूदगी में बनी फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गीत।

हरकत है और हरकत में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

मिलने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर क्यों जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न

0: है चोरा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक जो करता नहीं बार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: चाहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

फ्रॉम रेडियो सेट्स टू रील्स 90 सालों से कनेक्ट है इंडिया की फीलिंग से, हर दौर की आवाज, हर जनरेशन का भरोसा, सेलिब्रेटिंग 90 इयर्स ऑफ आकाशवाणी। आकाशवाणी हिसार, स्टिल आइकॉनिक, स्टिल कनेक्टिंग इंडिया।

अंतराल से पूर्व श्रोताओं, मन्नाडे साहब की दिलकश आवाज में गीत सुना आपने। आप सुन रहे हैं फरमाइश, और आज के इस सफर में आपका हम सफर हूं मैं शिवानंद वाशिष्ठ। और आइए श्रोताओं, अब रुक करते हैं अगले गीत की ओर। अगला गीत आपको उस दौर में लिए चलता हूं श्रोताओं, जब फिल्में भले ही ब्लैक एंड वाइट बनती हूं, श्याम और श्वेत में बनती हूं, लेकिन ऊर्जा उतनी ही दिलकश होती थी, उतनी ही जवां होती थी। और श्रोताओं, उन गीतों में मस्ती, चंचलता और भारतीय संस्कृति की रंगत का जिक्र स्वतः ही देखने को मिलता था। एक ऐसा ही गीत आप तक पहुंचेगा और इन तमाम श्रोताओं की भावनाओं को समेटते हुए ये गीत पहुंचेगा, और श्रोता जुड़ेंगे इस गीत के साथ। ऊपरकोट मोहल्ला चौखनटी बुलंदशहर से हमारे श्रोता जुड़ेंगे, मोहम्मद सैयद अब्बासी, निगत प्रवीण अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और तमाम अब्बासी परिवार के सदस्य। गुजरात गांधीग्राम से हमारे श्रोता रहेंगे प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी। इन तमाम श्रोताओं के साथ श्रोता जुड़ रही हैं। गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा रघुवंशी, पूजा रघुवंशी, बबीता, शोभा, नंदिनी, ललिता नारायण खड़से, आराध्या गणेश खड़से, वैष्णवी कार्तिक खड़से और तमाम परिवार के सदस्य। इन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम से जुड़ रही हैं जलालाबाद पश्चिम से सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहुजा। व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से श्रोता रहेंगे और लिखते हैं, जरा नजर इनायत हमारी मेल पर भी कीजिए। तो हमारे इन तमाम श्रोताओं की मेल पर नजर इनायत हो रही है। वाइल्ड फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष। इन तमाम श्रोताओं के साथ जुड़ रही हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तन पुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। इन तमाम श्रोताओं के साथ अगली मेल शामिल करते हैं वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा को कार्यक्रम में शामिल कर रही हैं। कंवर कॉलोनी वडवाह जिला खरगोन मध्य प्रदेश से ईमेल हम तक पहुंची है प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली, कार्यक्रम से जुड़ते हैं। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकलम, नफीसा प्रवीण और जोहानुल हुदा ये कार्यक्रम से जुड़ते हैं। इन तमाम श्रोताओं के साथ जुड़ेंगे ग्राम आनगांव, जिला जालना, परमेश्वर शिंदे, कावेरी शिंदे, प्रवान शिंदे और समस्त शिंदे परिवार के सदस्य। गांव नथाना पंजाब से हमारे श्रोता रहेंगे हरजिंदर सिंधा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। इन तमाम श्रोताओं के साथ पोटिया कला दुर्ग से हमारे श्रोता रहेंगे संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। और लीजिए बदलापुर मुंबई से अगली मेल हम तक पहुंची है सिद्धार्थ गवानकर, प्रणीता गवानकर, अर्जुन गवानकर और मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवानकर, राही श्रीमती सरिता गवान,

कर प्रिंस एकांश गवंडकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवंडकर, सुमित गवंडकर और कुमारी ध्वनि गवंडकर नन्ही परी। गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू और नव्या बिजारनिया। इन तमाम श्रोताओं के साथ श्रोता जुड़ रहे हैं शिवाजी नगर वडाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़ी, शिव सागर इंद्रा ताई और छकुली ताई खोबरखेड़ी, खांडवी बुलढाणा से दीपावली राम धाड़े, स्वराज राम धाड़े और थिलोरी दरियापुर से सुनैना पवन भूंडे, तनुज पवन भूंडे। इन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा को कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। और इन तमाम श्रोताओं के साथ शामिल कर रही हैं अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सभिया, अनस और रेहान को। श्रोता रहेंगे दुर्गा कॉलोनी जिला हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। इनके मित्र रहेंगे गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। श्रोताओं आपसे अनुरोध, एक से अधिक मेल न भेजे। देखिए हमारे पास में एक ही श्रोता की ज्यादा नहीं तो श्रोताओं 11 मेल हमें दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। और ये देखिए श्रोताओं, अन्य श्रोताओं का समय और उनकी जगह हड़पने की जो ये साजिश चल रही है ये बहुत ही गलत है। श्रोताओं आपसे अनुरोध है एक ही मेल भेजिए और कार्यक्रम को उत्साह के साथ में सुनें। और हमारे अगले श्रोता जुड़ते हैं बागवान मंजिल छोटी बलिया से नूर आयशा अहमद बागवान, इकबाल अहमद, अखलाक अहमद, आमना आसना, राबिया परी, आशु जूही सदफ बागवान और छतरी टोल तेगढ़ा बाजार बेगूसराय से अदीफा अफसरी, इस्माइल आजाद, नन्हे राजा, फयाज फिरोज आलम और शाह आलम वली आलम। और लीजिए अब अगली मेल हम शामिल करते हैं ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा की। और आइए श्रोताओं अब एक ऐसा गीत आपको सुनवा देते हैं जिसने अपनी अनोखी धुन और चुलबुले अंदाज में हर दौर के श्रोताओं का दिल जीता और आपका भी दिल ये गीत जरूर जीतेगा। 1955 में आई फिल्म का संगीत तैयार किया संगीतकार सी रामचंद्र साहब ने। उनकी धुनों में भारतीय लोक संगीत की मिठास और फिल्म संगीत की चमक का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। बहरहाल आप सुनेंगे इस गीत को और गीत के बोल लिखे मशहूर गीतकार राजेंद्र कृष्ण साहब ने जितने गीत वे जिंदगी में जितने सरल थे उतने ही गीतों में भी उनकी शब्द शक्ति बेहद सरल और आकर्षक बनी रही। और श्रोताओं आवाजें भाई लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की हो तो गीत अपने आप में ही यादगार बन जाता है। तो दोनों बहनों की आवाजों की चंचलता इस गीत में ऐसे प्राण फूंकती है कि सुनने वाला खुद ब खुद मुस्कुराने लगता है। तो श्रोताओं आइए सुनते हैं आजाद फिल्म का वो गीत जिसे गाया लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर जी ने।

1955 में आई आजाद फिल्म का श्रोताओं आपने गीत सुना। राजेंद्र कृष्ण जी ने इस गीत को लिखा था, श्री रामचंद्र साहब ने इस गीत की धुन को तैयार किया था। और श्रोताओं अब बारी अगले फरमाइशी नगमे की, और श्रोता हमारे रहेंगे ग्राम शेटे जिला सांगली से हनुमंत शिंदे और संगीता शिंदे। इन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम में शामिल कर रही हैं हम इन तमाम श्रोताओं को। गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और परिवार के तमाम सदस्य। इन्हीं श्रोताओं के साथ हयात कॉलोनी अररिया बिहार से हमारे श्रोता पहले शामिल हो चुके हैं। बहरहाल अगले श्रोता शामिल करते हैं हम कार्यक्रम में, और श्रोता हमारे रहेंगे बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन महाकाल के शहर से, मध्य प्रदेश से श्रोता रहेंगे विनोद मुनत, नेहा जैन, दीपक मैंक मुनत, चेतन नाहटा और इन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। सहारनपुर से राधा रामदेव नामदेव, अर्पणा नामदेव, अभिषेक और हर्षित शर्मा, इन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम में नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान के श्रोता जुड़ते हैं। वेद मिड्डा, अलका मिड्डा, गांव सेरडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से हमारे श्रोता रहेंगे मंटू, सोनू शर्मा, सुशीला शर्मा, लीलाधर शर्मा और इनके मित्र। गांव चौधरीवाल से जिला हिसार से राजू अग्रवाल और समस्त परिवार के सदस्य। इन्हीं श्रोताओं के साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। हमारे श्रोता जुड़ेंगे संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत, कमल साहनी।

अजीम और निशा अजीम। इन तमाम श्रोताओं के साथ गांव व डाकघर निमनाबाद जिला जींद से हमारे श्रोता रहेंगे जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना और तमाम इनके मित्रगण। पटेल नगर मलोट पंजाब से हमारे श्रोता रहेंगे डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप, आरजू जाजोरिया और गुड्डू। इन तमाम श्रोताओं के साथ शामिल हो रही हैं हमारे ये श्रोता। गांव लोगढ़ ठाकुरा वाला जिला फिरोजपुर पंजाब से हमारे श्रोता रहेंगे स्वर्ण सिंह गिल, दिलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, नविराज सिंह और उनके पोतरे यानी पोते गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह। इन तमाम श्रोताओं के साथ श्रोता गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से जुड़ेंगे दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और तमाम शेखावत परिवार के सदस्य। इन्हीं श्रोताओं के साथ अगली मेल हम शामिल कर लेते हैं हमारे इन श्रोताओं की। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव कार्यक्रम से जुड़ते हैं। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा कार्यक्रम से जुड़ रही हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता, राधा नामदेव, संजय धींगिया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन और दर्शन भाई। और लीजिए भोला कॉलोनी घरोंडा जिला करनाल हरियाणा से काफी दिनों बाद मेल आई है और हमारे श्रोता रहेंगे बिजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन साहिल और वाणी जयजान। इन तमाम श्रोताओं के साथ पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा कार्यक्रम से जुड़ते हैं। गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बाल कृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा। तो आइए श्रोताओं अब आपको वो गीत सुना देते हैं जिस गीत ने तमाम संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी धुन को लेकर, अपने संगीत को लेकर, अपने शब्दों को लेकर एक खास जगह बनाई। हम बात कर रहे हैं फिल्म पारस मणि के बेहद लोकप्रिय गीत की। साल 1963 में आई ये फिल्म और इस फिल्म का संगीत तैयार किया उस समय की संगीतकार, मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। श्रोताओं ये वही दौर था जब उनकी बनाई हुई धुनों ने हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू की थी और गीत के बोल लिखे थे मशहूर गीतकार अशद भोपाली साहब ने, जिन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में प्यार और मासूमियत को शब्दों में पिरोया इस गीत में और इस गीत को अपनी मधुर आवाजों से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर और गायिका कमल बरोट ने, दोनों की आवाजों ने श्रोताओं के दिलों में ही किया, कानों में मिश्री घोल दी। इतनी मिठास इस गीत में सुनने को मिलती है और श्रोताओं हल्की फुल्की शरारत इस गीत में रहेगी। नोकझोंक है, दिल को छू लेने वाली धुन है और यही वजह है कि ये गीत आज भी पुराने नगमों के चाहने वालों की पहली पसंद बना हुआ है। और श्रोताओं इस गीत में जितना सुंदर चित्रण इस गीत का किया गया, जितना सुंदर अभिनय इस गीत का किया गया, मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया, भाई और क्या चाहिए। इस कालजयी गीत से जुड़ने के लिए आइए सुनते हैं आकाशवाणी हिसार पर प्रस्तुति फरमाइश का ये गीत।

श्रोताओं, गीत ही ऐसा था कि इसकी धुन में स्वतः ही खो गई। भाई, हमने कहा था गीत ऐसा होगा कि आपके दिलों में मिठास घोल देगा। बहरहाल, लौट आई वापिस और श्रोताओं अगले फरमाइशी नगमे की ओर बढ़ेंगे। बहरहाल, अब समय अंतराल का।

अंतराल के बाद पुनः आप तमाम संगीत प्रेमियों का स्वागत श्रोताओं। ई फरमाइश के इस सफर में आप बने हुए हैं आकाशवाणी हिसार के साथ, और सफर का हम सफर हूं मैं शिवानंद वाशिष्ठ। और श्रोताओं, ई फरमाइश का ये गुलदस्ता जब आप तक पहुंच रहा है उसमें मन्ना डे साहब को सुना, लता मंगेशकर को सुना, कमल बरोट और उषा मंगेशकर जैसे तमाम सरस्वती पुत्रों पुत्रियों की आवाजों को हमने सुना, तो वहां भला भाई मोहम्मद रफी का जिक्र ना हो तो ऐसा तो बड़ा बेमानी सा रहेगा कार्यक्रम में। अब जो श्रोताओं गीत आप तक पहुंचेगा वो गीत सिर्फ सुना नहीं जाएगा बल्कि महसूस किया जाएगा, उसकी धुन दिल में उतर जाएगी, शब्द सीधे भावनाओं को छू लेंगे। और श्रोताओं गीत का ये खूबसूरत लम्हा, रोमांटिक नगमा, जो बात तुझ में है वो तेरी तस्वीर में नहीं। बहरहाल कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे इन तमाम श्रोताओं के फरमाइश के साथ, और श्रोता रहेंगे हमारे गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और तमाम परिवार के सदस्य इन्हीं श्रोताओं के साथ कार्यक्रम से जुड़ते हैं। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमाक्ष, इन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं हमारे श्रोता। कंवर कॉलोनी वडवा से जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से हमारे श्रोता रहेंगे मोहम्मद इसाहक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कोसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा, इन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम से जुड़ रही हैं हमारे श्रोता जो भेज रही हैं हमें अपनी फरमाइश। गांव नलोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार हरियाणा से राजबाला, नवीन, मंदी, प्रियंका, सपना, नीतू, कार्तिक, विदांश जांगड़ा और सजन कुमार जांगड़ा जी, तो इन तमाम श्रोताओं के साथ लीजिए अब शामिल कर लेते हैं हमारे इन श्रोताओं को। सादुल शहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से श्री राम कुमार रेवाड़, श्रीमती चंद्रकला रेवाड़ जी कार्यक्रम में शामिल हैं। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस और रेहान कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजी जाधव, डॉक्टर प्रशांत कुमार, संचित कुमार, सर्वत देशमुख, कुमार प्रथमेश, कुमारी प्रणाली, कुमारी सानवी और कुमारी कल्पना देशमुख, इन तमाम श्रोताओं के साथ हमारे श्रोता रहेंगे जो लिखते हैं। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। सौराष्ट्र राजकोट गुजरात से हमारे श्रोता रहेंगे जूली जगदीश गुजराती, कंचन कुसुम, प्राची और प्रवीण पुजारी, इन तमाम श्रोताओं के साथ लीजिए। बुलढाणा वडशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेध दामोदर, और शामिल करते हैं हम हमारे इन श्रोताओं को चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला नेजा को। शाजी बोड़के, श्रीमती नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के, ये तमाम श्रोता रहेंगे हिंगोली महाराष्ट्र से। आंबेडकर चौक वाकोड़ी से उत्तम जमदाड़े और स्वराज जमदाड़े कार्यक्रम से जुड़ते हैं हमारे श्रोता रहेंगे। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू, इन्हीं तमाम श्रोताओं के साथ। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार कार्यक्रम से जुड़ते हैं। श्रोता जुड़ेंगे गांव चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा और तमाम शर्मा परिवार के सदस्य, इन्हीं श्रोताओं के साथ कार्यक्रम में हम शामिल कर लेते हैं। राम सिंहपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान के श्रोताओं की इस फरमाइश को अशोक, बब्बर, पवन, राजेश, अजय, राहुल और मनु कार्यक्रम से जुड़ते हैं। चक 5 एमडी पत्रोड़ा से हमारे श्रोता रहेंगे मंगल जनागल राही, श्रीमती रोशनी जनागल, लंकुर जनागल, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल, इन तमाम श्रोताओं के साथ श्रोता जुड़ते हैं। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा और भाई सूचा सिंह पाठक। सनावत से शेख मूसा मोहसिन
कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और इन्हीं के साथ हम शामिल कर लेते हैं उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी और अन्नू गोस्वामी को। और श्रोताओं, अब जो गीत आप तक पहुंच रहा है उस गीत की शब्द शक्ति इतनी प्रबल है, इतनी मधुर है और संगीत इतनी गहराई लिए हुए है कि आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में इस गीत ने एक खास जगह बनाई हुई है। गीत को संगीत से सजाया महान संगीतकार रोशन साहब ने, जिनकी धुनों में शास्त्रीय संगीत की मिठास और आत्मा की गहराई साफ सुनाई देती है। और गीत के बोल लिखे गीतकार साहिर लुधियानवी जी ने। साहिर साहब ने श्रोताओं ऐसे शब्दों को भावनाओं से पिरोया कि जिसमें सादगी और उनकी खूबसूरती बयां होती है और यही जादू इस गीत में सुनाई भी पड़ता है। श्रोताओं, दिलकश आवाज में इस गीत को अमर बना दिया महान गायक मोहम्मद रफी साहब ने। तो आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं उसे धीमी धीमी धुन, प्यार भरे बोल और रफी साहब की जादुई गायकी। और श्रोताओं, इस गीत की खास बात ये कि इस फिल्म के तीन गानों को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए शामिल किया गया, नामांकित किया गया और जिसमें साहिर लुधियानवी को श्रेष्ठ गीतकार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वहीं रोशन साहब को इस गीत के लिए, इस संगीत के लिए श्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आइए सुनते हैं उसी अद्भुत कालजयी गीत को, 1963 में आई फिल्म ताजमहल का ये खूबसूरत गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फरमाइश का ये अंक, और इस सफर में आपका हम सफर हूं मैं शिवानंद वाशिष्ठ। और श्रोताओं, नए श्रोता कार्यक्रम से जुड़ने के लिए नोट कीजिए हमारी ईमेल का पता radiohisar@gmail.com, और भेजिए आप अपनी फरमाइश। और देखिए, आकाशवाणी हिसार का दिल बहुत बड़ा है श्रोताओं, जिसमें सभी समा जाते हैं। बहरहाल वे भी समा रहे हैं श्रोताओं जो एक से अधिक मेल कर रहे हैं। बहरहाल हमने उनको शामिल किया, लेकिन फिर भी वे बहुत सारी मेल्स कर रहे हैं, और ये श्रोताओं एक अच्छे श्रोता की निशानी नहीं है। बहरहाल हम शामिल कर लेते हैं हमारे सुनने वालों को, और दिल से आकाशवाणी हिसार से जुड़ रही हैं हमारे श्रोता रितेश शर्मा, किरण शर्मा, पवन शर्मा, निकिराम शर्मा, आशा शर्मा, रणजीत शर्मा, गीता शर्मा, और तमाम परिवार के छोटे और बड़े सदस्य। ये तमाम नए श्रोता जुड़ते हैं गांव सेड़ा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से। बहरहाल तमाम श्रोताओं का स्वागत, और इन्हीं श्रोताओं के साथ अब शामिल कर रही हैं हमारे इन श्रोताओं को नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे भाटापारा छत्तीसगढ़ से, सोहन जोशी और पायल जोशी। कार्यक्रम की श्रोताओं ये अंतिम फरमाइश रहेगी, और श्रोता रहेंगे गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु खुराना। इन तमाम श्रोताओं के साथ हमारे श्रोता जुड़ रही हैं आकाशवाणी हिसार से, और इस क्रम में श्रोता रहेंगे जो लिख रही हैं हमें ईमेल, मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज रवेद हसन, रशीद वारसी, सुहेल हसन, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी, सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी, इशरत प्रवीण और तमाम अब्बासी परिवार के सदस्य। और लीजिए, कलानूर जिला रोहतक से ये ईमेल हम तक पहुंची है, हमारे श्रोता रहेंगे नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। इन तमाम श्रोताओं के साथ हमारे श्रोता जुड़ते हैं जो लिख रहे हैं radiohisar@gmail.com पर अपनी फरमाइश, और हमारे श्रोता जुड़ेंगे मंडी आदमपुर से किरण और परिवार के तमाम सदस्य। इन्हीं श्रोताओं के साथ पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। इन्हीं श्रोताओं के साथ कोटवा नारायण

अनपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल रॉय। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, टोली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया के साथ रहेंगे मास्टर अल कबीर। इन तमाम श्रोताओं के साथ जुड़ेंगे गांव चूली देशवाली तहसील लादमपुर से मास्टर ओम प्रकाश गढ़वाल, दड़ोली से इनके मित्र रघुवीर मंडेरना, मास्टर विनोद जाखड़, मास्टर इंद्र मोहन शर्मा और राम निवास पांडू जी। तो तमाम श्रोताओं के साथ लीजिए पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा और रिमझिम गुप्ता को शामिल कर लेते हैं और प्रेम पूर्वक हम तक निवेदन पहुंचा रहे हैं हमारे ये श्रोता जो लिखते हैं हमें खैल बाजार पानीपत से, नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, इनके पिताजी श्री नानक चंद मल्होत्रा जी, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष कोयल, डग्गू भाविक सिक्का। इन तमाम श्रोताओं के साथ गमरिया जमशेदपुर से विपिन, स्वाति, देव कुमार, आर्य कुमार जायसवाल, कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल और चिन्मय महतो। इन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इस अंतिम फरमाइश गीत के साथ रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, सोनू मोनू, रानू, सपना, शिवी, सलोनी और पेंटर बाबू, शिवपुरम कॉलोनी से कमला देवी महोबिया, अनाया और ईशु बाबा, शीतला चौक खंडवा से विशाल और विवेक सिंह। तो कार्यक्रम की ये अंतिम फरमाइश श्रोताओं और इस खूबसूरत गीत को आप तक हमने पहुंचाने के लिए लिया है साल 1988 में आई 1988 में गंगा जमुना सरस्वती का वो सुपरहिट गीत जिसे गाया लता मंगेशकर जी ने और गीत फिल्माया गया सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री जया प्रदा जी पर। अनु मलिक का संगीत रहेगा श्रोताओं। इंदिवर साहब ने इस गीत के शब्दों को लिखा और सीधे दिल में उतर जाएं ऐसे शब्द और विरह प्रेम और इंतजार की भावनाओं को बखूबी इस गीत में जीवंत कर दिया। तो आइए सुनते हैं सुपरहिट फिल्म गंगा जमुना सरस्वती का ये फरमाइशी नगमा।

अब श्रोताओं कार्यक्रम में फरमाइश समेटने की अपने आज के इस सफर के हम सफर शिवानंद वाशिष्ठ को दी अनुमति। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आकाशवाणी हिसार से निरंतर जुड़े रहें। नमस्कार।

नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन फ्रस्टर आईटी, फिनलैंड प्रधानमंत्री छिपेटेरी ओरपो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली

0: आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में है। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर मंडल अगले 5 वर्षों में देश का सबसे विकसित आदिवासी मंडल बनकर उभरेगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आय को 6 गुना बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए सही रूप से एक वैज्ञानिक रूपरेखा तैयार की है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के साथ जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानूनों मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लंबित मामलों की संख्या 1 अप्रैल 2024 में लगभग 5,000 से घटकर इस वर्ष 31 मार्च तक 2,600 रह गई है। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ व्हाट्सएप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा को बढ़ाया जा सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल और अन्य से न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में आपराधिक अवमानना मामले में उनका पक्ष पूछा है। मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज से भी उनका पक्ष पूछा गया है। न्यायालय की पीठ ने इन नेताओं को मामले के संबंध में नोटिस जारी किया। उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। बम्बई शेयर बाजार का संविधि सूचकांक आज 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ। निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,618 पर आ गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। उधर जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी ही सार है। आइए जानिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। शाम 6:20 पर श्रोताओं आप सुन पाएंगे प्रभु वंदना पर आधारित भक्ति संगीत और 6:30 पर सुनिएगा एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, कार्यक्रम युवा उमंग के अंतर्गत।

शाम 7 बजे कृषि संबंधी जानकारियों से भरपूर रहेगा कार्यक्रम किसान वाणी। आज श्रोताओं आप सुनेंगे धान की नर्सरी यानी पनीरी की तैयारी कैसे करें, इस महत्वपूर्ण विषय पर कार्यक्रम किसान वाणी। समय शाम 7 बजे। बढ़ती गर्मी से बचने के उपाय और सावधानियां, हीट स्ट्रोक से बचाव कैसे करें, इस विषय पर बातचीत सुनिएगा। कार्यक्रम रहेगा महरे गांव, समय रहेगा शाम 7:30।

राष्ट्रीय हिंदी समाचार और राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। समय रहेगा हिंदी समाचारों का रात्रि 8:45 और अंग्रेजी समाचार प्रसारित होंगे रात्रि 9:00। रात्रि 9:15 से रात्रि 10:00 तक सुनिएगा विविध भारती आकाशवाणी मुंबई के कार्यक्रमों को। संदेश आपके गीत हमारे व्हाट्सएप पर आधारित आकाशवाणी हिसार की प्रस्तुति रहेगी रात्रि 10:00। रात्रि 11:00 राष्ट्रीय हिंदी समाचार, रात्रि 11:05 पर राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार। समाचारों का ये अंक प्रसारित होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

ये आकाशवाणी हिसार है। अब श्रोताओं, गुमशुदा संबंधी आवश्यक सूचना। रानी पुत्री सुरेश कुमार निवासी सच मार्केट शास्त्री नगर महेंद्रगढ़ डिपो से ये लड़की जो है लापता है। गुमशुदा लड़की रानी का हुलिया इस प्रकार है। रंग सांवला, गोल चेहरा, कद लगभग 4 फुट, जींस पैंट पहने हुए है, नीले रंग की है और पैरों में चप्पल पहने हुए है। श्रोताओं, जिस किसी को गुमशुदा से संबंधित कोई सूचना यदि मिलती है तो प्रबंधक अफसर थाना आजाद नगर हिसार के मोबाइल नंबर पर सूचित किया जा सकता है। मोबाइल नंबर रहेगा 8 8 1 4 0 1 1 3 1 1। फोन नंबर एक बार पुनः सुनिएगा, 8 8 1 4 0 1 1 3 1 1। सूचना समाप्त हुई।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा सरकार ने राज्य में ईंधन बचाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए बड़ा अभियान शुरू किया। सरकारी विभागों को अनावश्यक सरकारी दौरा ना करने और सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का प्रयोग करने की सलाह दी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ईंधन की बचत, पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए साइकिल यात्रा की। सुखना झील पर लोगों को ईंधन की खपत कम करने के लिए प्रेरित किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 6 मार्गीय एक्सेस नियंत्रित DND सोहना राजमार्ग का निरीक्षण किया। हरियाणा सरकार ने बिगड़ते लिंग अनुपात को लेकर 4 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को निलंबित किया। और कैथल जिले के कस्बा कलायत में तालाब में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार ने पूरे राज्य में ईंधन बचाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर अमल करते हुए राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्तीय आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने सभी उपायुक्तों और सरकारी विभागों को भेजे विस्तृत संदेश में सरकारी कामकाज में ईंधन बचाने के तरीकों को बढ़ावा देने की सलाह दी है। उन्होंने अधिकारियों को भविष्य में सरकारी खरीद में इलेक्ट्रिक और ईंधन बचाने वाली गाड़ियों को प्राथमिकता देने, अनावश्यक सरकारी दौरे, हवाई यात्रा और विदेश यात्राओं को कम करने और ईंधन की बचत के लिए कई सरकारी कामों को एक ही यात्रा में पूरा करने को कहा है।

0: डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि अधिकारी व कर्मचारी आने जाने के लिए अपनी निजी गाड़ियों के बजाय मेट्रो, बस और रेल जैसी सार्वजनिक परिवहन सुविधा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अधिकारियों को यह भी सलाह दी गई है कि वे अपने सहकर्मियों और आसपास रहने वाले लोगों के साथ कार पूलिंग और राइड शेयरिंग करें। विभागों को सलाह दी गई है कि वे साझा यात्रा की व्यवस्था को आसान बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल करें। स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार जीवन शैली के महत्व पर जोर देते हुए डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि यहाँ भी संभव हो कम दूरी की यात्रा के लिए पैदल चलें या साइकिल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों को प्राथमिकता देने व सरकारी परिसरों में रहने वाले कर्मचारियों को अपने घरों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन के लिए PNG का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज ईंधन की बचत, पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए साइकिल यात्रा की। मुख्यमंत्री सुबह चंडीगढ़ की सुखना झील पहुंचे, जहां उन्होंने सुबह की सैर के लिए आए लोगों से बातचीत की और स्वस्थ भारत, स्वस्थ हरियाणा का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक स्थिति और मध्य पूर्व में हो रहे घटनाक्रमों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से इलेक्ट्रिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहन संरक्षण में योगदान देने की अपील की है। हरियाणा सरकार ने भी प्रधानमंत्री की अपील के जवाब में राज्य स्तर पर एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके तहत वर्चुअल बैठकों को प्रोत्साहित करने, घर से काम करने के विकल्पों को बढ़ावा देने और सरकारी वाहनों का अनावश्यक प्रयोग ना करने का निर्णय लिया गया है।
1: तो मिड डिस्ट की समस्या आज पूरे वर्ल्ड के सामने खड़ी हुई है। हमें पहले ही सचेत रहने की आवश्यकता है। हम बाहर अगर जाएं तो हम ट्रेन से जाएं, बसेस का उपयोग करें और ज्यादा EV का उपयोग करें, गाड़ी का कम उपयोग करें, पेट्रोल डीजल की हम बचत करें, ताकि इस अभियान में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की उसको गति मिल सके और भारत को मजबूती मिल सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था और हमने हरियाणा के अंदर भी अलग से एक SOP तैयार किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान को लेकर के, और उसमें चाहे वर्चुअली बैठ के करने की बात हो उसके अंदर हमने कई प्रकार के निर्णय लिए हैं।
0: उन्होंने कहा कि लोगों को इस पहल से जोड़ने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम और अभियान चलाए जाएंगे। उन्होंने विपक्ष से भी राजनीति से ऊपर उठकर विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री के संकल्प को मजबूत करने में लोगों के साथ मिलकर काम करने की अपील की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज 6 मार्गीय एक्सेस नियंत्रित DND सोहना राजमार्ग संख्या 148NA का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए श्री गडकरी ने कहा,
2: हम लॉन्ग टर्म पर प्लानिंग करके और लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ काफी रिलीफ देंगे और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम ध्यान में आएंगे उसको रिजोल्व करेंगे। देखिए, हमारे DPR के गलती के कारण जो ब्लैक स्पॉट्स हुए हैं उसमें हमने 40,000 करोड़ रुपए करके ब्लैक स्पॉट्स इम्प्रूव किए हैं और लगातार हमारी इम्प्रूवमेंट जोरों से चालू है। जो पहाड़ी क्षेत्र में लैंडस्लाइड्स होते हैं उसके भी हमने करीब 650 स्पॉट आइडेंटिफाई किए और 380 जगह पर वर्ल्ड की फेमस स्विट्जरलैंड और बाकी जगह से टेक्निक लाकर उसको भी उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर और सब जगह वो भी काम कर रहे हैं, अरुणाचल सिक्किम, वहाँ भी हमने काम किया है।
0: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने दुर्घटनाओं में घायल लोगों को बचाने के लिए राहवीर योजना शुरू की है।
2: मैं आपके मार्फत एक अच्छी बात कहूंगा कि अभी रोड एक्सीडेंट होने के बाद लोग डरते हैं कि जख्मी को मदद करने के लिए कि लपड़े में नहीं पड़ना चाहिए। अब हमने एक राहवीर योजना बनाई है, अगर कोई जख्मी को लेकर आप कोई भी हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो जख्मी को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले को हम 25,000 रुपए का अवार्ड देंगे। बाद में किसी भी हॉस्पिटल में जिसको एडमिट करेंगे उसके लिए हमने स्कीम बनाई है कि 8 दिन का खर्चा मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख रुपए हम तुरंत उस हॉस्पिटल को देंगे और उसकी जान बचाएंगे। दिल्ली के एम्स के डॉक्टर के रिपोर्ट में आया है कि अगर हम तुरंत उस हॉस्पिटल
0: इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, अजय टमटा, कृष्णपाल गुर्जर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद और विधायक उपस्थित रहे। हरियाणा सरकार ने बिगड़ते लिंगानुपात को लेकर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 4 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इन अधिकारियों पर कथित तौर पर खराब प्रदर्शन और लिंगानुपात में सुधार से जुड़े उपायों की प्रभावी निगरानी करने में विफलता का आरोप है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा द्वारा जारी संदेश के अनुसार निलंबित अधिकारियों ने सोनीपत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरखास में तैनात SMO डॉक्टर टीना आनंद, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र रादौर में।

0: तैनात एसएमओ डॉक्टर विजय परमार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिड़ी में तैनात एसएमओ डॉक्टर सतपाल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहलांग में तैनात चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रभा शामिल हैं। निलंबन की अवधि के दौरान ये चारों अधिकारी रोहतक, अंबाला, झज्जर और रेवाड़ी के सिविल सर्जन कार्यालयों से संबंधित रहेंगे। इन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कैथल जिले के कस्बा कलायत में आज सुबह कपिल मुनि तालाब में डूबने से दो सगी बहनों की मौत हो गई। मृतक युवतियों की पहचान 18 वर्षीय परमजीत और 20 वर्षीय पलक के रूप में हुई है। दोनों कलायत की ही रहने वाली थीं। हमारे संवाददाता ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही गोताखोरों को भी बुलाया गया और तालाब से लड़कियों की तलाश शुरू की गई। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों युवतियों को तालाब से बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस में कैथल के नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर आयुष विभाग पलवल द्वारा आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पीटीआई और डीपीआई का योग प्रशिक्षण दिया गया। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर हमीदुल्ला ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
1: दरअसल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ये सारी तैयारियां चल रही हैं। जिले के स्कूलों के सारे पीटीआई डीपीआई को हमारे योगा इंस्ट्रक्टर, हमारे योग आयुष योग सहायक, ये सारे लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। 3 दिन के लिए प्रोग्राम है और यहां से ट्रेनिंग लेकर के ये पीटीआई डीपीआई सारे लोग अपने स्कूलों में जाएंगे और पूरे जिले के स्कूलों में बच्चों को करवाएंगे। हमारी जीवन शैली थोड़ी ठीक हो जाए, जो सरकार ने प्रोग्राम शुरू किया है, ये हमारे लिए लाइफ लाइन है।
0: जींद के संत सेन भगत राजकीय महाविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी राज नेहरू ने आज मेधावी छात्र छात्राओं को डिग्रियां व पदक वितरित किए। समारोह के समापन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए श्री राज नेहरू ने महाविद्यालय की सराहना की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा,
2: इन्होंने आज डिग्रिया यहाँ से प्राप्त की है और दूसरा वो इन डिग्रियों का समाज के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए प्रयोग करें और हरियाणा को जो इनोवेशन चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, नए एंटरप्राइज चाहिए, हरियाणा को उन्नत बनाने में और विकसित हरियाणा बनाने में मैंने उनको यही आह्वान किया है कि वो भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें। हजारों समस्याएं हैं आसपास में, उन समस्याओं को आइडेंटिफाई करें और उनके प्रति जागरूक होकर नए इनोवेशन, नए स्टार्टअप्स, नए सोशल एंटरप्राइजेस बन सकते हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। हरियाणा सरकार ने राज्य में ईंधन बचाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए बड़ा अभियान शुरू किया। सरकारी विभागों को अनावश्यक सरकारी दौरे न करने और सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का प्रयोग करने की सलाह दी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ईंधन की बचत, पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए साइकिल यात्रा की। सुखना झील पर लोगों को ईंधन की खपत कम करने के लिए प्रेरित किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी हिसार है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं प्रभु वंदना पर आधारित भक्ति संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रभु वंदना पर आधारित भक्ति संगीत। ये आकाशवाणी हिसार है, आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, कार्यक्रम युवा उमंग के अंतर्गत।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
0: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
0: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है, चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं, ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया। परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
0: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि ये कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
2: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
0: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहाँ वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
0: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट

0: उसे कहते हैं जहाँ साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
1: जी।
0: और जहाँ हर समय नमी पाई जाती है और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है
1: जी। एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहाँ वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षावन तो ऐसे भी हैं जहाँ साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
0: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
1: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
0: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
1: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें इन क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं,
0: जी,
1: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
0: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है
1: जी।
0: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
1: लेकिन श्रोताओं, जरूरी नहीं है कि सभी वर्षावन भूमध्य रेखा के पास ही हों। इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षावन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षावन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
0: तो श्रोताओं, एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है
1: जी।
0: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए
1: जी। यही कारण है अजीत जी के चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है, उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है
0: जी।
1: और इससे पूर्व भी आदि मानव जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात
0: जी। विमृषि श्रोताओं, एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते
1: जी।
0: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं विमलेश जी से
1: जी। श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षा वनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षा वनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी वर्षा वनों की। श्रोताओं, वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो
1: जी,
0: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
1: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें।
1: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
0: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था।

0: वो जग गया।
1: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
0: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
1: बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
0: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
1: सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो पीला हूं।
1: कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं नहीं, मैं तो काला हूं। गुब्बारे गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो लाल हूं।
1: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो हरी हूँ।
0: बेचारा जोजो।
1: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
5: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोताओ, और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
6: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
5: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
3: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
4: अरे इनकार भी नहीं लगी। अरे
3: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको। अरे मैं
5: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
3: हा?
5: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
3: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो
5: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
4: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
5: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
3: बड़ी आई रोकने वाली। वही करेंगे।
1: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
2: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
1: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
2: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
6: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
7: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
6: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
8: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
6: आप तो काम करती है ना?
8: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
6: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
1: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
2: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में

0: अखरोट का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
1: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
0: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
1: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
0: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
2: गौरमा, गौरमा,
3: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
2: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
3: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
2: गौरमा,
3: हाँ,
2: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
3: क्या?
2: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
3: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
4: हाँ गौरमा, हाँ गौरमा,
3: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
5: बिल्कुल,
3: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
4: हाँ, हाँ, हाँ, सब तैयार हैं।
5: किसी
4: भी हाल में जंगल कटने नहीं देंगे।
5: नहीं कटने देंगे,
2: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
1: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
3: ये है जंगल के उपकार,
6: मिट्टी पानी और बया,
3: मिट्टी पानी और बया,
6: जिंदाए के आधार।
0: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
5: अरे क्या कर रहे हो?
7: मुंह के ताक रहे हो? चलो शुरू मारो।
5: अरे भाई कौन है? रुको, इस पर चल जाएंगे पेड़ से।
3: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
7: सुनो, आगे बढ़ो।
5: अरे कहां से
7: तुम इनकी बातों में मत आओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए।
5: छिपक जाएंगे।
3: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
8: नहीं लगाने देंगे।
3: बहनों आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
9: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
7: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
1: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
0: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
7: ठीक है तो वहां चलो, अरे उन पेड़ों को काटो, चलो।
1: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
0: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
1: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
0: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
3: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहां से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
1: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
10: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत। उमंग कार्यक्रम NCERT द्वारा ये कार्यक्रम प्रायोजित था। ये आकाशवाणी हिसार है, आइए सुनते हैं कृषि संबंधी जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम किसान वाणी।

0: ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਰਾਮ।
1: ਅੰਜੂ ਬਾਣ ਆਪਣੇ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਔਰ ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ ਕਿਸਾਨ ਵਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਭਾਈਆਂ ਵੀ
0: ਰਾਮ ਰਾਮ। ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ ਕਿਸਾਨ ਵਾਣੀ ਕੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਏਵਂ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲਯ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਾਈ, ਆਜ ਕਿਸਾਨ ਵਾਣੀ ਕੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਜ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਤਾਓਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਧਾਨ ਕੀ ਨਰਸਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੋ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੇ ਲੈ ਸਕੇ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਓਂ ਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਕੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
1: ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਇਸਮੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ जब आपने नर्सरी तैयार करनी है तो पहले तो इसमें बीज का आप ध्यान कर लेंगे, 6-8 किलो बीज की आपने इसमें जरूरत पड़ेगी
0: जी।
1: और जब आप इसमें तैयार करोगे तो इसमें टाइम आपका 20-25 दिन लग जाएगा, जिसमें यह रुपाई खातर तैयार हो जाएगी
0: जी। और धान की नर्सरी तैयार करने की जो वैज्ञानिक तकनीक है उस पर आज जब आप बातचीत करेंगे, इसमें आपने एक तो समय का टाइम का सही चुनाव करना पड़ेगा और भूमि यानी कि जमीन भी इस प्रकार की होनी चाहिए ताकि आपकी फसल पर बीमारियों का प्रकोप ना हो। और क्योंकि सही भूमि, सही समय, सही बीज और सही तकनीक का इस्तेमाल जो किसान भाई करेंगे, जिदे आप खेती को एक लाभदायक व्यवसाय का रूप दे सके हैं। जय टीम की आप बात करा राजेंद्र भाई, तो नर्सरी तैयार करने का जो सही समय है वो मई और जून का महीना माना जा है
1: जी।
0: और इसलिए जमीन की जब आप बात करा तो जमीन दोमट हो, समतल हो और उपजाऊ हो जहां तक हो सके, और ऐसी जगह होनी चाहिए जहां धूप यानी कि घाम पर्याप्त मात्रा में आंदा हो और पानी की जो निकासी है वो भी आसानी से करी जा सके। और खेत को अच्छी तरह से जोतकर इस प्रकार तय यानी कि समतल करके भुरभुरा बना ले और पानी की निकासी खातर एक तय 1.5 मीटर चौड़ी और लंबी क्यारियां यानी कि बेड बनाए और दो क्यारियों के बीच की जो बीच में 15-20 सेंटीमीटर की नाली अवश्य बना दे।
1: हाँ, ताकि उसका पानी की निकासी में दिक्कत ना आए
0: जी।
1: और एक चीज का ध्यान कर लें कि भी आप बुआई से पहले जो है वो बीज उपचार जरूर कर लें ताकि जो है वो फंगस की बीमारी ना आवे और सारी फसल जो आपकी वो सुरक्षित रहे। इसके उपचार की बात करें तो 10 लीटर पानी में 1 किलो नमक डाल के उसका घोल बना लें और फिर उस घोल में जो है ना वो धान के बीज घेर लें, और जब उसमें आप बीज घेरो तो जो बीज ऊपर आ जाए तो जाहिर सी बात है कि वो बीज ठीक नहीं, वो हल्का बीज है, उन आप काट दें, और जो पानी नीचे, पानी भी नीचे बैठे रहेगा बीज, उनमें फिर पानी तो धोकर उन्हें बाहर काट लें।
0: वो भी स्वस्थ है,
1: वो स्वस्थ है, इसका मतलब जो पानी में नीचे है
0: जी।
1: तो उसमें काम करें कि बायोस्टीन जो है 2 ग्राम वो ले लें प्रति किलो बीज के हिसाब से, 2 ग्राम बायोस्टीन लेके उसका बीज उपचार कर लें ताकि किसी डाल की बीमारी ना हो
0: जी। और बीज का फिर जब उपचारित बीजान 24 घंटे तक पानी में भेगी रखे और उसके बाद पानी निकाल कर बीजों को बोरी में बांध के किसी हवादार जगह पर जहाँ हवा लगती हो 2 दिन खातर सुखा दें, 12-24 घंटे टांगे दें, उन बोरी में बांध के लटका दें ताकि बीजों को अच्छे से अंकुरित हो सके। जैसे कि आप नुकदे हैं आजकल स्वास्थ्य के लिए जागरूकता बढ़ रही है लोगों की, अनुकह भाई हमने तो स्प्राउट्स खाए हैं यानी कि अंकुरित अनाज खाया खाना चाहिए नाश्ते में, डॉक्टर भी कम है, हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया हुआ है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से अंकुरित अनाज अपनी हेल्थ के लिए बढ़िया है, वैसे ही फसल के लिए अंकुरित बीजों का प्रयोग जरूर करें किसान भाई।
1: बिल्कुल, देखो अंजुबान, ये इसमें कोई शक नहीं है कि एक किसी भी बीज की बात करें, मान लिया कि वो सब्जियों का भी कोई सा बीज है, मतलब जिस तरह बीज जो कर रहा हो, मान ली भिंडी की बात करें, तो अगर उसका जमाव आपने ठीक तरीके से करना है तो उसकी सीधी बुआई की बजाय ना उसमें कई बार ये प्रयोग करके देखेगा अपन, जब उसने एक रात भिगो दिया ना
0: जी,
1: तो फिर वो मान ली 12 दिन में उसका जमन का टाइम है, तो आपके 1 हफ्ते में उसका जमाव ठीक हो जाएगा, जर्मिनेशन ठीक होगा उसका।
0: इसका मन तो एक कारण और भी लगा राजेंद्र भाई, आपने शुरू में कहा था कि जो बीज हड़का होगा वो ऊपर आ जाएगा, और जब आप जो इस तरह भिगो की और उपचारित करके नहीं बिजाई करेंगे तो वो जो हड़का बीज है वो भी बह जाओगा।
1: बिल्कुल,
0: तो किल्ले में किते किते फसल जामे आओगी, किते रह जाएगी, तो उस समस्या से भी किसान भाइयों को निजात मिल जाएगी। और जो बुआई का तरीका है
1: जी,
0: वो एक तो बुआई शाम के समय करें, सांझ न करें, ताकि थोड़ा सा जो समय का ध्यान किसान भाई रखेंगे तो ठीक रहेगा। और दोपहर में पानी गर्म होने से बीज खराब हो सका है, इसीलिए शाम की बिजाई जो है वो किसान भाइयों को सिफारिश करी गई है। और अंकुरित बीजों को क्यारियों में एक सार बिखेर दे ताकि नू क्या करें, किते किते तो अड़वी है फसल और किते किते गहरी है, सैंगनी है, तो वो भी नहीं रहोगी। एक सार अगर बिखेरेंगे तो सारे किल्ले में जो आपका पूरे खेत में एक सार एक जैसी उपज पैदा होगी।
1: बिल्कुल, देखो अंजुबान, ये भयन बार बार कहते रहे हैं कि खेत की तैयारी का महत्व सिर्फ इसलिए है कि जो शुरुआती दौर में अगर आप नुकसान खा गए ना तो फिर आगे भी नुकसान होने की संभावना हो जाएगी। जय खेत और वो क्यारी जो आपकी समतल है तो हम कहते रहे कि भी देखो उस खातर मान ले आपने सबसे अच्छा साधन तो यो है जो आपने उपलब्ध हो जाए तो कंप्यूटर की गोड़ी आप लगवा लें ताकि खेत ऊंचा नीचा ना रहे, क्योंकि उसमें अंजुबान होगा कि कि जितनी चरे जाएगा वो पानी का भरा हो जाएगा, ज्यादा पानी जहाँ खड़ा रह गया फिर भी वो जमाव जो है वो बीज का ठीक नहीं होगा, और जो ऊंचे पर रह गया जित पानी ठीक से नहीं पहुंचाया, खाद ठीक से नहीं पहुंचाया, तो ओड़ उस फसल में पीड़ापन आ जाएगा, वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए भैया यूँ कहें कि भाई पहला खेत में अच्छी डालते तैयार करके और फिर आप उसकी बिजाई करें,
0: समतल बना ले।
1: हाँ बिल्कुल। और आपने बताया था कि देखो शाम में ना हर फसल जो बुआई की अगर हम बात करें, ना सिर्फ इस धान की हम बात कर रहे हैं कि कोई भी फसल आप बो रहे हैं तो कोशिश यह करें कि शाम के समय में बोएं, ताकि क्योंकि फिर आगे रात आने वाली है उसमें नमी रह जाएगी, बीज में जो है वो नुकसान नहीं होगा। मान ली सवेर के टाइम में आपने बो दिया और दिन में जो है आपका 35-40 डिग्री आम हो जाए गर्मी में, तो फिर वो जो है ना वो पूरा जमाव ठीक नहीं होगा। इसलिए कोशिश यह करें कि शाम टाइम में बिजाई करें,
0: और बिजाई के समय जो है क्यारियों में हल्का पानी जरूर होना चाहिए, नमी होनी चाहिए उसके अंदर, और पानी ठहरा हुआ भी नहीं होना चाहिए। और खाद का प्रबंधन की जहां तक बात है, खाद का प्रयोग करते वक्त क्यारियों में प्रति 400 वर्ग फीट जगह के लिए लगभग 1 से 2 किलो DAP और 1 किलो सिंगल सुपर फास्फोट और 500 ग्राम यूरिया और 200 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल। और इसमें जब आपने लग गया कि वे कीते फिर भी फसल में जो है जमाव के बाद पीड़ापन रह गया है, तो यूरिया या जिंक सल्फेट का आप छिड़काव उसमें कर सके हैं। बस इस चीज का आप ध्यान रख लें कि भाई जो क्यारी आपने बना रखी है उनमें आप जो है ना सूखापन ना आने दें, नमी बना के रखें, ना तो पानी खड़ा होने दें, लेकिन आप उसमें रोज देखते रहें कि जब भी थोड़ा सा पानी की जरूरत पड़े तो हल्का सा पानी फेर दें, नमी उसमें बनी रहनी चाहिए।
0: या जिद्दे बेरा पटे किसान भैया ने जब आप अपनी फसल पर लगातार निगरानी रखोगे।
1: जी। और अंजुवन देखो बतलाती कई बार होगी है, बातचीत तो जारी रखेंगे, पहला मनोरंजन भैया का करा दें तो सुना।

अरे एक

0: राजेंद्र भाई या तो भैया ने सुनी रागनी, और इस तरह पहले आप बातचीत कर रहे थे कि धान की नर्सरी किस प्रकार से तैयार की जा सके हैं। देखो, बहुत सारी तकनीक ईजाद करी जा रही हैं किसान भाइयों के लिए, कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा। जितने भी अनुसंधान संस्थान हैं हमारे देश में खेती से संबंधित, वो सारे दिन प्रतिदिन इसी में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से किसान भाइयों की आर्थिक जो आमदनी है वो बढ़ाई जाए। और उसका एक कारण ये भी है कि लागत कम करी जा सके है। लागत कम करने के भी बहुत सारे तरीके किसान भाइयों को के पास तक पहुंचाए जा रहे हैं, चाहे वो रेडियो के माध्यम से हो, चाहे वो दूरदर्शन के माध्यम से हो, चाहे वो कृषि पत्रिकाएं हैं, बहुत सारी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, बहुत सारे ऐसे साधन हैं, स्रोत हैं, जिनके द्वारा किसान भाइयों तक ये जानकारियां पहुंचाई जा रही हैं। इब ज़रूरत इस बात की है राजेंद्र भाई कि किसान भाई उस जानकारी का लाभ किस प्रकार तक उठावा है। पहली बात तो वो उस जानकारी तक पहुँच पा रहे हैं या नहीं पहुँच पा रहे हैं।
1: देखो अंजुमान, यही बात है कि बहुत सारी योजनाएं जो है ना वो सरकार चला रहे हैं, और कोशिश यही करे कि भी किसान भाई तई वो सारी योजनाएं पहुंच जाएं। जो भी आविष्कार होया है वो लैब तेर सीधा खेत में पहुंचे, तब जाके बात बने।
0: जी
1: लेकिन कई बार आपने देखो सही कहा, साधन तो बहुत हैं, लेकिन आज भी जो है ना बहुत से हमारे रिमोट एरिया ऐसे हैं या हमारे किसान भाई जो है वो सारे एडवांस नहीं है, तो वो सारी तकनीक उन तक पहुँच नहीं पाती। तो भाई न्यू कहेंगे कि आप जो है किसी भी तरीके के ग्रुप बना के या पंचायत के माध्यम से, या फिर आप जो है हमारी यूनिवर्सिटी तय जुड़ के, या फिर और बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो भाई सारे जो खेती पर ही काम कर रहे हैं, उनका काम ही खेती करना है,
0: जी
1: तो वो सारी जानकारी आप जुटा के रखें। क्योंकि देखो अंजुगण, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, मतलब ना सिर्फ परंपरागत खेती की बात करना, चाहे उसके साथ और भी बहुत सारे धंधे हैं, ये सब्जी की खेती है, फूलों की खेती है,
0: कृषि
1: तो
0: पर आधारित बहुत सारे
1: बहुत
0: व्यवसाय
1: सारी
0: हैं।
1: चीजें हैं जिसमें अपना फालतू
0: व्यवसाय
1: खर्चा नहीं
0: की
1: करना।
0: जब आप बात करें तो किसान भाई ने भी थोड़ी सी अपनी सोच को व्यवसायिक रूप देना पड़ेगा। जितने जो कर सारे दुकानदार सवेरे तो लेकर रात तक न्यू जुटे रहे हैं कि किस प्रकार मुनाफा बढ़ाया जाए, तड़का 2 पैसे और ज़्यादा कुकर कमाऊं। तो इसी सोच के साथ किसान भाइयों ने आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज जो है ज़्यादा काम मेहनत का नहीं है, शरीर का नहीं, दिमाग का है राजेंद्र
1: दिमाग
0: भाई।
1: का बिल्कुल
0: तो दिमागी तौर पर किसान भाइयों ने तैयार होना पड़ेगा। और मशीनीकरण का ज़माना है राजेंद्र भाई, कोई हाथ का काम तो आजकल रहा नहीं, चाहे वो किसान है, चाहे कोई भी काम है, चाहे वो गृहिणी है, सारे काम मशीनों पर आधारित हैं। तो खेती इतनी मुश्किल नहीं रही जो कर पहला गया कर दे कि सारा मतलब सारी जिंदगी लगे रहे काम में काम कर रहा है, काम में काम कर रहा है। ये मानसिक जो मेहनत है उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। और कृषि यंत्र इसी से कृषि यंत्र आ रहे हैं, इसी से विधि आ रही है, चाहे वो सब्जियों की हो, फूलों की खेती है, फलों की खेती है, और चाहे वो बाजारीकरण की जानकारी है, वो भी आप घर बैठे बैठे ये जो आजकल जो स्मार्टफोन जिसने कहा है उसके माध्यम से आप किसी भी चीज़ की, किसी भी तकनीक की, किसी भी विधि की जानकारी घर बैठे ले सकें और उसने अपने खेत पर इस्तेमाल कर सकें।
1: देखो भाई, किसान भाइयों ने कहें कि जय आपने खेती को जो है एक बिजनेस के रूप में, व्यवसाय के रूप में करना है, तो शुरू से लेकर आखिरी तई आपने, जब तई वो जो है आपको मुनाफा आपकी गोद में नहीं गल जाना ना, इतना आपने जागरूकता की जरूरत है। जड़े भी आप थोड़े से चुके, मान लिया खेत की तैयारी ठीक तो नहीं हुई, या बीज उपचार नहीं हुआ, या फिर आपने उसकी मार्केट कड़े करनी है, किस डालते हैं मतलब वो पहुँचाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब देखो अंजुबान, ऐसा नहीं है कि मान ली मोटी तौर पर बात करें, आज मान ली गेहूँ की फसल निकली, वह ट्राली में गाली आप ले गई हूँ कहीं ना, उसने आपकी मान ली ठीक से सफाई नहीं हो रही, या उसमें और कोई उसकी ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है, आपने इसी बोरिया में भर दी गई जिसमें भी मान लिया उसमें सुरसी कीड़ा या जो भी लाग रहा हो पुराने बारदाने में भर दिया, या जड़ा आपने स्टोर करनी है वो कितने नमी की जगह पर मान लिया फसल आपने स्टोर कर दी, नमी आ जाएगी तो वह फसल ख़राब हो जाएगी।
0: जी
1: कहने का मतलब मोटे तौर पर यह है कि भाई जब तक आप जो है ना आखिरी तक, शुरू से लेकर आखिरी तक, अगर आपने इसको बिजनेस के तरीके से देखना है, तो हर कदम पर आपने जागरूक रहने की जरूरत पड़ेगी।
0: और आपने ये मंडीकरण की बात कही है, जैसे आपने कहा कि गेहूं की फसल निकली, कोई भी फसल निकले तो उसकी मंडी में सीधी ले जाने की बजाय आप ये देखें कि मंडी में पहले ही उसकी सप्लाई कितनी है, उसकी पूर्ति कितनी है। अगर पूर्ति पहले से ही ज़्यादा है, आप और

0: जाले जाके उसने थोड़े गिरण लग रहे मंडी में, तो फिर उसकी कीमत तो घटेगी। तो
1: बिल्कुल
0: आप इंतज़ार करें, उसने स्टोर करें, क्योंकि स्टोरेज की भी सुविधा है सरकार की तरफ से, वो भी FPOs बनाए हुए हैं किसान भाइयों के, जो फार्मर प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं बहुत
1: जी
0: जगह जगह पर हैं, और उस पर भी बहुत सारी सब्सिडी सरकार देवे है। तो उस पर कृषि यंत्र भी आप ले सके हैं, आप वेयर हाउसिंग की सुविधा भी आप ले सके हैं। तो जब वहाँ अपने उत्पाद ने अपनी फसल ने स्टोर करें और ये देखा है कि मंडी में जो पूर्ति है वो कितनी होगी है, अगर मांग बढ़ रही है तो उस टाइम आप अपनी फसल नौड़े लेके जाओ ताकि अच्छा दाम आपको मिले। ये थोड़ी सी तकनीकी तौर पर आपने सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा आपने जो है उसका एनालिसिस करना पड़ेगा मंडी का, और उस हिसाब से कई बार देखो किसान भाइयों को, राजेंद्र भाई की बहुत बढ़िया फसल हुई है, लेकिन फिर जब उसकी,
1: भाव नहीं मिलता फिर।
0: हाँ जब उसकी मुनाफे की बात करें तो मुनाफा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि फिर एक के ओढ़ में चाल पड़े नहीं सारे किसान भाई, एक भाई ने एक फसल लगा रखी, दूसरा भी वही ला दे, तीसरा भी वही ला दे, तो फिर सारे इलाके में एक के फसल जाओगी तो पूर्ति बढ़ जाएगी वह।
1: बिल्कुल, तो देखो भाई हर कदम पर आपने जागरूक रहने की जरूरत पड़ेगी और बातचीत जारी रखेंगे। एक बार मनोरंजन फिरता आपका करा दें तो सुनाइए रागनी।

0: यार राजेंद्र भाई, फिर सुनी भैया ने रागनी और बातचीत अच्छे दौर पर अपनी चल रही थी और जी तो नहीं कर रहा, लेकिन समय की मांग है कि कार्यक्रम का समय समाप्त होने लग रहा है। थोड़ी देर में भैया आते हैं, फिर मुलाकात करांगे कार्यक्रम
1: मारे
0: मारे
1: गांव
0: गांव
1: में
0: में।

FM 102.3 MHz पर श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मारे गांव।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से ना सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: राजेंद्र भाई, फिर तो स्वागत करा हाँ सारे बन भैया का मारे गांव में।
3: बिल्कुल, देखो अंजुमन मारे गांव में पहुंच गए हैं भैया, तो सारी बातचीत करेंगे। और मौसम की बात करें तो देखो अंजुमन, अभी खासकर 2-3 दिन तो देखा जाए तो तापमान जो है एकदम तो इतना बढ़ गया है कि सेध ना रहे
2: जी।
3: तो भैया न्यू कहें कि भी देखो इस मौसम में जो है ना, देखो वैसे तो मई का आखिरी टाइम आने लग रहा है, तो वही जाहिर सी बात है कि धूप भी चाहिए, गर्मी भी चाहिए,
2: लू भी चाहिए
3: क्योंकि सारी चीज जरूरी है, खेती बाड़ी भी करनी है, या फिर भी मतलब उनको आ करना भी कुदरत ने तो अपना बैलेंस बना के रखना है।
2: राजेंद्र भाई देखो, टाइम पर तो सारे काम होंगे, गर्मी का टाइम होगा तो गर्मी भी पड़ेगी, सर्दियां में सर्दी भी पड़ेगी, पाला भी पड़ेगा, बूंद भी आऊंगी, बारिश भी होगी, ये तो प्राकृतिक परिवर्तन है जो समय समय पर जैसे ही मोड आओगा उसा ही परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन बात आड़ यह है कि जैसे ही मौसम में बदलाव आवे, चाहे वो आपने कहा कि तापमान में बढ़ोतरी हो, कमी हो, उसे हिसाब से अपना प्रबंधन कर लेना चाहिए, चाहे वो खेती बाड़ी है, चाहे वो घर गृहस्थी है, चाहे वो डांगर पशु की देखभाल करना है। तो ईब जैसे आपने बात कहा कि मई की आखिरी आ गई तो तापमान तो बढ़ेगा जब तक बारिश नहीं आती, तो और अब की बार तो चेतावनी भी आई हुई है कि टेम्परेचर जो है 47-48 तक भी पहुंच सकता है,
3: ज्यादा जाने की संभावना है। और शंका ये भी जाहिर करी गई है कि भाई बारिश भी लेट हो सके,
2: लेट हो सके है। और पिछली बार जैसे बारिश बहुत थी तो इबकाल बारिश की जो कम बताई गई है।
3: तो देखो अंजुमन, बात यह है कि भाई अनु कहें कि भी ये जो मौसमी चल रहा है तो कोशिश करें इसमें कि भी देखो जरूरी काम हो तो आपने घर से बाहर भी निकलना है। मान लिया चाहे खेती का काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई नौकरी कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो एक तो इस चीज का ध्यान कर लें कि ये जो बीच वाले जो घंटे हैं ना, 12-4 की अगर आप बात करें तो इसमें जो है ना तापमान ये ज्यादा से आ रहा है। तो जिन भैया ने जो मान लीजिए जिसने ऑफिस आना है सवेरे, भाई देखो उसकी तो टाइम फिक्स है, उसने आना ही पड़ेगा। जो दूसरे हमारे भाई हैं जिस तरह खेती कर रहे हैं या और भी हमारे जो मजदूर भाई हैं, तो आप कोशिश करें कि ये जो वक्त है 4 घंटे का, इसमें थोड़ा सा ये कोशिश कर लें कि जो मेहनत या जो 4 घंटा है इसमें थोड़ी कम

0: करके आप सवेरे से हम थोड़ा ज्यादा काम कर लें, तो इस टाइम का थोड़ा सा ध्यान रख लें, इसमें घर से बाहर ना निकलें, कोशिश यह करें।
1: और इसने इतना अड़का में भी लेने की जरूरत को नहीं, राजेंद्र भाई कई बार नुका हो गर्मी तो नुए पड़िया करे है, लू लगना जो है एक जानलेवा स्थिति भी उसका है, इसमें ज्यादा गर्मी की वजह से शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाए है और उसको कंट्रोल यानी कि नियंत्रण करने की जरूरत है, और इसे में जो है चक्कर आना, बेहोश हो जाना, आंखों से धुंधला दिखना और इस तरह के जो है लक्षण अगर आपने दिखाई दें तो इसका मतलब कि आपके ऊपर लू का प्रभाव है, और लू लगने से जो है जो रक्त प्रवाह है यानी कि ब्लड का जो खून का जो सर्कुलेशन है वो अपने शरीर में कम हो जाता है और जो महत्वपूर्ण जो अंग है हमारे शरीर को उनको नुकसान पहुंच गया है। तो लू के जो लक्षण आपने दिखे हैं तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। और
0: देखो अंशुमान आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई कई बार क्या हो कि भी मान ले शरीर का तापमान बढ़ गया, जिस तरह खासकर आप स्कूलों में भी देखें कई बार मान ले प्रेयर का टाइम है प्रार्थना में कई बार कम चक्कर आ जाए, तो उसका भी कारण ये रहे कि भी तापमान बढ़ गया, बालक उसने सहन नहीं कर पाया, तो मतलब इस टाइप की अगर कोई घटना हो जाए ना तो आप उसने यूं ना सोचें कि भी हम वैसे ही चक्कर आ गया हो, तो आप डॉक्टरी सलाह जरूर ले लें उस मामले में। और देखो एक बात हम जो है ना हमारे बाणाते खास कर यूं कहेंगे कि अंजुबान एक देखा गया कि जब खाली पेट इस तरह मौसम है ना घर तो आपको तीन आलिंग
1: बच्चा जब भी स्कूल में जाओ कॉलेज जाओ चाहे कोई बड़ा भी है घर तक बाहर जाओ तो इस मौसम में जब लू का प्रकोप बढ़ने की संभावना है तो खाली पेट ना रहे। और ये जो प्रार्थना आपने जिक्र कराया ये तो बोते ज्यादा देखने में आओगा ही बाग आ गए, खैर अब तो कुछ एक दिनों में स्कूलों की छुट्टियां पड़ जाएंगी और स्कूलों की छुट्टियां भी इसीलिए ये प्रावधान है गर्मियों में कि तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए है तो फिर ताकि इस तरह की समस्या बच्चों के साथ ना हो, क्योंकि गर्मी हो सर्दी हो बालक नर बुढ़ गणी से दिया करें।
0: हाँ भाई देखो कौन क्या करें कि भाई बोला जब गर्मी ठीक ठाक लिकट जाए तो भाई फिर अगले साल की अपन सोच लिया ना बुढ़ा बुढ़ी है हमारे वो बैठे रहेंगे, या फिर कई बार मैं भी कह दिया बोला यो ज्यादा तो ठीक काट देना तो गर्मी तो बोला फिर भी ले काटी जा सके। तो देखो बालक है चाहे बूढ़े उनका विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। और अंजुमान एक बात भाई और कहेंगे कि भी देखो ना सिर्फ अपना और बालका का ध्यान रखें, ये मौसम ऐसा है कि अपने पशुओं का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि इसमें है ना अंजुमान एक बहुत बड़ी समस्या है कि भी मान लिया पानी की कमी जो शरीर में हो जाए, जगह भी पानी की कमी होगी तो देखो कोई शक नहीं है कि नुक उनका करें कमजोरी जड़े भी शरीर में आओगी ना तो बीमारी जल्दी घर करेगी। तो अपने पशुओं का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें, उसने जो है ना टाइम टाइम पर पानी दिखाते रहे। कई बार के वहां जो मान ले किसान भाई कह करें कि मान लिया सवेरे पशु ने पानी पिया दिया फिर नुकंद एक बार बोले सांझ के पिया देंगे, ऐसा ना करें, कम से कम भी उसने दिन में चार बार तो पानी जरूर दिखाओ। कई बार के वहां जुबान मान लिया उसने भाई जोड़ में ले गए मैं इसने या पानी अपने घर पर पिया दिया उसके भी उस टाइम उसने प्यास ना लग रही हो तो मुंह ना सोचें कि बिना प्यास कौन थी तो दोबारा थोड़ा ही दिखाने की जरूरत को नहीं, कोशिश करें कि दिन में कम से कम भी चार बार पानी जरूर दिखावें। और उसके गले गले एक चीज का ध्यान और कर लें कि भाई आप जो है ना पानी उसने थोड़ा सा ताजा पियावें, क्योंकि कई बार के अंजुबान जो पानी अपना स्टोर कर ही रखे है ना उसमें भी थोड़े से जीव जंतु इसी पैदा हो जाए कि वो पशु ने भी नुकसान करेंगे फिर और इनडायरेक्ट वो अपन भी नुकसान करेंगे। तो कोशिश यह करें कि ताजा पानी पशुओं को पिलाएं और दिन में तीन चार बार दिखा लें और उसका नुहान धुआन का प्रबंध भी, क्योंकि भाई तापमान देखो इतना है, दिन में कोशिश यह करें कि एक बार सवेरे नुहा दिया तो जब आपने टेम मिल रहे हैं तो उसने एक बार सांझ ने फिर नुहा दें
1: जी। और एक चीज और भी है कि अपना जो जीवन शैली है इस प्रकार की होगी है, क्योंकि सुविधाएं हर आदमी के पास है, जैसे कार में भी एसी है घर भी एसी है तो इस ठंडी जगह से एकदम से गर्म जगह पर ना जावा, बाहर का टेम्परेचर बहुत है और आपका घर में जो है वो तापमान कम है तो ये भी बहुत गंभीर समस्या आपके लिए पैदा कर सकता है कि एकदम से ठंडे मतलब कम तापमान से एकदम ऊंचे तापमान पर आप पहुंचे हैं। कई बार जो बीमारी है वो इसीलिए हो जाए कि गाड़ी तो एकदम तो बाहर निकले आप या घर तो बाहर निकले और तुरंत एक सिर ढक के जरूर चल रहे।
0: बिल्कुल देखो अगर आप गाड़ी में तो एसी चला रखे बाहर निकले तो भाई अपना कोई अंगोछा गमछा हिसाब गेलियां जरूर रखें और कोशिश यह करें कि जितना आपने उतरना हो तो उस दो तीन मिनट पहला गाड़ी बंद कर दें ताकि आप जो है ऊंचे तापमान में जाना तो नुकसान ना हो। अंजुबान बातचीत जारी रखेंगे भैया ने के रागनी सुना दें
1: जी।
2: किसी किसी के नरवाल लेंगे भाई और काम करें

अपना कोई नाची ना बख्त पड़िए पे जो मुंह मोड़े ओ अपना कोई ये साची ना इब कौन से मुंह ते नोटे से रे या शर्म तने भी आती ना कोई अगड़ पड़ोसने कहे मरवण ने हे ते

जा के सुजी आर तने और ढाल की बात करें और यही कसुती चाल तने उड़ मन मन खड़ी लखावेगी जे करी बात की ताल तने कह लक्ष्मी चंदी इतने जीवेंगे रोज में।

0: राजेंद्र भैया तो भैया ने सुनी रागनी और आपा गर्मी के मौसम की बातचीत कर रहे थे। गर्मी में तो लू लगना एक हर साल आम सी बात है, लेकिन उस लू से बचाना बहुत ज़रूरी है। आपने ध्यान इस बात का देना है कि अगर लू का प्रकोप आपके आसपास किसी घर में हो गया, अड़ोस पड़ोस में हो गया, या आपके किसी मित्र दोस्त को हो गया, तो आप किस प्रकार के उपचार उसमें कर सकें। सबसे पहला तो आप उसके शरीर का जो तापमान है उसको कम करने की कोशिश करें, ठंडी पट्टियाँ भी आप उसमें रख सकते हैं, बार बार उसको पानी पिलाएं, ORS का घोल या नींबू का पानी जरूर दें। लेकिन फिर भी अगर उसी के लक्षण कम नहीं हुए, उल्टी आ रही है, जी मचला रहा है, तो आप चिकित्सा के लिए ज़रूर संपर्क करें।
1: बिल्कुल, देखो पहले तो कोशिश यह कर लें कि भाई जिसने आपने लू लागे कि लू लागी, तो एक तो उसने आदमी ने छाया में लिटा दें, जब बीस दाल की कोई घटना हो तो।
0: जी
1: आपने बिल्कुल सही कहा कि गीला कपड़ा करके उसके शरीर ना पहुंच सकें, उसने मतलब पानी ज्यादा ना नुहाने जिसकी कोई स्थिति ना हो, गीला कपड़ा कर लें और सारे शरीर ने पहुंच दे।
0: और
1: तब
0: आवादार जगह में लिटाएं उसको
1: जी बिल्कुल, और फिर
0: जहां।
1: भी जब आपने इच्छा लग गया तो भी देख डॉक्टर ने जरूर दिखा लें, नू ना सोचें कि ये कोई आम घटना नहीं है। देखा गया है कि लू लगने से मौत तक भी हो सके।
0: जी,
1: और
0: और गंभीर समस्या सामने आ सके है इस तरह। और एक चीज और है राजेंद्र भाई, मान लो गर्मी लग गई, उसके लगे जब तो उपचार करना ही करना है, लेकिन ना लागे उसके लिए सावधानी बरतनी है आपने, कि एक तो खान पीन का ज़रूर ध्यान रखें
1: विशेष तौर पर
0: गर्मियों के
1: ध्यान
0: मौसम
1: रखना।
0: में। एक न्यू है, बासी या रात का खाना ना खाएं, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाए हैं और गर्मी में खाना जल्दी ख़राब होने की संभावना हो है। कोई भी खाना आप इतना ही बनावें कि कई बार क्या हुआ है कि फ्रिज में धरे रखा है नुका है ना, फ्रिज में ख़राब होने होता, ख़राब तो नहीं होता लेकिन उसकी तासीर तो बिगड़ जाए है।
1: देखो अंजुबान, इसमें कोई शक नहीं है कि इसे केस देखे गए हैं कि भी मान लिया आपने कोई सब्जी फ्रीज में रख दी और आपने उसको देर से यूज कराया, तो आपने सोच लें इसका कुछ नहीं बिगड़ा हुआ फ्रिज में थी। लेकिन ये तो जाहिर सी बात है कि जो इतने ठंडे टेम्परेचर में, एक बार तो पहले आपने बनाई वो इतने हाई तापमान पर रही, फिर आपने उसको फ्रिज में रख दिया तो बिल्कुल ठंडी होगी, और
0: जी
1: फिर से गर्म करोगे तो इसमें कोई शक नहीं कि उसमें बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ जाए जो शरीर का फायदा करने के बजाय नुकसान करें।
0: और उसके पौष्टिक जो तत्व हैं उसमें वे तो खत्म हो गए हैं, उसके है कोई सा

0: बैक्टीरिया भी उसमें आ जाए जो आपके शरीर ने नुकसान कर सके हैं। तो जितना भी आपको जरूरत है आवश्यकता के अनुसार ही खाना बनाओ है, और इस मौसम में खासकर जब तापमान बहुत ज्यादा आगे भी आने वाले समय में बढ़ने की संभावना है, तो आप ताजा बनाएं और ताजा खाएं, और पानी की मात्रा को ज्यादा रखें, चाहे वो पशु हो, चाहे वो बालक हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे जवान भी हो, पानी बार बार आप पानी का उपयोग करें लें, ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो और लू जैसी गंभीर समस्या का सामना आपको ना करना पड़े।
1: और कोशिश करें भाई कि देखो बहुत जरूरी हो तो आप लिख लें, नहीं तो जब आपने नू लगे कोई कोई ज्यादा जरूरी काम नहीं है तो सुबह से हम अपना काम निपटा के आप घर से बाहर कम से कम जाएं, और जब बाहर भी लिख रहे हैं तो भाई अपना सिर पर कपड़ा ढक के रखें, खासकर अगर सामने तय लू लगन की जो बात है ना, मान लिया आपने कान नाक ये ढक रखे हैं तो फिर कम संभावना, क्योंकि शरीर के जो नाजुक अंग है ना उनमें थोड़ा सा जल्दी चपेट में आवा फिर शरीर, तो
0: जी
1: कोशिश यह करें। और भाई पानी की उपलब्धता की बात करें तो देखो खासकर बच्चों की बात करें तो स्कूल में भेजें तो आप पानी की बोतल गीलियां जरूर भेजें, मान लिया प्रबंध आ गया पानी का भी है, घर पे भी पी की चल रहे हैं, फिर भी मान लिया देखो हम जो बात करें कि स्कूल का मान लिया रन आपका बस में है वैन में है आधा घंटा है,
0: जी
1: तो इतनी गर्म हवाएं हैं तो बीच में आपने प्यास लग गई तो भाई कोशिश यह करें हर बालक के लिए आप जो पानी की बोतल भेज दें, और सिर्फ ना बालक आप भी जब बाहर निकले आपने नू लागे कि कितने सफर करना है तो पानी आप गीला लेके चल रहे हैं कि जित भी आपने थोड़ी सी गर्मी महसूस हो या नू लागे कि भी कोई नुकसान होने की संभावना है तो पानी आप ज्यादा से ज्यादा पी के रखें।
0: और इसी तरह का प्रबंधन अपने पशुओं के लिए ज़रूर करें, क्योंकि उनमें भी इस मौसम में लू लगने की संभावना बढ़ जाए है और पानी की मात्रा कम हो जाए उनके शरीर में, तो पशु बीमारी की चपेट में जल्दी आएगा। और पानी का प्रबंध, जैसे नहलाने की भी आपने बात कही, सुबह शाम कोशिश करें पशु ने नहलाने की, और पानी तो 3-4 बार पिलावें। पहला जो कुर दो टेम बंधा हुआ था तो वो तो जब मौसम ठीक हो जब तो ठीक है, लेकिन गर्मियाँ में जो कुरापा ने बार बार तेस लागे है, पशु ने भी लागे है, तो उसका भी ध्यान रखें। पानी की आपने बात कही राजेंद्र भाई, देखो गर्मियों के मौसम में पानी की उपलब्धता में भी कमी आवे है, तो थोड़ा सा देख के बरतें,
1: हाँ बिल्कुल
0: क्योंकि
1: देखो भाई वो
0: पहले से
1: तो
0: ही आप ये ध्यान रखें। कई बार जो है हमने सोचा मारे तो पानी आवे, हमारी तो टंकी भरी है, बरत दो,
1: हाँ नू ना
0: तो
1: बरता
0: इस
1: मतलब
0: तरह
1: फालतू में ना
0: का।
1: बहाओ उसमें, कई बार
0: हाँ
1: देखा गया आप गाड़ी घोड़ा भी धो रहे हो उसे थे या फिर आपने कोई साधन पे वो मतलब इस डाल की वेस्टेज ना करें, और बनाने भी खास कर यूं कहें कि जब आपका जितने तक काम चलता हो ना उतना स्टोर करके रखें, बाकी आप अपने उसने टूटी ना या जो आपके सप्लाई आ रही है उसने बंद कर दें। और गर्मियों की जो आप बात कर रहे थे ना जो पानी, इसमें एक चीज़ का थोड़ा सा और ध्यान कर लें, घर में जो हवा का जो वेंटिलेशन है ना मतलब थोड़ा सा वो बना के रखें भाई,
0: जी
1: उसने बिल्कुल बंद भी ना रखें, कोई घर में
0: आपने
1: आप
0: मान
1: पर्दे लगा
0: लो
1: लें।
0: एसी वेसी भी लगा रखा है, तो एक खिड़की रोशनदान ऐसा रखें जहां से बाहर की हवा आ जा सके।
1: हाँ थोड़ी सी ताजगी बनी रहे,
0: हाँ ताजगी
1: और
0: बनी रहे।
1: कोशिश ये कर लें कि भाई जिस साइड पर मान लें धूप आ रही हो तो अब खिड़कियाँ आप पर्दे लगा लें, और देखो अंजुबान हर भाई के तो चलो पर्दे जुगाड़ना भी हो और किसी भाई का इतना सिस्टम नहीं होता है, तो फिर भी जो भाई थोड़े से गरीब तबके के हैं मिडिल क्लास की बात करें तो वो पर्दे नहीं तोड़े पल्ली पल्ली टांकी रखें, जितना सीधी हवा आ रही हो ना लू ना मतलब लागे बात ही आई
0: जी
1: सीधी, चाहे उड़े पशु हो चाहे आप खुद हो, तो इस चीज़ का बचाव कर लें। और एक चीज़ का और भी ध्यान कर लें कि भाई जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए और भाई हर भाई जो इतना सक्षम नहीं है तो वो जित साइड पे मान लिया गर्मी आ रही हो या खिड़की हो तो उस पर बोरी टांग दें, बोरी के तो हर घर में मेरे ख्याल में लगभग उपलब्ध हो जाए पल्ली हो जाए, और उसमें थोड़ा पानी छिड़क के रख लें ताकि वो टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा नीचे रह जाए।
0: जी और जल प्रबंधन का विषय फिर कहेंगे कि विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पानी सबके लिए जरूरी है। कुछ इलाके ऐसे भी हमारे देश में जहाँ पानी की बहुत कमी है, तो देख की जरूर बरतें उनने, छोटे छोटे
1: और
0: कामों में ज्यादा इस्तेमाल उसका ना करें।
1: बिल्कुल अंजुमान देखो बातचीत जारी रखेंगे, मनोरंजन भाइयों का एक बार फिर इतने करा दें तो सुना ही रागनी।

0: राजेंद्र भाई भैया ने सुनी रागनी और इसे रागनी के साथ है कार्यक्रम हमारे गांव का समय समाप्त होने लग रहा है
1: तो अपने भाई राजेंद्र दुहन
0: और अंजू दुहन को दे इजाजत सारे
1: सारा
0: बाण
1: बन
0: भैया
1: गया
0: ने राम
1: राम।
0: राम।

एफएम बैंड 102.3 MHz पर श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मारेगांव, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लोकमंच।

हरियाणवी लोकमंच कार्यक्रम सुननी है सारे बण भाइया ने आजाद भाई की राम राम। रोटी पानी खा के भाई बाट देखने लाग रहे हैं कि गीत संगीत सुनने मिल जाता कि काम धंधा करके जो लोग बागाव हैं उनकी थकावट दूर हो जा। हमारी लोक सांस्कृतिक विरासत बहुत धनाढ्य, हमारा गीत संगीत हमारी परंपराएं लोक सांस्कृतिक विरासत को जान के हम बहुत राजी होया कर रहे हैं। और भाई देखो समय का बदलाव है, बदलते समय के साथ हमारी परंपराएं भी बदलती जा रही है, हमारा गीत संगीत भी बदलता जा रहा है। एक वो टाइम था जब लोग बाग आपस में बैठ के बतलाया करते, आज भी बतलाव है। जरूरत इस बात की है कि जो नई प्योध है, नई पीढ़ी अपने दादा दादी काके तावा के पास बैठ के किस्से कहानी सुने ताकि अपने पुराने इतिहास की जानकारी उन्हें मिले। लोक सांस्कृतिक विरासत की अगर बात करें उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो छूटती जा रही हैं, अब छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन उनका भी अपना महत्व हुआ करता। जैसे ही ब्याह शादी हुआ करती उसमें सोन सामन हुआ करते, नई नवेली बहू आ करती, अंडोले बंदरवाल लेके आ करती, न्यूबेरा पाठ जा करता, इस घर में छोरा इबे ब्याह है। जहाँ तक बात इंडोले और बंदरवाल की है, बंदरवाल बालनक आग लगाई जाए और इंडोला दड़े जिया दरवाजे में बांधा जाया करता, और इंडोला बांधनी ने इंडोला बंधाई का नेग भी मिला करता, और बंदरवाल घर के दरवाजे का आगे लगाई जा करे। तो फिर आज के हरियाणवी लोकमंच कार्यक्रम में आपने विशेष कार्यक्रम सुनवाऊंगी हमारी लोक संस्कृति का प्रतीक बंदरवाल। प्रस्तुति आजाद सिंह, प्रस्तुतकर्ता श्री पवन कुमार। ये कार्यक्रम आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सके हैं।

हरियाणवी लोक जीवन में बंदरवाल का खास महत्व आ करे। घर में खुशी के मौके पे बारण आगे बांधण के लिए फूल पत्ते दूब ते बनी हुई माला को बंदनवार या बंदरवाल के नाम ते जाना जाए। बंदरवाल घर में खुशी के मौके पे संदेश वाक माला के रूप में पहचानी जाए। इससे जुड़ी हुई लोक जीवन में अनेक परंपराएं मारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आम, अशोक, पीपल।

नीम धूप फूल पत्तियां की रस्सी में बांध के घर के बालन आगे लटकाने की परंपरा का सीधा संबंध बंदरवाल से है। बंदरवार को संस्कृत में वंदनमाला भी कहा जाता है, जिसका मतलब है दरवाजे पर लगाई जाने वाली वंदनमाला। वंदनवार या बंदरवाल वह माला जो घर के दरवाजे पे खुशी के मौके पर लटकाई जाए। बंदरवाल का सीधा संबंध हरियाणवी लोक सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा है। लोक जीवन में घर में जब नई नवेली बहू आया करे तो पूरे परिवार के लिए खुशी का मौका है। इस टाइम पे बहू घर में जब पहली बार आवे तो खुशी में घर के दरवाजे पे लगाने के लिए बंदरवाल लेके आ करे, जिसको बालनाग लगा दिया जाए। ये परंपरा बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। कई जगह पे बंदनवार फूल पत्तियां कागज कपड़ा की साज सज्जा भी बनाई जाए।

बंदरवाल स्थानीय और उस जगह की संस्कृति की परिचायक होया करे। इसके साथ ही घर में सगाई, पीली चिट्ठी, लगन, बात, न्योंदा, अर्धात, रात जगा, तेल चढ़ाना, कुआ पूजन, मांडा बांधना, ब्याह, बात, बढ़ार गीत, पलकाचार, बंधनवार, बदाई, रात जगे के गीत, देवताओं के गीत, सतगड़ा, खेल के गीत, छन के गीत, बच्चे का जन्म, ब्याह, मांडे के मौके पे घर में दरवाजे पे बंदरवाल बांधने का रिवाज रहा है।

ये खास बात है कि लोक जीवन में बंदरवाल को बनाने और सजाने का काम हमारी मातृशक्ति या माँ बहने कराया करें, लोक परंपराओं को बढ़ाने में।

राजस्थान गुजरात की लोक कलात्मकता के कई रूप देखे जा सके हैं। कपड़े की कटाई गोटा पेमक फूल सितारे शीशे लाके बंदरवाड़ को बहुत सजाया जा है। लोक पारंपरिक दृष्टि से बंदरवाड़ हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोक गीता में बंदरवाड़ का बहुत जिक्र आ कर है। बंदरवाड़ बंधाई के बदले में नेक की परंपरा भी है जो कि लोक सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज के टाइम में यह परंपरा अतीत का हिस्सा बनती जा रही है।

बंदरवाड़ घर की संस्कार कला लोक परंपरा समृद्धि का द्योतक है। इसते बेरा पाट जी की वहाँ की संस्कृति कितनी धनाढ्य है। कई स्थानों पर बंदरवाड़ के रूप में फसल की बाल लगाने की परंपरा है, जो किसान की समृद्धि का सूचक मानी जा है। इसने तोरण भी कहा करें, लेकिन तोरण और बंदरवाड़ अलग अलग चीज होया करें। आज ग्रामीण महिलाओं का बंदरवाड़ परंपरा को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस डाल अपने ग्रामीण संस्कृति की ये लोक परंपराएं हमारी लोक सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। आज भी अपने पुराने इतिहास को जान के हमारे आने वाली पीढ़ी इन परंपराओं को आगे बढ़ाने का सतत प्रयास कर रहे हैं। हमारी माँ बहने आज भी कोई भी वाड़ा ब्याह शादी के मौके पे बंदरवाड़ बारनागे टांग्या कर रहे हैं।

ये सुना भाई आपने लोक सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बंदरवाल की बात कार्यक्रम आपने किसक लग गया। इस बारे में ठोस ठीक प्रतिक्रियाएं जरूर लिख दिया करें। इस पते पे कार्यक्रम हरियाणवी लोकमंच।

द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी एसआर पिन 1500001 हमारा एक सतत प्रयास है कि लोक सांस्कृतिक पुरानी बातों को सहेज के रखें, बचा कर रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने स्वर्णिम इतिहास को जान के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें और हमारी लोक सांस्कृतिक विरासत को बहुत अच्छे तरीके से सहेज के रखें। इसी के साथ ही आज का हरियाणवी लोकमंच कार्यक्रम समाप्त करने की अपने भाई आजाद दुवन ने दी अनुमति, सारे बन भैया ने राम राम।

0: बाजू कौन सा प्लांट है?
1: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: बाजू रुको, संध्या क्लिक मत करना।
1: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
1: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये रख, तेरी समझदारी का फल।
2: आज मैं कहता है, स्मार्ट बनो।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकमंच FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी हिसार है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम खुला आकाश।

खुला आकाश कार्यक्रम के अंतर्गत आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम में एक फिल्म से। आज की फिल्म रहेगी थ्री इडियट।

श्रोताओं, आपने सुना थ्री इडियट फिल्म का गीत। खुला आकाश के अंतर्गत आप सुन रहे हैं थ्री इडियट्स फिल्म के गीतों को। बहरहाल, ये गीत लिखा गया था सवानंद किरकिरे और संगीत दिया था शांतनु ने। आवाजें थी श्रोताओं इस गीत में सवानंद और शान और सोनू निगम की। आइए एक और गीत सुनते हैं इसी फिल्म का। आवाजें शांतनु और शान की रहेंगी।

0: भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरे
1: मंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे स्वीडन आइसलैंड फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आंग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक $350 अरब का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें $100 अरब का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, मराठवाड़ा और ओडिशा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade, attends 3rd India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan.

0: India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: Prime Minister Narendra Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब क्रिएट किए हैं।
0: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards.
1: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: स्पीकिंग ऑन द ओकेजन, ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital, Rome, later tonight. We have more from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
2: Talent and innovation exchange between India and Italy is expected to grow in the coming years. Speaking ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit, which forms the final leg of his five-nation Indian ambassador, Vani Sarraju Rao said the trip would provide an important opportunity to address issues related to the mobility and welfare of the Indian community. Ms. Rao noted that the Migration and Mobility Agreement signed in 2023 is already operational between the two countries. She expressed optimism that the movement of Indian students, currently around 5,000 in Italy, as well as academicians and researchers, is likely to increase in the near future. She further highlighted trade, defense, mobility, maritime security and port-related cooperation as key priority areas for bilateral discussions.
3: Defense will be an important area where we are going to see how we can boost industrial partnerships. Both countries attach a great deal of importance to maritime security and we are looking at strengthening our respective supply chain, building resilient trade partnerships, energy security, and also to ensure that the industrial ecosystems of the two countries become competitive globally.
2: This is Suparna Bhatia from Rome.
0: Commerce and Industry.

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। एसएच बिहारी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे इशारा फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार

दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

जंगली फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं समाप्त होता है। इजाजत दीजिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा, आजा, आजा। ये करना बहुत मुश्किल।

श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये दुनिया फिल्मी पर्दे पर एक हीरो देखना चाहती है। फिल्मी हीरो यानी तड़क भड़क से भरा बलिष्ठ शरीर, दिल लुभाने वाला अंदाज जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाएं। फिल्मी हीरो की सेट मानसिकता को तोड़कर बड़े पर्दे पर एक आम इंसान को खास महसूस करवाने का काम किया हमारे आज के फनकार ने, जिन्होंने ये दिखा दिया कि आपका अभिनय आपको किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकता है। रोल छोटा हो या बड़ा, अपनी छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त है। आज बात एक ऐसे फनकार की जिनके अभिनय का लोहा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माना गया है। आज के फनकार हैं मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी।

आज जिस नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हम जानते हैं उनके पीछे छुपी है सालों की कड़ी मेहनत और एक लंबा संघर्ष। 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना में एक किसान परिवार में 8 बच्चों में पहले बच्चे के रूप में आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उनकी किशोरावस्था उत्तराखंड में बीती और हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से विज्ञान में रसायन शास्त्र के साथ स्नातक हुए। यहाँ से वडोदरा चले गए और एक केमिस्ट के रूप में काम करने लगे। एक नए काम की तलाश में वो आ गए दिल्ली और यहाँ से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया।

प्ले देखते हुए उन्हें लगा कि वो भी अभिनय से जुड़ना चाहते हैं। उन्हें मन ही मन यकीन हो गया कि अब तक की जिंदगी में एक यही ऐसा काम है जो उन्हें दिल से खींचता है। बस इस दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए वो जा पहुँचे NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नवाज बताते हैं कि NSD का हर दिन उनके लिए खास था, वो कुछ ना कुछ नया सीख रहे थे। यहाँ जब वो तीसरे साल में थे तब मॉस्को से आए एक डायरेक्टर ने उन्हें एक ऐसी सीख दी जिसने उनके अभिनय का रुख ही मोड़ दिया। नवाज को समझ आया कि अभिनय किसी टेक्निक का काम नहीं बल्कि किसी किरदार को आत्मसात करना है।

एनएसडी के दिन जितने बेहतरीन रहे उतने ही मुश्किल भरे दिनों से सामना हुआ मुंबई आकर। नवाज रोजाना काम की तलाश में ऑडिशन पर ऑडिशन देने जाते। यहाँ उनकी काबिलियत से पहले उनके लुक और रंग पर ही उन्हें नकार दिया जाता। नवाज खुद बताते हैं कि उन्हें कभी भी अपने लुक अपनी पर्सनैलिटी पर भरोसा नहीं रहा। उनका आत्मविश्वास सिर्फ अपनी अभिनय क्षमता को लेकर ही था, लेकिन इस अभिनय क्षमता को लोगों तक लाने के लिए तकरीबन 10 साल की कड़ी मेहनत रही।

नवाज पर्दे पर ये गीत गाते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं था। मुंबई जहाँ सभी को मौका देती है, वहीं वो लोगों को पूरी शिद्दत से परखती भी है। 10 साल के लंबे संघर्ष में रहने खाने के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए नवाज ने एक्टिंग वर्कशॉप लेनी शुरू कर दी। वो खुद फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कई नए अभिनेताओं को फिल्मों में जाने के लिए तैयार भी कर रहे थे। उनके शिष्यों में अभिनेता रणवीर सिंह का नाम भी शामिल है, जो अपनी फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए नवाज के पास तैयार हो रहे थे।

आखिर वो दिन भी आया जब नवाज को काम मिलना शुरू हुआ। सबसे पहली बार वो फिल्मी पर्दे पर नजर आए आमिर खान के सामने। 1999 की ये फिल्म थी सरफरोश। मात्र 2 मिनट के सीन में नवाज ने मानो अपने अभिनय से जान फूंक दी। उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। इनमें से कुछ फिल्में हैं शूल,

अंगल, मुन्ना भाई MBBS, फैमिली, आजा नचले, 1:40 की लास्ट लोकल। तकरीबन 8 सालों तक वो ऐसे कई किरदार निभाते रहे जिनके नाम तक नहीं होते थे। साल 2007 में आई फिल्म ब्लैक फ्राइडे, इस फिल्म में उनके किरदार को पहली बार नाम मिला। पहली बार मुख्य भूमिका में नजर आए फिल्म पतंग में। ये फिल्म फेस्टिवल्स में काफी सराही गई, लेकिन अब भी वो सफलता उनसे दूर थी जिनके वो हकदार थे।

नवाज अपने अभिनय से हर छोटे किरदारों में भी अपनी पहचान बना रहे थे, लेकिन अभी भी वो समय नहीं आया था जब लोग उन्हें उनके नाम से जानें। इस बीच साल 2011 में आई फिल्म देख इंडियन सर्कस, इस फिल्म ने कई फिल्म फेस्टिवल्स में पुरस्कार अपने नाम किए। अब नवाज का समय आ चुका था, उनकी अभिनीत फिल्में तो नाम कमा ही रही थी और उनके किरदारों को भी पहचान मिल रही थी। इसी दौरान आई वो फिल्म जिसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सफलता पाने के लंबे इंतजार को खत्म किया। ये फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर।

नवाज को गैंग्स ऑफ वासेपुर वन ने जितनी पहचान दिलाई उससे ज्यादा तारीफ उन्हें मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर टू में। उनके किरदार फैजल खान ने घर घर में अपनी पहचान बना ली। ये वो समय था जब नवाज भीड़ से अलग नजर आने लगे थे और उन्हें देखने के लिए भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। साल 2012 में ही उन्हें उनका पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। स्पेशल ज्यूरी पुरस्कार श्रेणी में नवाज को उनकी फिल्म वेक इंडियन सर्कस, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, कहानी और तलाश के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।

नवाज को भले ही देश में उनके काम के लिए सराहना मिलने में देर लगी, लेकिन इसके पहले से ही उन्हें अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स के जरिए विदेशों में कई पुरस्कार मिलने लगे थे। वो एक ऐसे अभिनेता के रूप में पहचाने जाने लगे थे जो अपने अभिनय, हाव भाव और संवाद अदायगी से किसी भी किरदार को वास्तविक बनाने का मादा रखता है। वो आज भी कई ऐसी फिल्में करते हैं जिन्हें फिल्म उत्सवों में सराहा जाता है।

वो समय आ चुका था जब न सिर्फ नवाज के किरदारों को पसंद किया जा रहा था बल्कि उनके डायलॉग्स भी लोगों की जुबान पर चढ़ रहे थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर में कहा गया उनका डायलॉग, बाप का दादा का सबका बदला लेगा फैजल। किट में बोला गया उनका डायलॉग, टक से मौत को छूकर वापस आ सकता हूँ, या जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, या कभी कभी लगता है अपनिच भगवान है। ये सारे संवाद नवाज के अंदाज से खास बन जाते हैं। हालांकि नवाज ये कहते हैं कि उनके जो भी डायलॉग्स फेमस हुए हैं उनमें उन्हें अपनी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई है, लेकिन लोगों को वो खासे पसंद आने लगे।

नवाज अपने अभिनय को सबसे ऊपर मानते हैं। उनका मानना है कि जब वो किसी किरदार को निभा रहे हैं तो उनके मन की सच्चाई और ईमानदारी ही उन्हें उस किरदार को जीवंत करने में मदद करती है। लंच बॉक्स फिल्म के एक छोटे से किरदार में भी वो अपनी सोच से रंग भरते हैं। वहीं मोतीचूर चकनाचूर में वो बेहद संजीदा नजर आते हैं। उनके किरदारों को देखा जाए तो वो सिर्फ संवाद ही नहीं बोलते बल्कि आंखों के जरिए उस किरदार के मन के भावों को भी सामने ले आते हैं। यही बात उनके हर किरदार को उनसे जुदा करती है और आप पर्दे पर नवाज को नहीं बल्कि उस किरदार को ही पाते हैं।

नवाज अपने किरदार में किस कदर रम जाते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण उनका किरदार रमन है, जो नजर आया फिल्म रमन राघव 2.0 में। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साइको रमन नाम से रिलीज किया गया। नवाज एक सीरियल किलर की भूमिका में थे। फिल्म में एक सीन में 10 मिनट का मोनोलॉग था, जिसे अलग अलग तरह से शूट करने के कारण नवाज को उसी एक जगह पर खड़े रहना पड़ा और तकरीबन वो 300 मिनट तक वही डायलॉग बोलते रहे। फिल्म के शूट के दौरान वो बेहोश भी हो गए थे और अस्पताल के बेड में बेहोशी की हालत में भी अपने डायलॉग्स बोल रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें इस किरदार से बाहर निकलने की सलाह दी थी, लेकिन नवाज लोगों के दिलों में बस चुके थे।

नवाज अपने हर किरदार के लिए भरपूर तैयारी करते हैं। स्ट्रगल के दिनों में घर के पास के सब्जी वाले को लगता था कि नवाज देख नहीं सकते, जबकि एक दूसरे दुकानदार से वो हकलाकर बात करते, एक से तुतलाकर तो एक के सामने वो लंगड़ाकर चलते। ये दुनिया ही उनके लिए मानो रंगमंच हो। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में अपने किरदार के दर्द को बयान करने के लिए वो आंखों में ग्लिसरीन लगाए घूमते थे ताकि उनकी आंखें लाल ही रहें। बदलापुर में वो अपनी हंसी से ही आपको किरदार से नफरत करने पर मजबूर कर देते हैं।

नवाज के बेहतरीन किरदारों में से यहाँ कुछ किरदारों की बात करते हैं। दशरथ मांझी के किरदार में फिल्म मांझी द माउंटेन मैन में नवाज का बिल्कुल अलग रूप नजर आया। यहाँ वो पहाड़ से बातें करते हैं तो लगता है जैसे फिल्मी पर्दे पर थिएटर की दुनिया जी उठी हो। सआदत हसन मंटो के किरदार को भी उन्होंने खूब निभाया और जब ठाकरे में बाल ठाकरे के रूप में सामने आए तो खुद को ऐसे बदला कि फर्क करना मुश्किल सा लगा। हड्डी फिल्म में एक ट्रांसजेंडर के रूप में ढलने के लिए नवाज ने मानो खुद को पूरी तरह बदल दिया। वहीं ब्रिटिश क्राइम ड्रामा मैक माफिया में उनके किरदार ने सबका दिल जीता तो सेक्रेट गेम्स में उनके किरदार गणेश गायतोंडे ने अपना रुतबा कायम किया। ओटीटी पर रिलीज फिल्मों ने उनके प्रशंसकों में लगातार बढ़ोतरी की है। साल 2025 में आई फिल्म कोस्टा फर्नांडिस को भी लोगों ने काफी पसंद किया।

नवाज कहते हैं कि उन्हें फिल्मी दुनिया की चकाचौंध और ऐशो आराम से कहीं ज्यादा अपने अभिनय से प्यार है। वो सारी जिंदगी सिर्फ अभिनय करना चाहते हैं। देश विदेश में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए जिंदगी एक सच्चाई का नाम है और वो ये मानते हैं कि जब तक एक इंसान में सच्चाई है तभी तक वो बेहतरीन अभिनय कर सकता है, क्योंकि जब आप किसी किरदार को जीते हैं तभी आप लोगों के दिलों तक पहुँचते हैं।

कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो भी हासिल किया वो अपनी मेहनत और लगन के बल पर ही पाया। वो उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहरों से कम संसाधनों के साथ आते हैं। नवाज ये सिखा

आते हैं कि अगर आप में हुनर है और लगन है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। नवाज के निभाए किरदारों में जितनी ईमानदारी है उतनी ही ईमानदारी और निश्चलता उनकी मुस्कान में भी झलकती है। हमें पूरी उम्मीद है कि उनके और कई बेहतरीन किरदार हमें देखने के लिए मिलते रहेंगे।

0: आज के फनकार। कार्यक्रम आज केंद्रित था मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

FM 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी हिसार है। श्रोताओं, आकाशवाणी हिसार पर रात के बजे हैं 10 और आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप पर आधारित संदेश आपके गीत हमारे कार्यक्रम। आज का ये अंक लेकर उपस्थित हूं आवाज की दुनिया से। इस सफर का हम सफर, मैं शिवानंद वाशिष्ठ। तो तमाम चाहने वाले, तमाम संगीत प्रेमियों का स्वागत, तहे दिल से स्वागत। श्रोताओं, व्हाट्सएप पर आप भेजते हैं अपने संदेश और उन संदेशों को दुगनी मोहब्बत

के साथ हम पहुंचाते हैं आपके हृदय तक उन गीतों को जिनको सुनकर आपके दिल को आता है करार, आपको मिलती है राहत। और लीजिए, आप तमाम श्रोताओं के संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। बहरहाल, संदेशों की तपती गर्मी में लग रहा है बारिश हो रही है, संदेश इस कदर आकाशवाणी हिसार के इस स्टूडियो में पहुंच रहे हैं। बहरहाल, शुरू करते हैं आज का ये फरमाइशी कार्यक्रम और हमारे तमाम श्रोता जुड़ते हैं। नए श्रोता कार्यक्रम से जुड़ने के लिए नोट कीजिए हमारा पता 972925 3272। और लीजिए, संगीत का ये सरगमी सफर अब करते हैं आरंभ हमारे इन तमाम चाहने वाले श्रोताओं के साथ। हमारे श्रोता जुड़ेंगे गांव चौधरीवास जिला हिसार से राजू अग्रवाल, केशव, प्रयाग, प्रियांशी, विवेक और परिवार के तमाम सदस्य। इन्हीं श्रोताओं के साथ सादुल शहर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हमारे श्रोता रहेंगे श्री रामकुमार रेवाड, श्रीमती चंद्रकला रेवाड। और लीजिए श्रोताओं, संदेश हम तक पहुंचा है मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवीद हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम और यशफ अब्बासी का। सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी और इशरत प्रवीण कार्यक्रम से जुड़े हैं। गांव जाखोद राजस्थान से कार्यक्रम आकाशवाणी हिसार सुन रहे हैं। गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक। दतरिंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से हमारे श्रोता रहेंगे सैयद मसरूर, शाहिना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदीब हसन और ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से तहे दिल से स्वागत करते हैं तमाम श्रोताओं का। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू, इन तमाम श्रोताओं के साथ पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश के श्रोता रहेंगे सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। तो आइए तमाम श्रोताओं के साथ 1972 में आई सुपरहिट फिल्म का ये गीत आइए सुनते हैं। श्रोताओं, अब आपको मैं उस दुनिया में लेकर जा रहा हूं जहां मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। सिर्फ मोहब्बत का एहसास ही नहीं बल्कि एक नजाकत बनकर जो दिल में उतर जाए, ऐसी गुफ्तगू चल रही है। भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत और भावनात्मक फिल्मों में से एक जिसमें इश्क है, दर्द है, नजाकत का अनोखा संगम देखने को मिलता है। ऐसी अदाकारा, अद्भुत अदाकारा मीना कुमारी और राजकुमार, अशोक कुमार जैसे कई दिग्गज कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया। दिल को छू लेने वाली आवाज मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी की, जिनकी जोड़ी ने इस गीत को श्रोताओं अमर बना दिया। गुलाम मोहम्मद का संगीत और कैफी भोपाली की रचना। तो सुनते हैं पाकिजा फिल्म का ये गीत। गीत बुलावा नहीं बल्कि मोहब्बत की उस मंजिल की ओर इशारा कर रहा है जहां सिर्फ दिल की आवाज सुनी जाती है, गुनगुनाई जाती है, महसूस की जाती है।

जी हाँ श्रोताओं, आपने गीत सुना और इस संगीत में गुलाम मोहम्मद ने प्राण फूंक दिए, कैफी भोपाली ने शब्द लिखे और श्रोताओं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की दिलकश आवाज़ें थी। राज कपूर, राजकुमार और मीना कुमारी जैसे सितारों पर इस गीत को फिल्माया गया। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप के संदेशों पर आधारित संदेश आपके गीत हमारे, और लीजिए अब अगले गीत की ओर रुख करते हैं। और रुख भाई गीत के अलावा हमारे उन तमाम चाहने वालों की ओर भी करते हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि शायद अब ईमेल में नहीं तो व्हाट्सएप पर आधारित इस फरमाइशी कार्यक्रम में हमें स्थान मिले। बहरहाल, गांव हिपरसोगा, तहसील लोसा, जिला लातूर से हमारे श्रोता रहेंगे उस्मान शेख, फौजी, सायरा बानू शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, शेफुल्ला, सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और अलीजी, जलालाबाद पश्चिम से सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। चंडीगढ़ से सतीश अनीजा और बिमला अनीजा, बेशुमार मोहब्बत और दुआओं के साथ आकाशवाणी हिसार से बेपना मोहब्बत का इजहार करते हैं। तहे दिल से शुक्रिया अनीजा साहब और तमाम परिवार के सदस्यों का। संबलपुर कांकेर से हमारे श्रोता जुड़ेंगे फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से अरोड़ा परिवार के सदस्य

रहेंगे मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा, मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद आयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन नाशमी और शमशुल कमर राही, ये तमाम श्रोता रहेंगे गज डुंडवारा यूपी से। और इन तमाम श्रोताओं के साथ गांव खारिया जिला सिरसा हरियाणा से प्रताप जिनागल, इंद्रा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया। और इन श्रोताओं के साथ लीजिए आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। जनकपुरी सहारनपुर से श्रोता जुड़ते हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और वेलेस डिकेस्ट्रो। बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जय श्री महित्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय ट्यूवेल और पी बी कुल थे। इन तमाम श्रोताओं के साथ अगले श्रोता जुड़ेंगे नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवानकर, निर्मला और विशाल नवानकर, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष मुरेहकर, मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी, नई बस्ती गंज डुंडवारा यूपी से हमारे श्रोता रहेंगे। लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार बरखा, निहारिका, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार और तमाम परिवार के सदस्य। और लीजिए लोहारू से अब रुख करते हैं थोड़ा सा नजदीक यानी भिवानी जिले की ओर, दादरी गेट जिला भिवानी से हमारे श्रोता कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा और तमाम मेहरा परिवार के सदस्य कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। पटियाली रोजगंज डुंडवारा यूपी से आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, आरहान हुसैन परिवार के तमाम सदस्य जुड़ते हैं आकाशवाणी हिसार से। और लीजिए इन तमाम श्रोताओं के साथ अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा देते हैं। श्रोताओं उसी दुनिया में थोड़ा सा और बने रहिएगा जहां मोहब्बत और जज्बातों का जिक्र हो रहा है। अब आपको एक ऐसा गीत सुनवाने जा रहा हूं, ऐसी एक प्रेम कहानी की दुनिया है जहां मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि रूह की आवाज बन जाती है। श्रोताओं ये अमर गीत फिल्म रहेगी हीर रांझा से आप सुनेंगे इस गीत को। लता मंगेशकर की मीठी मधुर आवाज आप सुनेंगे। मदन मोहन साहब ने इस गीत की आत्मा को संगीत में पिरो दिया। तो आइए सुनते हैं उस अधूरी मोहब्बत की सच्चाई जो दिल को भीतर तक भेद देने का काम करती है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप के संदेशों पर आधारित संदेश आपके गीत हमारे, और आज के इस अंक में, इस सफर में आपका हम सफर हूं मैं शिवानंद वाशिष्ठ। हीर रांझा का श्रोताओं आपने गीत सुना, 1970 में ये फिल्म आई थी, और श्रोताओं लता मंगेशकर की दिल का शाबाज थी और संगीत मदन मोहन साहब का था। श्रोताओं आइए अब कार्यक्रम के अगले नगमे की ओर बढ़ते हैं और हमारे तमाम श्रोताओं को अब शामिल करते हैं। श्रोता हमारे जुड़ेंगे कार्यक्रम से गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता, इन तमाम श्रोताओं के साथ जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक, समस्त डागला परिवार के तमाम सदस्य रहेंगे रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से। और इसी क्रम में हम शामिल कर लेते हैं हमारे इन श्रोताओं को, गांव शेरडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से मंटू शर्मा, सुशीला शर्मा, लीलाधर शर्मा, पसंद रहेगी अगले गीत के साथ इन तमाम श्रोताओं की, जमशेदपुर झारखंड से सुपाही साही गांव से ये तमाम श्रोता रहेंगे, देवेंद्र तांती, राकेश प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, दीपाली कुमारी और देबिन, इन तमाम श्रोताओं के साथ मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक के साथ रहेंगे माही मलिक। और लीजिए भोपालगढ़ राजस्थान से ये संदेश हम तक पहुंचा है और शानदार प्रोग्राम, बेहतरीन प्रस्तुति के लिए

शुक्रिया कर रही हैं आकाशवाणी हिसार का। छिम्पा परिवार के तमाम सदस्य रहेंगे, धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार। इन तमाम श्रोताओं के साथ संदीप मकड़, ज्योति मकड़, मन्नत मकड़, भरत मकड़, कमल साहनी पिंगावाला चौक गौरैया जलंधर पंजाब से श्रोता जुड़ रही हैं। अस्तुपुरा जिला मऊ से श्रोता रहेंगे और श्रोता कह रहे हैं मेहरबानी होगी यदि आप कार्यक्रम में हमें शामिल करेंगे। तो बहरहाल मेहरबानी कि श्रोताओं आपने धीरज बनाए रखा और एक संदेश के बाद आप प्रतीक्षा कर रही हैं, आप इंतजार कर रही हैं और इंतजार का फल सभी को पता है बहुत मीठा होता है। अस्तुपुरा जिला मऊ से हमारे श्रोता रहेंगे मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना प्रवीण, अब्दुल्ला आजाद। और भाई कई श्रोता शायद मन में सोच रहे होंगे कि भाई इंतजार तो बहुत करते हैं लेकिन हम शामिल नहीं हो पाते। बहरहाल कहीं ये इंतजार की घड़ियां ये इतना मीठा कहीं शुगर ना कर दे। बहरहाल ऐसा नहीं है श्रोताओं, हम आपका पूरा ध्यान रखते हैं और आप भी हमारा ध्यान रखते हैं कि कार्यक्रम में नियमित अपना एक संदेश भेजने की कृपा करें, कष्ट करें ताकि हम उस संदेश को मोहब्बत के साथ आप तक पहुंचा पाएं। और लीजिए इसी मोहब्बत के चलते गांव फरासी जिला हिसार से हमारे श्रोता जुड़ेंगे, राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। और कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हमारे श्रोता रहेंगे ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल रोय। और लीजिए अब रुख करते हैं बलिया से सीधा जींद की ओर, गांव व डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर कार्यक्रम से जुड़ रही हैं। और गांव घमंडिया सूरतगढ़ से जगदीश ढुकिया, प्रमिला ढुकिया, ज्योति, सरिता, तमन्ना, सचिन, विष्णु, शिवम ढुकिया, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से हमारे श्रोता रहेंगे। और इन्हीं श्रोताओं के साथ मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत और रोजस, चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश, अनीजा। तो आइए श्रोताओं, इन तमाम श्रोताओं के साथ अब आपको वो गीत सुनवा देते हैं जिसको रिकॉर्ड करने में भाई मोहम्मद रफी साहब जैसे सुपरस्टार को अपने प्रिय मित्र शम्मी कपूर साहब से कहना पड़ा, भाई इस तरह के गाने मत रिकॉर्ड करवाया करो, किसी ना किसी दिन तुम जान ही ले लोगे। तो वो गीत आइए सुनते हैं, मोहम्मद रफी साहब की दिलकश आवाज रहेगी, शंकर जयकिशन का अद्भुत संगीत आप सुनेंगे और दिल को छू लेने वाले शब्द लिखे गए हसरत जयपुरी साहब की कलम से। तो सुनते हैं 1968 में आई सुपरहिट फिल्म ब्रह्मचारी का ऐसा गीत जिसमें प्रेम की मासूमियत को अमर बना दिया।

शमी कपूर साहब, राजश्री जैसे सितारों पर इस गीत को फिल्माया गया था। ब्रह्मचारी फिल्म थी, 1968 में ये फिल्म आई थी। शंकर जयकिशन का अद्भुत संगीत था। और लीजिए अब अगला रुख करते हैं, हमारे उन तमाम श्रोताओं को शामिल करते हैं जो जुड़े हुए हैं आकाशवाणी हिसार से। अब गांव नलोई, तहसील सिवानी, मंडी, जिला हिसार से हमारे श्रोता रहेंगे राजबाला, नवीन, मंदीप, प्रियंका, सपना, नीतू और वेदांश जांगड़ा के साथ रहेंगे सजन कुमार जांगड़ा। और इन्हीं श्रोताओं के साथ में गांव नलोई, तहसील सिवानी, मंडी, जिला हिसार से नए श्रोता जुड़े हैं कार्यक्रम से, जगदीश भार्गव, ज्योतिषी सुबेदार, राम सिंह राहड़। तो इन तमाम श्रोताओं के साथ अब शामिल कर लेते हैं हमारे अन्य श्रोताओं को। लिख रही हैं जलालाबाद शामली यूपी से राशिद मंसूरी, अयान मंसूरी, जीशान मंसूरी। और इन श्रोताओं के साथ कार्यक्रम में अब शामिल हो रहे हैं कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल। सब्जी मंडी बुलढाना से हमारे श्रोता रहेंगे शबीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मज्जू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन। इन तमाम श्रोताओं के साथ हमारे श्रोता रहेंगे सुरेंद्र अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, अंकित और सुशीला अग्रवाल, हरिनगर, गीता की नगरी यानी पवित्र धरती कुरुक्षेत्र से हमारे ये श्रोता लिखकर भेजते हैं। रामसिंहपुर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से हमारे श्रोता जुड़ेंगे कार्यक्रम से अशोक बब्बर, पवन, राजेश, अजय, राहुल और मन्नू बब्बर। और लीजिए शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा यूपी से हमारे श्रोता आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, मास्टर अनवर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। इन तमाम श्रोताओं के साथ गांव हांडीखेड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा कार्यक्रम से जुड़ रही हैं। वराली मुंबई से, लीजिए सिरसा से सीधी फ्लाइट मुंबई की ओर जा रही है, नवाब खान, निशरत खान, मास्टर अजहर खान, मुश्ताक खान और आजिम खान कार्यक्रम से जुड़ रही हैं। और मुंबई से लीजिए रुख करते हैं पतरोड़ा चक 5MD की ओर, मंगल जनागल राही मिल रही हैं हमसे, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल। और लीजिए गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, सतीश और योगेश कड़वासरा कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुलापुर, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान और मोहम्मद इसरार के साथ रहेंगे नरगिस खातून। और हमारे श्रोता रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जशीन खान, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से जुड़ रहे हैं। गणेशपुर, गंज, डुंडवारा, एटा यूपी से एम फारूक शेख, शेख क्षमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, कुलफराज शेख और बेबी मुस्कान। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। इन तमाम श्रोताओं के साथ आइए मिलकर अब सुनते हैं एक अलग मिजाज का गीत। और गीत श्रोताओं 1966 में आई फिल्म 10 लाख का गीत रहेगा, यानी फिल्म 10 लाख की रहेगी और करोड़ों रुपए की मोहब्बत लुटा देने वाले हमारे तमाम श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार। और स्वर रहेंगे श्रोताओं मोहम्मद रफी और आशा भोसले जी के। श्रोताओं इस फिल्म में नजर आए थे ओम प्रकाश, संजय खान, बबीता कपूर, प्राण और हेलन जैसे शानदार किरदारों ने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। और इस गीत की सच्चाई इतनी पवित्र है श्रोताओं, यानी 24 कैरेट गोल्ड कहीं तो कोई गम ना होगा, प्रेम धवन साहब ने क्या अर्थपूर्ण शब्दों को लिखा और मधुर संगीत दिया रवि साहब ने। और श्रोताओं ये गीत याद दिलवाता है कि इंसान की असली पहचान उसकी दौलत नहीं, उसकी शोहरत नहीं, उसकी धन संपदा नहीं, बल्कि उसका दिल है, जो दूसरों के प्रति उसका व्यवहार है वही अरबों खरबों रुपए का है। तो आइए सुनते हैं ऐसी ही खूबसूरत संदेश को जिस गीत में पिरोया गया, इंसानियत भरा गीत, तमाम इंसानियत के नाम।

इंसानियत को बयां करते हुए श्रोताओं गीत सुना। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर इस सफर में आपका हम सफर बना हुआ हूं मैं शिवानंद वाशिष्ठ। और आइए श्रोताओं, अब एक और गीत आपको सुनवाता हूं मैं और लेकर चलता हूं एक सीधी महफिल में, जहां मंच पर अदाकारा अभिनय करती हैं गीत गाने का और स्वर गूंजता है लता मंगेशकर का। बहरहाल पसंद हमारे इन तमाम श्रोताओं की रहेगी जो सुन रही हैं गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब में सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। और श्रोताओं, इन तमाम श्रोताओं के साथ गांव चौटाला हरियाणा से दारा पंडित संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा कार्यक्रम से जुड़ रही हैं। इन तमाम श्रोताओं के साथ वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा कार्यक्रम से जुड़ते हैं। सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित कांगड़ा, ये तमाम श्रोता रहेंगे एकता कॉलोनी रोहतक से। और मोहल्ला हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन प्रवीण, रोजी प्रवीण, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कोसर। गांव लोगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दिलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुर्राल सिंह और

अविराज सिंह और लीजिए शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक, गांव जाखो राजस्थान से बड़े बेचैन हो रहे थे कि भाई हम अभी तक शामिल नहीं हुए। तो लीजिए आपकी बेचैनी दूर किए देते हैं और आपको शामिल कर लेते हैं। और अगले श्रोता जुड़ते हैं, कृष्ण कुमार डाबी, भूपत कुमार डाबी, राधा डाबी, विक्रम, अर्चना और साक्षी डाभी, ये तमाम श्रोता रहेंगे गांव टुंकिया, तहसील सिंहधरी, जिला बालोतरा, राजस्थान से। और इन्हीं श्रोताओं के साथ हिमांशु सुथार, पवन सुथार, ये तमाम श्रोता रहेंगे नौहर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से। भाई सोच रहे हैं हम चार लोगों के नाम लिखे थे, दो ही आए, तो लीजिए नरेंद्र सुथार और मनोज सुथार जी भी शामिल हो रहे हैं कार्यक्रम के इस अंक में। कृष्ण की नगरी मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, बुशरा अंसारी, हिना अंसारी, गुलिश्ता रानी, नंदिनी और अंजलि कार्यक्रम से जुड़ रही हैं। इन तमाम श्रोताओं के साथ अब शामिल कर लेते हैं श्रोता संघ मित्रा, श्रोता संघ वार्ड नंबर एक, पोफाली, जिला यवतमाल से जयराम सिंघनकर, दिशांत कुमार सिंघनकर और अर्पिता को। गंज डुंडवारा यूपी से हमारे श्रोता सेफ वाटर सेफ लाइफ का संदेश देते हुए अपना संदेश हम तक पहुंचा रही हैं। मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना, नाज नवाजी शेख, दानिश शेख और अमन नाफरीदी सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। और लीजिए गांव जेवरा, जिला हिसार से हमारे श्रोता रहेंगे वीरेंद्र भ्यान, शमशेर भ्यान, सुरेंद्र, मनोज भ्यान और तमाम परिवार के सदस्य। तो इस तरह से आइए अब हम उन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम का अगला गीत जो सुनेंगे वो 1971 में आई फिल्म महबूब की मेहंदी का है। श्रोताओं, मोहब्बत की खूबसूरती इसी में है कि उसकी टीस भी है, एक ऐसा सवाल जो आज भी दिलों में गूंजता है, क्या वो गीत में सुनिएगा श्रोताओं। और इस गीत को पर्दे पर निभाया लीला चंद्रावरकर जी ने, जिनकी अदाकारी ने इस दर्द को और भी सच्चा बना दिया। इस गीत को भावुक कर दिया लता मंगेशकर की दिलकश आवाज ने और भाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की बनाई गई इस धुन के लिए तो जितना उन्हें प्रणाम किए करें उतना कम। जाने क्यों लोग मोहब्बत क्या करते हैं, ये गीत नहीं बल्कि उस टूटे हुए दिल की कहानी है जो प्यार करने की वजह ढूंढता रहता है और ढूंढता ही रहता है।

हम भी श्रोताओं दुआ करते हैं कि आप तमाम आकाशवाणी हिसार के तमाम संगीत प्रेमी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और आकाशवाणी हिसार से इसी तरह बेपनाह मोहब्बत करते रहें। अब दीजिए आज के इस अंक को समेटने की अपने आज के हम सफर शिवानंद वाशिष्ठ को अनुमति। नमस्कार।

0: भरतपुर प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए।

0: इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु यमुनायम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और ओडिशा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements including Trade and Economic Partnership and India-EU Free Trade Deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the 5th and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital Rome later tonight. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today chaired a high-level meeting in New Delhi to assess preparations for the forthcoming NEET UG re-examinations for admission to undergraduate medical education to be held on 21st of next month. Mr. Pradhan directed that all gaps identified in the earlier examination process must be comprehensively addressed and eliminated. The minister emphasized that re-examination must be conducted in a secure, seamless and foolproof manner under stringent security protocols. During the meeting, directions were issued to hold coordination meetings with district magistrates and superintendents of police across state to ensure robust monitoring and effective implementation of examination arrangements. The Supreme Court today for the first time allowed euthanasia for rabid, incurably ill or demonstrably dangerous stray dogs, citing the need to protect human life and public safety. The apex court issued a

से एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी हिसार है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह प्रथम सभा के अंतर्गत 5:53 पर आपसे फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। जय हिंद।